परपूर मथे टिका तेड़ पुटी खा खाही हाथ छुरी जगता सार नील वस्त्र पैर हुए प्रवाण ताले कुजे प्राण आपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना।

0: पिटे तन पिटे पीड़ करें मन जूठे इतली पर कह नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ी।
1: जितेंद्र सबको बहनगरी हेठ चलाएगा आपे दे वड्याई आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वड मेजनी सिरे सिर धंधे लाएगा नदर पठी जे करे सुल्ताना काउ कराएगा दर मंगन पिख ना पाएगा दर मंगन पिख ना पाएगा।

अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:43 ते तव्हां गीत ऐं गज़ल ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ास ख़ास ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में लोली।

तवां भगत कंवरराम जे मिठड़े आवाज में लोली बुधी रहा हुआ। तवां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो। हींअर पेश आहे तबसिरो। इंडिया माइनिंग वीक 2026 जेको माइनिंग ए मिनरल सेक्टर लाइ भारत जो सभिनी खां वॾो कॉन्फ्रेंस कम एग्ज़िबिशन आहे। इंडिया माइनिंग ग्लोबल कनेक्ट नाले सां हिकु इंटरनेशनल आउटरीच इंटरेक्शन आयोजित कयो। हिन इंटरेक्शन में 19 मुल्कनि जा डिप्लोमेटिक मिशन्स जा नुमाइंदा शामिल थिया, जंहिं भारत जे माइनिंग ऐं मिनरल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ऐं सहयोग खे वधाइण जे मौक़नि ते चर्चा कई। हीउ इंटरेक्शन इंडिया माइनिंग वीक 2026 जे बिल्डअप जे तौर ते आयोजित कयो वियो, जेको 15-17 नवम्बर ताईं यशो भूमि नई दिल्ली में आयोजित थींदो। हिन जो आयोजन कोयला मंत्रालय ऐं खान मंत्रालय, भारत सरकार माइनिंग इंडस्ट्री जे सहयोग सां करे रहिया आहिनि। ही इंटरेक्शन श्री सतीश चंद दुबे, राज्य मंत्री कोयला ऐं खान मंत्रालय, भारत सरकार जे मेज़बानी में आयोजित थियो। शामिल थियल डिप्लोमेटिक मिशन्स जे वरिष्ठ नुमाइंदनि ऐं माइनिंग ऐं मिनरल्स इको सिस्टम सां जुड़ियल स्टेक होल्डर्स इंडिया माइनिंग वीक 2026 में मुल्कनि जे स्तर ते भागीदारी जे मौक़नि ते चर्चा कई। मंत्री साहब ग्लोबल माइनिंग कम्यूनिटी खे इंडिया माइनिंग वीक 2026 में सक्रिय सहयोग ऐं भागीदारी लाइ आह्वान कयो। हुन पार्टनर मुल्कनि खे न्योतो ॾिनो त भारत में ख़ासि माइनिंग कंपनियुनि, वॾनि निवेशकनि ऐं प्रमुख डेलीगेट्स जी भागीदारी सुनिश्चित करण में मदद कंदा। हुन ज़ोर ॾिनो त हिन तरह जो जुड़ाव ॿिन्ही धुरियुनि लाइ फ़ाइदेमंद थींदो ऐं माइनिंग ऐं मिनरल सेक्टर में मदद जे मौक़नि खे वधाईंदो। हुन आलमी सतह ते वसी भागीदारी पक करण में पंहिंजी गहरी दिलचस्पी जी बि ॼाण

ॾिनी. हिन में पार्टनर मुल्कनि जा माइनिंग सां लाॻापियल मंत्री, वॾनि निवेशक ऐं इंडस्ट्री जा नुमाइंदा शामिल आहिनि. हुन सभिनी डिग्नेटरीज ऐं स्टेक होल्डर्स खे 15 नवम्बर ते यशोभूमि नई दिल्ली में इंडिया माइनिंग वीक 2026 जे उद्घाटन समारोह में शामिल थियण लाइ गरम जोशीअ सां न्यौतो ॾिनो. इंडिया माइनिंग ग्लोबल कनेक्ट में सभा खे संबोधित कंदे श्रीमती रुपिंदर बरार, एडिशनल सेक्रेटरी कोयला मंत्रालय, भारत जे सनातन वीचार वसुधायव कुटुंबकम जो हवालो ॾींदे हुए साझेदारी ऐं सहयोग जी भावना ते ज़ोर ॾिनो, जेका आलमी माइनिंग सेक्टर जे भविष्य खे आकार ॾेई सघे थी. भारत जॾहिं दुनिया जी चौथी सभिनि खां वॾी अर्थव्यवस्था जे तौर ते अॻिते वधंदो पियो वञे, त माइनिंग ऐं मिनरल सेक्टर देश जी तरक्की ऐं वैश्विक महत्वाकांक्षाउनि खे समर्पण ॾियण में अहम भूमिका अदा करे सघे थो. नवम्बर में इंडिया माइनिंग वीक 2026 जे आयोजन सां हुन आलमी माइनिंग कम्यूनिटी खे इकट्ठा थियण, वीचारनि जी ॾे वठि करण, माहिरात साझा करण ऐं मदद जे मौक़नि खे तलाशण लाइ न्यौतो ॾिनो. श्रीमती बराड़ ज़ोर ॾिनो त भारत दुनिया जे घणनि हिसनि सां पार्टनर्स जा वीचार, तज़ुर्बो ऐं सहयोग खे ख़ासि सम्झे थो, जंहिं सां हिकु वधीक इनोवेटिव, सस्टेनेबल ऐं आलमी तौर ते जुड़ियल माइनिंग सेक्टर जी तामीर थी सघे. मलावी, श्रीलंका, मोजाम्बिक, अल्जीरिया, अमेरिका, चिली, भूटान, इंडोनेशिया, इथोपिया, रूस, इराक, मोरक्को, वेनेजुएला, स्पेन, पोलैंड, मंगोलिया, जाम्बिया, फ्रांस, घाना ऐं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे नुमाइंदनि हिन इंटरेक्शन में भाग वरितो. चर्चा में मुल्कनि जे डेलीगेशन, सरकारी ऐं संस्थागत नुमाइंदगी, बिज़नेस डेलीगेशन्स, स्पीकर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, माइनिंग ऐं मिनरल कंपनियुनि, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, निवेशकनि, रिसर्च संस्थाउनि ऐं इंडस्ट्री एसोसिएशन जी संभावित भागीदारी जे विभिन्न पहलुअनि ते वीचार कयो वियो. हिन इंटरेक्शन सां इंडिया माइनिंग वीक 2026 जे दायरे ऐं प्रोग्राम खे साझा करण ऐं क्रिटिकल मिनरल्स, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग टेक्नोलॉजी, हैवी माइनिंग इक्विपमेंट, इनोवेशन, निवेश, व्यापार ऐं रिसोर्स डेवलपमेंट जे खेत्रनि में आपसी दिलचस्पी जे मामलनि ते चर्चा करण जो मौक़ो बि मिलियो. शामिल मिशन्स खे न्यौतो ॾिनो वियो त हू पंहिंजे पंहिंजे मुल्कनि मां लाॻापियल कंपनियुनि, सरकारी एजेंसियुनि, संस्थाउनि ऐं इंडस्ट्री बॉडीज़ जी भागीदारी में बि मदद कंदा. भारत जॾहिं क्रिटिकल मिनरल्स, रिसोर्स सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐं घरू मैन्युफैक्चरिंग ते पंहिंजो ध्यानु वधाए पियो, त आलमी सहयोग माइनिंग वैल्यू चेन जे अलॻि अलॻि चरणनि में वधीक ख़ासि थी वञे थो. इंडिया माइनिंग वीक 2026 मुल्कनि ऐं कंपनियुनि खे पंहिंजी क़ाबिलियतुनि जो प्रदर्शन करण ऐं बिज़नेस जे मौक़नि खे तलाशण ऐं भारतीय नीति निर्माताउनि, माइनिंग कंपनियुनि, निवेशकनि ऐं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ हिकु प्लेटफॉर्म फराहम कंदो. 3 ॾींहनि जो इंडिया माइनिंग वीक 2026 25,000 खां वधीक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऐं डिसीजन मेकर्स, 500 खां वधीक एग्ज़ीबिटर्स ऐं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, 200 खां वधीक स्पीकर्स ऐं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, 100 खां वधीक कॉन्फ्रेंस सेशन्स ऐं टेक्निकल प्रेज़ेंटेशन्स, 1,000 खां वधीक सरकारी ऐं PSU डेलीगेट्स ऐं 300 खां वधीक माइनिंग ऐं मिनरल कंपनियुनि खे इकट्ठा कंदो. हिन में 50 खां वधीक मुल्कनि जी भागीदारी जी उमीद आहे. इवेंट में हिकु हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्ज़ीबिशन, टेक्निकल सेशन्स, लीडरशिप डायलॉग्स, B2B मीटिंग्स, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन्स ऐं प्रोडक्ट लॉन्चेस थींदा. चर्चा कोयला, धातु, क्रिटिकल मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, माइन सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, मिनरल प्रोसेसिंग ऐं रिसोर्स एफिशियंसी समेत घणेई विषयनि ते केंद्रित हूंदी. इंडिया माइनिंग ग्लोबल कनेक्ट इंटरेक्शन इंडिया माइनिंग वीक 2026 जे नवम्बर में थियण वारे समिट खां अॻियां हलंदड़ इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो हिकु हिसो आहे. नवम्बर जे समिट ताईं अंतर्राष्ट्रीय सरकारनि, माइनिंग कंपनियुनि, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स,
निवेशकन ऐं इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन सां वधीक ॻाल्हि

बोल जारी रखी वेंदी। इंडिया माइनिंग वीक 2026 जे बारे में वधीक जाण लाइ विज़िट कयो www.indiaminingweek.org।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश आहे घनश्याम वासवानी जे आवाज़ में हिकड़ो गज़ल, ज़िंदगी।

पैसन में भाव कराया निरण कमोचारी खाई दिसो खाई दिसो खाई दिसो बिन पैसन में भाव कराया निरण कमोचारी ओ काका ओ चाचा ओ काका हे दे आओ तू सिरो पूरी खाओ काका की रखी है मुटल काका की रखी है मुटल दाल छोला डबल तू खाई वट डल डल दाल।

ಡಲ ಡಲ ಡಾಲ ಟೋಲಾ ಕಬ್ಬನ.

तव्हां गीत ऐं ग़ज़ल ॿुधी रहिया हुआ। हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग विस्कॉन्सिन में भारत जे फूड सिक्योरिटी तरीक़नि खे ज़ाहिर कयो। रूल्स बेस्ड

मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पंहिंजे वायदे खे दोहरायो। यूएई फ्लाई दुबई फ्लाइट हादसे जी जांच शुरू कई वई। इज़राइल चयो त हाईजैक जी कोशिश 9/11 जे दहशतगर्दी हमलनि वांगुर ई लॻंदी आहे। पाकिस्तान जे हवाई हमलनि में अफगानिस्तान जे कुनार ऐं हेल मनसूबनि में नवा शहरी मारिया विया। यूएस ईरान मिलिट्री प्रोक्योरमेंट फौजी ख़रीदारी ते पाकिस्तानी वापारी समेत 10 माण्हुनि ऐं इदारनि ते पाबंदी लॻाई वई। ऐं जापान में एशियन गेम्स में भारत कल्ह 6 मेडल खटिया, जंहिंमें सेलिंग ऐं ग्रीको रोमन रेसलिंग में ऐतिहासिक चांदीअ जा मेडल शामिल आहिनि। इंडियन मेन्स हॉकी ऐं क्रिकेट टीमूं फाइनल में दाख़िल थी वियूं आहिनि।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभा हो रही है। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। इससे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। शास्त्री जी किशोरावस्था में ही

0: देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने लोगों को अपनी यात्रा के पहले से योजना बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। गांधी जयंती पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सकें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी देश की आवश्यकता के अनुसार सुधारों पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली में कल संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को नमन किया है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय विश्व कप 2027 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच किया जाएगा। भारत अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। जापान में 20वीं एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, proactive and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office, but by public service. The nation is paying homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In a message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tributes to Mahatma Gandhi and said, his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Viksit Bharat by 2047. A Sarva Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi. Traffic police has issued a traffic advisory in view of Gandhi Jayanti at Rajghat

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। आइए संगीतिका कार्यक्रम में सबसे पहले आनंद लेते हैं हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में इस भजन का।

साथियों, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे हैं संगीतिका कार्यक्रम। साथियों, ईश्वर के प्रति समर्पण, श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना को अपने हृदय में संजोकर आइए शांत मन से अपने ईश का ध्यान लगाते हैं और साथ में सुनते हैं

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको गांधी समाधि राजघाट लिए चलते हैं, जहां से आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। वितरण दे रही है प्रीति मोहन। आइए गांधी समाधि राजघाट चले।
1: महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में आप सभी का आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज यहाँ राजघाट का वातावरण श्रद्धामय है। हरे भरे वृक्ष शीश झुकाए अपने श्रद्धा सुमन बापू को अर्पित कर रहे हैं। नन्हे नन्हे पंछी भी अपने सुर प्रार्थना के सुर के साथ मिलाने को प्रयत्नरत है। प्रातःकालीन मंद मंद समीर अपने साथ फूलों की खुशबू समेटे वातावरण को सुगंधित कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी प्रकृति बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए नतमस्तक है। आइए राजघाट की इस शांत और प्रेरणादायी भूमि से बापू को स्मरण करें और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। यमुना नदी के किनारे राजघाट परिसर में काले रंग के संगमरमर से बनी बापू की समाधि, चारों ओर से सफेद संगमरमर से बनी छोटी सी दीवार से घिरी है। समाधि पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प सादगी पूर्ण तरीके से मालाओं के रूप में सुसज्जित है। अखंड ज्योति प्रज्वलित है। बापू को शत शत नमन, प्रतिपल नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर हम चले, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सभी अतिथिगण

अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज यहाँ राजघाट समाधि समिति द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। सभी धर्मों के प्रतिनिधि गांधी जी के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए तैयार हैं। आइए सम्मिलित होते हैं प्रार्थना सभा में। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की प्रार्थना होगी। हम जिस प्रकार का जीवन चाहते हैं, अपना व्यवहार और मनोदृष्टि बदलकर उसका निर्माण करना हमारे हाथ में है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ पवित्रता है वही निर्भयता है। गांधी जी की ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे ज्ञान को सही रूप से प्रदान कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अहिंसा और सत्य की शक्ति से महात्मा गांधी ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज का ये दिन हम बापू को समर्पित करते हैं और उनके सिद्धांतों को याद करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, अर्थात शांति, अहिंसा, करुणा और सत्य। बापू सत्य के सभी सद्गुणों को आधार मानते थे। उनका मानना था सत्य बोलना चाहिए, जीवन के सभी पहलुओं में सत्य की तलाश करनी चाहिए और ईमानदारी और निष्ठा से जीवन जीना चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रार्थना के साथ शुभारंभ होगा कुछ एक पलों में। बापू ने एक बेहतरीन समाज और देश के निर्माण के हर पहलू को साथ साथ काम किया। बापू ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर संयम और करुणा दोनों का अनुपालन करने की सलाह दी और स्वयं उनका पालन करके मिसाल कायम करते हुए नेतृत्व प्रदान किया। आइए सम्मिलित होते हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की प्रार्थना।

राजघाट परिसर में आगमन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। हौले कदमों से चलते हुए आगे बढ़ते हुए बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंच चुके हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आपने पुष्प लिए, गुलाब की पंखुड़ियां ली, अपने श्रद्धा पूर्वक नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित

कर बापू की समाधि की परिक्रमा कर रहे हैं। बापू कहा करते थे, मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म में पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, सभी का अभिवादन किया, हाथ जोड़कर सभी को नमन किया और हाथ जोड़ अतिथियों का भी स्वागत किया और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर गए।

0: O hai prarthna.
1: वाह, तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है।

0: मैं उसी शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। ईसाई धर्म की प्रार्थना।
1: मसीह का पवित्र समाचार। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिख्यात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं,

0: जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंखें बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लटकर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने भैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन।
1: आवास और शहरी मामलों के मंत्री और राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बापू को अपनी श्रद्धा सुमन आज यहां अर्पित किए। और अब हिंदू धर्म की प्रार्थना अर्थात पवित्रता के साथ की गई अर्चना।

0: प्रभाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्याम् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः माग्रिदः कस्य स्विद्धनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: हमेशा सभी से अच्छी और मीठी बातें किया करें ताकि सामने वाला शख्स आपसे हमेशा खुश रहे। इस्लाम धर्म की प्रार्थना।
2: इन्नवल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या ये नेमत नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हमारा जिस्म, डीएनए एक लिविंग कोड, 86 अरब न्यूरॉन्स वाला दिमाग, आ ब्लड पंपिंग हार्ट, बीमारियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम। सवाल यह है कि ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल नेटवर्क के साथ जिंदगी हमें किस मकसद के लिए मिली? वमा खलकना समा अवल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन। और हमने आसमान और जमीन में और जो कुछ उनके दरमियान है इसको सिर्फ एक खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। मतलब ये दुनिया टाइम पास नहीं है, एक डिजाइन सिस्टम है। हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए ये जिंदगी मिली है। इबादत एक पूरी जीवन शैली का नाम है। अगर पूरा जीवन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, हराम से बचें, हलाल अपनाएं, तो हमारा हर कदम इबादत बन जाता है। सिर्फ इबादत करना ही लाइफ पर्पस नहीं है बल्कि अच्छाई, जस्टिस, सच्चाई, नेक अमल, खुद को बेहतर बनाना, नेचर के खिलाफ ना जाना, इंसानियत निभाना और अपने क्रिएटर को पहचानना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें हर चुनौती, हर बदलाव में आजमाए के अमल के हिसाब से कौन बेहतर है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या इंसानों ने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है? याद रखो, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदही तय है। ये संसार एक टेस्ट ग्राउंड है जहां हमारी हर चॉइस, हर स्ट्रगल, हर दर्द हमारे फाइनल स्टेटस को तय करती है। इसीलिए हमें जिम्मेदारी, इख्तियार, अमानत, इल्म व शऊर के साथ जस्टिस, इस्लाह और भलाई कायम करने का हुक्म दिया। और ये ख्याल कि मुझे अपने क्रिएटर के पास जाना है, जवाबदेह होना है, ये जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को मुतासिर करता है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन वलाइब वइन्नद दाअल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। और ये दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश सब ये बात समझ लें। लोगों को गुमान है कि ये यूनिवर्स तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये तो बस अपने आप ही वजूद में आ गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर यूनिवर्स एक इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स कौन है? अगर कोड है तो कोडर कौन है? अगर डिजाइन है तो डिजाइनर कौन है? अगर ये रूल्स हैं तो रूल्स मेकर कौन है? यकीनन अल्लाह है। और हमारा इस दुनिया में आना भी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्योर पर्पस है। इसीलिए इबादत के साथ साथ गौर व फिक्र करने की भी दावत दी गई है। अफला तअक्लून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? अफला यंजुरून, क्या तुम गहराई से नहीं देखते? अफला यस्माउन, क्या तुम सुनते नहीं? अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? लिहाजा कामयाब जिंदगी सिर्फ इल्म, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, दौलत, वेल्थ, शोहरत हासिल करना नहीं है بلکہ زندگی کے اس امتحان میں انت تک ایک بہت بڑی جواب دہی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے. یہی اس آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یہی اس آیت کا عظیم پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ.
1: جین دھرم کا مکھیہ واقعہ اہنسو پرمو دھرم یہی بابو کا کتھن بھی. جین دھرم کی پرارتھنا
3: धर्माणाम् जैनम् जैतु शासिनम् अहिंसा.

अरहत संघ आचार्याणाम दिव्य योगी मुनीश्वर विश्व धर्म प्रस्तीर्णाय आचार्य सुशील गुरुवे नमः। भारतवर्ष सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चैता भारतवासं

0: ॐ अर्हम् अर्हम् गाये जा अर्हम् नर्हम् गगा करके अर्हम् अर्हम् गगा करके मन को विमल बनाए जा ॐ अर्हम् अर्हम् गाये जा सिद्धेश अरिहन्ते शरणं पवज्जन्ति सिद्धेश शरणं पवज्जन्ति साहु शरणं पवज्जन्ति केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जन्ति चार शरणे दुख हरणे और इन शरण
1: राजघाट में आगमन भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी का मेरा जीवन ही मेरा संदेश है अहिंसा ही धर्म है आपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रणाम किया नमन किया भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी गुलाब की पंखुड़ियों अर्पित की पुनः नमन किया प्रणाम किया श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बापू की समाधि की परिक्रमा की यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उनकी हर भूल को उसे कुछ शिक्षा दे सकती है भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी ने परिक्रमा की पुनः प्रणाम किया नमन किया

0: Gur gedol kovap ve hag buram ve hu elif ve hay goalip ve sur heblip ve yom sarap ve hu nisip उमानोस्लिम
1: मेना का अभिवादन किया और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर गए।
0: वे इम रूही गिवियाती अदोनाइली वे लो इरा साम 23

0: The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen.
1: Russian Parsi prayers. बनावे यजत
2: अच्छे विचार यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है।
1: न्याओ दैन्याओ वंगयाओ मास दयोस नहीं दिन बिरास वधरोस के खुदा बरखल फरिश्ता दे इन हस्त के जरतोस्त ओर दे हस्त दिन दिन ए जरतोस्त दीने और मस्त दादे जरतोस्त स्मितमान यथाउ वैरियो यथा रथुस असाचित अचा वंगयोस दस दामनिंगोस शौत्रे नाम इंग्योस मस्दाय शौत्रेम चा औराय आयम दरेगोप्यो ददत वास्तारेम यथाउ वैर्यो यथा रतुस असाचित अचा वंगयोस दस दामनिंगोस शौत्रे नाम इंग्योस मस्दाय शौत्रेम चा औराय आयम दरेगोप्यो ददत वास्तारेम अशेम भव वैष्टेम अस्ति उस्ता अस्ति उस्ता माय यत अशाय वैष्टा अशेम नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश मे अवरा मजदा बी प्लीज इन द नेम ऑफ गॉड द बेनिफिशिएंट द फॉरगिवर द काइंड मे देयर बी प्रेज फॉर द नेम ऑफ अवरा मजदा हु हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड एग्जिस्ट एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट वन ऑफ हिज नेम इज गॉड द बेनिफिशिएंट स्पिरिट The most spiritual among the spiritual ones. One of his name is Aura Mazda, the omniscient Lord. He is the Lord, great, mighty, wise, creator, nourisher, protector, supporter, righteous, forgiver, holy dispenser of all powerful good justice. In Hindi, it is anuvad, in Hindi. Parmeshwar ke naam par, jo atyant dayalu, shamashil aur krupalu hai, औरा मजदा के नाम की स्तुति हो जो अनादि काल से विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे उनका एक नाम है परमेश्वर दयालु आत्मा जो सभी आध्यात्मिक सबसे अधिक आध्यात्मिक है उनका एक नाम है औरा मजदा स्वर्गना प्रभु वह प्रभु है मान शक्तिशाली बुद्धिमान सृष्टिकर्ता पालनहार रक्षक समर्थक धर्मी क्षमाशील सर्वशक्तिमान और न्याय के पवित्र दाता आमीन
2: संपूर्ण संसार का एक ही ईश्वर है और वही सर्वत्र व्याप्त है सिख धर्म की प्रार्थना
3: नाम जपावे सुख तेरा

चरण तोड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा, तुझ पावे ता नाम।

आवे सुख तेरा जिता लिए मेरे राम राय मेरे राम राय जो राखे त्योरी मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए वहां बेकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सर डालाए वहां बेकुंठ जय कीर्तन तेरा आपे सर डालाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला तुझ पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए मेरे राम राय मेरे राम राय जो राखे त्यों रही।

ਆਖੇ ਤਿਉਰੀਏ ਜਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਸੁਖ ਤੇਰਾ।

भी जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभ हे कृपाला सतगुरु पूरा पाया। तुझ पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए।

0: नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए
1: गीता पाठ करते से ज्ञान के साथ साथ मन को भी शांति
0: श्री परमात्मा ने नमः श्रीमद् भगवद् गीतायाः भक्ति योग नामनः द्वादशाध्यायस्य केषाञ्चन श्लोकानां पाठः प्रस्तुयते। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता।

0: अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है। हिंसा त्याग कर हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। गांधी विचार।
1: आई शैल कंटिन्यू टू आस्क गॉड टू गिव मी द स्ट्रेंथ नॉट टू बी एंग्री विथ माई एक्यूजर्स बट टू बी प्रिपेयर्ड इवन टू डाई एट देयर हैंड्स विदाउट विशिंग देम इल। आई क्लेम दैट हिंदुइज्म इज ऑल इंक्लूसिव। Religion can be defended only by the purity of its adherents and their good deeds, never by their quarrels with those of other faiths. For God-fearing men, all religions are good and equal. Only the followers of different religions quarrel with one another and thereby deny their respective religions. The essence of true religious teaching is that one should serve and befriend all. I learnt this in my mother's lap. Free India will be no Hindu Raj. It will be Indian Raj, based not on the majority of any religious sect or community, but on the representatives of the whole people, without distinction of religion. Hindi Anuvad, Gandhi Vichar. मैं सभी धर्मों के महान संतों और पैगंबरों में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा कि वह मुझे सहनशीलता दे, ताकि मैं उनके प्रति क्रोध न रखूं जो मुझे गाली देते हैं, बल्कि उनका भी अहित ना सोचते हुए उनके ही हाथों मरने को तैयार रहूं। मैं दावा करता हूँ कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है। धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के आचरण की पवित्रता एवं नेक कामों के द्वारा ही की जा सकती है। अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती। भगवान से डरने वाले लोगों के लिए सब धर्म अच्छे और समान है। विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वे अपने अपने धर्म को ही नकारते हैं। सच्ची धार्मिक शिक्षा का सार यही है कि इंसान सबकी सेवा करें और सबके साथ मैत्री रखें। मैंने यह अपने माता की गोद में सीखा है। स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, वह भारतीय राज होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, अपितु धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिवेशियों का राज होगा।
0: गंधर्व महाविद्यालय की प्रस्तुति बापू का प्रिय भजन।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राजघाट परिसर में

तो की समाधि में परिक्रमा की। बापू कहा करते थे आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं और आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने परिक्रमा की, नमन किया। अखंड ज्योति प्रज्वलित है, उन्हें भी नमन किया। सभी को नमन करते हुए

नमन किया, सभी अतिथि गणों को नमन किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया सभी का। अपना स्थान ग्रहण किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभी को नमन किया, हाथ जोड़ अभिवादन किया और अतिथियों को भी नमन किया, हाथ जोड़ अभिवादन किया सभी का और राजघाट परिसर से प्रस्थान कर रही है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राजघाट परिसर से

0: तुच्छ बापू का स्वप्न पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना, राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का शुभारंभ बुद्धिस्ट प्रार्थना से और समापन रामधुन से हुआ। प्रार्थना सभा में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रीति मोहन, कार्यक्रम अधिशासी कुमार, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप गांधी समाधि राजघाट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रही थी प्रीति मोहन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई इस्लाहात शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तल अवीव जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। गैर भारतीय पायलट स्मित मच्छर को इलाज के लिए अबूधाबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहरी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने खवातीन के रिकर्व तीरअंदाजी टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया है।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खराज-ए-अकीदत पेश किया और फूल नज़र किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अमन और अदम तशद्दुद का महात्मा गांधी का पैगाम दुनिया के कई हिस्सों में जंग और महाजाराई के माहौल में और भी ज्यादा इफादियत रखता है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा

0: भरे इस नजरिए को अगली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रामेश्वरम में नौतामीरशुदा पामबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समंदरी पुल है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 6 अप्रैल को रामनवमी के पवित्र दिन किया था। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि यह रामेश्वरम की पवित्र धरती के लोगों को मुबारकबाद देने का मौका है।
2: पम्बन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स देयर वाज अ डिमांड फॉर दिस ब्रिज। विथ योर ब्लेसिंग्स वी गॉट द प्रिविलेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क। पम्बन ब्रिज सपोर्ट्स बोथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड।
1: इससे पहले तारीखी पामबन श्रीलंका तक तिजारती कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से तामीर किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मदुरई डिवीजन के रेलवे अफसर ने बताया कि पुल के ढांचे की हिफाजत के लिए सिर्फ 99 अप्रोच गर्डर्स की तामीर में ही 3000 टन से ज्यादा फौलाद का इस्तेमाल किया गया है। IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के माहिरीन ने नवम्बर 2024 में इस डिजाइन की जाँच की। पामबन पुल उन बड़े समंदरी तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहा जिन्होंने धनुषकोड़ी को तबाह कर दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम कर रहे लोगों के लिए हवाबाजी के हिफाजती तरीकेकार को आसान और सरल बनाने के लिए सिलसिलेवार इसलाहात शुरू की हैं। नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने और कारोबार में आसानी से मुतालिक इसलाहात के बारे में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन तब्दीलियों का मकसद तरीकेकार को आसान बनाना और सिक्योरिटी के आला तरीन मेयार को बरकरार रखते हुए जवाबदेही पर मबनी हुक्मरानी की जानिब मुंतकली है। वजारत ने बताया कि BCAS ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के तरीकेकार को आसान बनाया है। यह तरीकेकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्तों, दस्तावेजात दाखिल करने, डिजिटल जांच और वेरिफिकेशन, डिजिटल इजरा और चेहरे बायोमेट्रिक तस्दीक को मुमकिन बनाता है। यह सिस्टम सभी 169 हवाई अड्डों पर मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तौर पर नाफिज किया जा रहा है। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तल अबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। तफ्तीशकार मस्कूरा प्रवास के कॉकपिट में भारतीय पायलट इसमें छाड़ पर ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट के हमले के वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब के हुक्काम ने इस वाकये की इब्तदाई छानबीन की थी। मस्कूरा हवाई जहाज को बुध के रोज वहां के तबरुक शहर में इमरजेंसी हालात में उतारा गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि वो फ्लाई दुबई प्रवास के बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन इसमत मछार की सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब में तबूक के एक अस्पताल में इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद कैप्टन इसमत को तिब्बी देखभाल और उनकी सेहतयाबी की खातिर अबूजबी ले जाया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय सफीर ने अस्पताल में कैप्टन इसमत से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इससे पहले सफीर मौसूफ ने उनके अरकान खानदान से भी मुलाकात की थी और उनकी सेहतयाबी और खैरवाफियत के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। वर्ल्ड फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उनके साथ बातचीत के दौरान जंग के खात्मे का मौजू बाकायदगी से उठाते रहे हैं और उन्होंने पुरान तस्वीर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सदर पुतिन ने भारत की सिफारती पोजीशन को गैर जानबदाराना करार देते हुए कहा कि वह मुखासमत के खात्मे में गहरी दिलचस्पी रखता है। मिजोरम में कल सियालसुक के नजदीक एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। इनमें PIB इम्फाल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इंगम पामे, डीडी न्यूज आइजोल के डायरेक्टर नांगपी बो मारिनमई और CBC आइजोल के MTS एच लियानवाला शामिल हैं। ये लोग जिस कार में जा रहे थे वो खाई में जा गिरी। इत्तलात मशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोगवार कुंभों से ताजियत का इजहार किया है। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन की रिकर्व तीरंदाजी टीम ने अपना पहला सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है।

0: भारतीय टीम ने आज खेले गए सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में अग्रणी चैंपियन जनूबी कोरिया को 3-5 से शिकस्त दी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से मगरबी बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में 3 साला रॉयल बंगाल शेरनी की कामयाब मुंतकली मगरबी बंगाल के पहले शेरों के तारुफ नो प्रोजेक्ट का आगाज है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की जानिब से फ्लाई दुबई वाकये में लोगों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट की सताइश की खबर को नुमाया जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार ने 9/11 जैसा सानहा होने से बचा लिया। इसी अखबार ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के निफाज से मुतालिक खबर को खसूसी तौर पर जगह दी है। इसके तहत पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जा रहा है और इसके निफाज के लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर महकमा ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक खुद कार सिस्टम लगाया गया है। वहीं दूसरे अखबार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिकनिक पर गए 8 तलबा की बुहरे अरब में डूबने से मौत की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। यह हादसा जुमेरात के रोज रायगढ़ जिले के दीवे आगार में पेश आया।
0: खास खबरें एक बार फिर। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनकाब किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई असलाहत शुरू की है। सऊदी अरब ने ओमान के उस मोमिन पायलट को मुतहदा अरब अमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तल अबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार को इलाज के लिए अबूजबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहरी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरगंगा। स्वरगंगा के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजीव वर्मा का सितार वादन। सितार वादन पर आज आप सुनेंगे राग विभास।

अभी आपने सुना स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजीव वर्मा से सितार पर राग विभास। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ वीडियो में।

0: 66.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, BRM 810 किलोहर्ट्ज पर।
1: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर? खेल का टाइम है, कुछ खो गया है क्या?
2: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
1: अरे क्या खो गया है?
2: इस बोतल का पानी जो अब नहीं है, तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
1: अरे सीट गर्म हो गई थी।
2: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
1: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
2: जा ढूंढ, आगे GPS लगेगा तब पानी मिलेगा।
1: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी बाणी है तेरी।
2: याद रखियो, पानी बाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
1: बात तो तेरी काम की लगती है।
2: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 9:15 शेष हैं 15 मिनट में, यानी कि 9:15 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। वार्ता का विषय होगा गांधी जी का व्यक्तित्व, वाक्य मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वार्ताकार अखिलेश आरेन्दु। लीजिए सुनते हैं।
3: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी का व्यक्तित्व वाक्य मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आलेख एवं स्वर अखिलेश आर्येंदु।
1: महात्मा गांधी को समझने के लिए उनके संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें उनके बचपन किशोरावस्था जवानी प्रौढ़ और जीवन की अंतिम श्वासों तक की उनसे संबद्ध छोटी बड़ी घटनाओं कार्यों व्यवहारों विचारों स्वीकृतियों और अस्वीकारों को सहज रूप से समझना होगा। उनके विराट व्यक्तित्व उनके संघर्षों और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को सूक्ष्मता से समझना होगा। महात्मा गांधी ने कोई ऐसा दर्शन प्रस्तुत नहीं किया जिसे केवल पुस्तकों में पढ़ा जाए और जीवन में उतारना आवश्यक न हो। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाया जिसमें जीवन के हर पल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया। इसलिए महात्मा गांधी के संदर्भ में यह बात अत्यंत सार्थक लगती है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। उनका संदेश देश के बाहर सात समुन्दर पार तक गया जिसकी प्रासंगिकता विश्व भर में आज भी बनी हुई है। यह कौन नकार सकता है कि उनका जीवन अत्यंत संघर्षों से तप कर नहीं निकला था। उनका व्यक्तित्व असाधारण होते हुए भी सामान्य मानव की कमजोरियों और संघर्षों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा वे जो करते कहते और स्वीकारते हैं वह अकाट्य है। उन्होंने अपने जीवन में हुई भूलों को छिपाने के बजाय सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उनकी यह स्वीकारता उनके व्यक्तित्व को असाधारण बनाती है। वे दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं पर प्रयोग करते थे। उनका बचपन भारत में अवश्य बीता लेकिन उच्च शिक्षा उनकी इंग्लैंड में हुई, लेकिन उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति और मत का प्रभाव नहीं पड़ा। सादगी शाकाहार स्वच्छता और सत्य के प्रति अनुराग उनमें आजीवन बना रहा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ

भारत लौटे। इसके बाद भारत को समझने के लिए वे गांव-गांव घूमे, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को जाना समझा। इसके बाद भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आंदोलन के जरिए प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों ने उन्हें भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वहाँ यह था कि गांधी राजनीति को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन से जोड़ना चाहते थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमानस को व्यापक रूप से संगठित किया। 1930 का दांडी मार्च विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नमक जैसी सामान्य वस्तु को महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। यह महात्मा गांधी की राजनीतिक कल्पनाशीलता का उदाहरण था। उन्होंने सामान्य भारतीय के नैतिक जीवन से जुड़ी चीज को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना दिया। ऐसा महात्मा गांधी ही कर सकते थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, स्वतंत्रता का अर्थ था गरीब, किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, पिछड़े, वंचित व्यक्ति के जीवन में सम्मान और अधिकार की स्थापना। वे चाहते तो सुख सुविधाओं वाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के सबसे कमजोर व्यक्ति वाला जीवन जीने का फैसला किया, जिससे उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरक बन सका। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली पक्ष उनकी सादगी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने पहनावे और जीवन शैली को आम भारतीय जीवन के अनुरूप बना लिया। यह केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं थी। उनका मानना था कि जिस देश की जनता गरीबी में जिंदगी बसर कर रही हो, उसके नेता का अत्यधिक वैभव में रहना नैतिक और सामाजिक रूप से उचित नहीं है। इसी तरह चरखा उनके लिए मात्र सूत काटने का उपकरण नहीं था, वह आत्मनिर्भरता, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्वराज्य का प्रतीक था। वे आधुनिक औद्योगिकीकरण के मौजूदा स्वरूप के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे ऐसी अर्थव्यवस्था से चिंतित थे जिनमें उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय असीमित भोग और मुनाफा बन जाए। बढ़ती गैर बराबरी ने यह साबित कर दिया है कि जिस चीज से चिंतित थे वह हमारे सामने उपस्थित है। स्वदेशी उनके आर्थिक चिंतन का आधार बिंदु था। उनका आर्थिक चिंतन आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने विकास को केवल उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से नहीं देखा। वे पूछते थे कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं। उनका अंत्योदय का विचार इसी संवेदना से जुड़ा था। निर्णय लेते समय सबसे कमजोर और सबसे अंतिम व्यक्ति के हित को ध्यान में रखना। सत्य के साथ वे अहिंसा को प्रबलता के साथ स्वीकारते थे। सत्य के प्रति आग्रह उनके व्यक्तित्व की केंद्रीय विशेषता थी। वे सत्य को केवल बोलने तक सीमित नहीं करते थे, सत्य उनके लिए नैतिक साहस का आधार था। इसी तरह अहिंसा महात्मा गांधी के विचारों का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ थी, लेकिन अहिंसा को कमजोरी समझना महात्मा गांधी को समझने की भूल होगी। उनके लिए अहिंसा कायरता नहीं बल्कि साहस की चरम अवस्था थी। महात्मा गांधी का मानना था कि साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी साधन और साध्य दोनों को वे पवित्र मानते थे। यदि लक्ष्य अच्छा है तो उसके लिए अपनाए गए साधन भी मूल्यपरक होने चाहिए। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यदि समाज हिंसा, घृणा और प्रतिशोध को अपना ले तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बावजूद समाज भीतर से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह राजनीति के विषय में उनका मत था कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, समाज की सेवा का साधन होनी चाहिए। महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद संकीर्णता नहीं थी। वे भारत की स्वतंत्रता तो चाहते थे, लेकिन दूसरों से घृणा के आधार पर नहीं। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता का मकसद दुनिया से अलग होना नहीं चाहिए। देश को स्वतंत्र कराने के साथ साथ वे समाज को सुधारना भी चाहते थे, लेकिन
लेकिन उनकी इस संबंध में सोच तत्कालीन अन्य समाज सुधारकों से भिन्न थी। छुआछूत, जन्मगत भेदभाव, जात पात, मंदिर में दलितों के प्रवेश के मुद्दों को उन्होंने राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व का ठीक ठीक मूल्यांकन तभी होगा जब उनके योगदान के साथ उनकी सीमाओं आलोचनाओं पर भी ईमानदारी से

0: विचार किया जाए। धर्म के विषय में महात्मा गांधी का विचार तत्कालीन समाज सुधारकों से भिन्न था। वे धर्म को परंपराओं से जोड़ते चलते हैं, लेकिन उसे सांप्रदायिकतावाद से अलग करते हैं। वे मानते हैं कि धर्म का उद्देश्य मानव को सत्य, करुणा और नैतिकता की ओर चलना चाहिए। धर्म घृणा, अन्याय, हिंसा, शोषण और असहिष्णुता नहीं सिखाता। उनका आहार विहार, आचार विचार, कार्य, नीति, सिद्धांत और व्यवहार लचीला और समझौतावादी था। अहिंसा उनके जीवन का दूसरा सबसे बड़ा वैचारिक और व्यवहारिक हथियार था। आत्म परिवर्तन और ब्रह्मचर्य का परीक्षण उनके जीवन का एक नया प्रयोग था। उन्होंने हर विचार, कार्य और सिद्धांत को जीवन की प्रयोगशाला में जांचा परखा। सबसे बड़ी बात उनके जीवन की यह थी कि उन्होंने अपनी कमियों को भी दुनिया के सामने बगैर छिपाए उजागर किया। उनका जन्म और मृत्यु दोनों विश्व समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आज जब दुनिया संकटों से गुजर रही है, युद्ध, सांप्रदायिकता, कट्टरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट, बाजारीकरण और सामाजिक अविश्वास लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महात्मा गांधी के विचार, कार्य, नीति, सिद्धांत और व्यवहार जनजीवन को प्रेरणा देने का कार्य कर सकते हैं। वे किस तरह के व्यक्तित्व थे के संबंध में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के 17वें जन्मदिन पर 1939 में कहा था, जो आज भी प्रासंगिक है। आइंस्टीन महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा था, आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति कभी सचमुच इस धरती पर हाड़ मांस के शरीर में चला था। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि विचार तभी प्रभावशाली बनते हैं जब वे जीवन में दिखाई दें।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी का व्यक्तित्व वाक्य, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आलेख एवं स्वर अखिलेश आर्येन्दु।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय होने जा रहा है हमारे अगले कार्यक्रम का, वो है मिट्टी दी महक। लीजिए सुनते हैं।

दिन में 11:30 बजे बाबा कौम महात्मा गांधी के शख्सियत के हवाले से एक फीचर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, गांधी नामा, तहरीर जनाब दानिश इकबाल की। दिन में 12 बजे खबरें नशे की जाएंगी और

12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 बजे तारीख सास प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आज का मौजू है लाल बहादुर शास्त्री। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए हमदे बारी ताला और नाते रसूल करीम। पेश कर रहे हैं माजिद देवबंदी।
1: उर्दू सर्विस के सामईन की खिदमत में मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी आदा पेश कर रहा हूं। हमदे बारी ताला पेश करता हूं, समाप्त फरमाए। हवा करे है बयान

0: بارگاہ رسالت ماہ میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے ماجد دیوبندی. اس کے ساتھ ہی سبگاہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: اور اب سمے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور جاننے کا کہ آج 2 اکتوبر جو ہے وہ کیوں وشیش ہے.
2: جی الکا, ایز یو رائٹلی سیڈ, ٹوڈے از 2nd of October. وی آر مارکنگ اینڈ ابزرونگ دا برتھ اینیورسری آف مہاتما گاندھی. اینڈ ٹوڈے آن دس ڈے وی آلسو ابزرو دا انٹرنیشنل ڈے آف نان وائلنس. نان وائلنس از ناٹ سمپلی اباؤٹ اوائڈنگ فزیکل وائلنس, اٹ از آلسو اباؤٹ چوزنگ پیس اوور اینگر, ڈائلاگ اوور کانفلکٹ, and understanding over hatred. And as Mahatma Gandhi so rightly said, an eye for an eye only ends up making the whole world blind. With this belief, this thought process, Gandhiji believed that real strength lies not in hurting others, but in having the courage to respond with truth, patience and compassion.
1: Bilkul Sarabjit, jo hum chahte hain na, uski shuruaat sabse pehle hame khud se karni chahiye.
2: Bilkul.
1: और 1952 में भारत ने ग्रामीण उत्थान और सर्वांगीण सामाजिक सुधार के उद्देश्य से देशव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत की गई. और 1985 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से दहेज निषेध संशोधन नियम लागू किए गए, जिससे महिलाओं के सामाजिक अधिकारों और सुरक्षा को कानूनी मजबूती मिली.
2: Listeners, we are paying tributes today to Mohandas Karamchand Gandhi. Today is Gandhiji's birth anniversary. Born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gandhiji went on to become one of the most influential leaders of India's freedom movement. His philosophy of satyagraha, or the pursuit of truth through non-violent resistance, became a powerful instrument against injustice. From the Champaran satyagraha to the non-cooperation movement and the historic Dandi March, Gandhiji connected the freedom struggle with ordinary people and their everyday lives. And Alka, today when we talk about Gandhiji, you know, the first image which comes to my mind is the charkha and the khadi. And today when we are talking about vocal for local, the use of khadi has you know, a great significance in our life.
1: Aur ek baat aur batao ki ye jo aap jab bhojan pakati hai na, chawal
2: ji,
1: to hum chawal pakate hain, usme se agar ek mutthi chawal hum khadi nikal le, प्रतिदिन हम निकाल लें, तो वो पूरे महीने का 4.5 किलो होता है.
2: बिल्कुल.
1: और इसी को मुठिया कहा गया था. जिस समय भोजन का संकट था तो उस समय ये मुठिया चला था, और ये भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था.
2: सो इंडीड अलका, गांधी जी मैसेज वॉज सिंपल, डेवलपमेंट शुड एम्पावर पीपल एंड कम्युनिटीज.
1: बिल्कुल. और आज ही जयंती है उस माटी के लाल की जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान. एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री. जी, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की. वो एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का उपहार दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिक क्रांति की राह भी दिखाई. शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था. शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है. उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया. और आज जन्मदिन है हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता आशा पारेख का.

0: और 60 के दशक में अपनी अभिनय प्रतिभा से सभी को अचंभित कर देने वाली अभिनेत्री आशा पारिक ने शमी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, देवानंद, अशोक कुमार, सुनील दत्त और राजेश खन्ना जैसे मजे हुए कलाकारों के साथ काम किया और मुख्य फिल्में थी मैं तुलसी के आंगन की, फिर वही दिल आया हूँ, कड़ी पतंग, मौसम, कन्यादान, आन मिलो सजना, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, मेरा गाँव मेरा देश और बहुत सारी। और फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2022 में प्राप्त हुआ।
1: सो इंडीड मेनी मेनी गुड विशेस टू द ग्रेट आशा पारेख।
0: बिल्कुल। और
1: बिजनेस टाइम टू वाइंड अप टुडेज शो।
0: बिल्कुल। और सरबजीत और अलका को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्रीडिज पर हमारी नशियात जारी है। सुबह के 9:50 हो जाते हैं। अब खबरें नशे की जाए।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एविएशन के सिक्योरिटी अमल को ज्यादा सहल और तेज रफ्तार बनाने की खातिर कई असलाहत शुरू की हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तलबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मित मच्छार को इलाज के लिए अबूजबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने खवातीन के रिकर्व तीरंदाजी टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरूनी मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फूल नजर किये। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अमन और अदम तशद्दुद का महात्मा गांधी का पैगाम दुनिया के कई हिस्सों में जंग और महाजाराई के माहौल में और भी ज्यादा इफादियत रखता है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी और उनके नजरियात को दुनिया भर में बहुत एहतराम की नजर से देखा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर कहा है कि महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी सदाकत, अदम तशद्दुद, रवादारी और खिदमत का नमूना रही है। जनाब मोदी ने कहा कि बापू की तालीमात हर दौर में इंसानियत की राह दिखाती रहेंगी। जनाब मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि महात्मा गांधी का लाफानी पैगाम हम वतनों को बेहतर समाज और विकसित भारत की जानिब पेश कदमी में रहनुमाई करता रहे। बाबाए कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश मनाने के लिए गुजरात में कई सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल पोरबंदर में महात्मा गांधी की जाय पैदाइश कीर्ति मंदिर में एक दुआया जलसे में शिरकत करेंगे। इसी तरह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी सभी मजहबों के दुआया जलसे का एहतमाम किया गया है। पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिम भी चलाई जा रही है। इधर रियासती सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर खादी और पॉली वस्त्र तैयार करने पर 30% की खसूसी मार्केट तरगीबी इमदाद का ऐलान किया है। ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुल्क के लिए खादी

0: بابا اکرم، مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر یعنی گاندھی جینتی کے موقع پر ابھی آپ باپو کے پسندیدہ بھجن سماعت کر رہے تھے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشر جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیشہ خدمت پروگرام کنٹری وائڈ.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड. इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
2: नशे का प्रकोप न केवल इसका सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM. डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में.
3: थैंक यू.
2: डॉक्टर कुमार, गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की और कहा उनकी पार्टी नशे की समस्या को पंजाब में पूरी तरह से खत्म करेगी. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे.
4: जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहां पर मारा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती. मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है ऐसे परिवार को मिलकर आया हूँ. एक माँ अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो. पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो. सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए.
2: डॉक्टर कुमार, गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है. कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को, पंजाब में जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के ओवरऑल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए?
5: माननीय अमित शाह जी ने जो कल डिक्लेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस देश में अगर हाईएस्ट लेवल पे लोग सीरियस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, तो आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखेगा. मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं पंजाब का. पंजाब, राजस्थान, ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जहां ट्रेडिशनली लोग अफीम लेते थे, ओपियम यूज करते रहे हैं, और बहुत सारे आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. 78-79 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आए और ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी का रिवॉल्यूशन हुआ, तो जो ड्रग पहले ये इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान में जो पैदा होता था, जो प्रोसेस होता था, वो यूरोप जाता था थ्रू यूगोस्लाविया. मगर चूंकि यहां इंटरवेंशन हो गया तो वो सारा का सारा ड्रग पंजाब के थ्रू रूट होने लगा. और

0: इस समय था पंजाब का जब वो काफी डिस्टर्ब भी था। पंजाब में अगर आपको याद होगा आतंकवाद, तो आतंकवाद और ड्रग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार जो पहला स्टडी वो हमारी संस्था SPOM ने किया था 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में भारत सरकार के लिए हमने किया था। तो इन सब में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर बहुत भयावह है, और अगर अभी भी अगर कुछ बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा तो वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
1: तो आप ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितना विस्तार है इस समस्या का?
0: देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जनरली पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 0 से 15 वाले बहुत कम बच्चे नशा करते हैं। तो लगभग 60-70 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग चिट्टा, या जिसको आजकल हीरोइन को चिट्टा आजकल बोलते हैं, वो अगर इतना बड़ा है तो आप सोचिए हर 6ठा-7वां बच्चा, मेल बच्चा नशा कर रहा है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डेटा है, लगभग 47% जो लास्ट मेरे पास डेटा आया था, 47% लोग पंजाब के प्रिजन्स में ड्रग यूजर्स या NDPS एक्ट में बंद हैं, और लगभग 12 लाख लोग अलग अलग पंजाब सरकार के जो प्रोग्राम है ओट्स, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पंजाब का, उसमें रजिस्टर्ड है, DADXS सेंटर्स में रजिस्टर्ड है, या प्राइवेट सेंटर्स में रजिस्टर्ड है। तो 12 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर है, और पंजाब यूपी और मध्य प्रदेश राजस्थान उतना बड़ा स्टेट नहीं है, इतना छोटा स्टेट है, तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है।
1: जो लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको सेंसिटिवली उनके साथ डील करना, और उनके ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में आप हमें बता सकते?
0: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% उससे ज्यादा बच्चे नशा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में, और देखिए अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन में बड़ा फर्क है। जैसे लोग जानते हैं कि टोबैको यूज से कैंसर होता है, या गुटखा या इस तरह के च्यूइंग टोबैकोज है वो खाने से उनको कैंसर होता है, मगर वो छोड़ते नहीं है। दे आर अवेयर, उनको जानकारी है, जागरूकता है। प्रिवेंशन के लिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है लाइफ स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं हुनर, जीवन कौशल, वो स्कूल में दिया जा सकता है कि ना कैसे कहें, अपने दोस्तों के दबाव से कैसे बचें, उन दोस्तों के बीच में न जाएं जो दोस्त ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और माननीय अमित शाह जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नवचेतना, तो पंजाब के हर स्कूल में नवचेतना का प्रोग्राम होना चाहिए। ये लाइफ स्किल बेस्ड है। दूसरा, जिन बच्चों ने नशा लेना शुरू किया है उनको एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, और ये चंडीगढ़ में बहुत सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें लगभग 4000 बच्चों को जो लोग नशा कर रहे थे उनके पीयर ने उनको वापस स्कूल में दाखिला करवाया, और इन बच्चों को शायद डी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी ये उनकी डिपेंडेंसी बहुत छोटी है, बहुत कम समय का उनका यूज है, मगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तीसरी स्ट्रेटजी है जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, और स्टिग्मा प्रिवेंट करता है लोगों को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए। ये प्रिवेंट करता है फैमिलीज को उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाने के लिए, कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब तक तीनों स्ट्रेटजीज नहीं आप लागू करेंगे स्टेट में, तब तक बहुत कुछ हम नहीं अचीव करेंगे।
1: डॉक्टर कुमार, नशा मुक्त भारत अभियान सरकार ने शुरू किया 2020 में, और उसमें इसी तरह का, जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन, लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि ये एक समस्या है जिसपे काबू पाया जा सकता है, और सब कम्युनिटी के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, और इसमें ऑलरेडी 29.32 करोड़ सिटीजन्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा जोड़ा गया है। ये इस तरह के, या जैसे मानस जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं 1933 और अपनी समस्या काउंसलिंग ले सकते हैं, इस तरह की जो पहल सरकार की है, या आपको लगता है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत जरूरी है?
0: देखिए, ये सारे के सारे कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए होता है। जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करते थे, अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा मैं भी परेशान था या मैं भी परेशान थी, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। वैसे ही अब जब नशे के ऊपर जब बात शुरू हो रही है, तो ये वातावरण निर्माण हो रहा है, और उस वातावरण निर्माण में से प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक नेशनल कॉल दिया था यंग लोगों के लिए, तो अलग अलग लोगों ने जो कॉल दिया, बट ये वातावरण का निर्माण हो रहा है, मगर इसमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसमें वो स्टेप लेने की जरूरत है जो साइंस, मतलब विज्ञान और साक्ष्य के आधार पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो अच्छे ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उसमें वो डॉक्टर्स नहीं है जो समझ सकते हैं कि अब नए प्रकार की दवाइयां बाजार में है उसको यूज किया जाए। तो

0: तमाम चीजों पे भी ध्यान देना होगा अपार्ट फ्रॉम ये जो वातावरण निर्माण की जो आप बात कर
1: रहे हो। तो जो आप चुनौती बता रहे हैं कि ट्रेन्ड जो मैन पावर है उसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जानी चाहिए। इनफैक्ट इसके बारे में बात भी हुई है कि ये स्किलिंग जो है कि कैसे ट्रीटमेंट जो वहां पे जो केयर गिवर्स हैं वो कैसे उनको डील करें। तो इस डीलिंग में जैसे आपने विज्ञान की बात कही, विज्ञान के साथ साथ आपको लगता है कि एक सेंसिटिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है।
0: समझिए, मैंने पहले जो स्टिग्मा वर्ड किया था वो यही है। दुनिया में एकमात्र बीमारी है जिस बीमारी के लिए व्यक्ति को जेल जाना होता है या मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाना होता है। तो समाज और देश और सरकार को समझना होगा कि यह व्यक्ति जो नशे के गिरफ्त में है उसको इलाज की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी इलाज की जरूरत है, उसको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल्स हैं उसके सपोर्ट की जरूरत है।
1: तो जैसा आपने कहा कि अभी जो दायरा है ऑलरेडी बहुत बड़ा है जो भारत के स्तर पे जो अभियान चल रहा है, लेकिन इसके विस्तार की और भी जरूरत है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें या जो महिलाएं यूजुअली जो पूरे परिवार है उसको एक तरह से उसकी नर्चर करती हैं, ऐसे जो पेरिफेरल ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी है उनको किस तरह से उनको इसमें शामिल किया जा सकता है इस मुहिम में?
0: देखिए, मैंने आपसे बताया स्कूल बेस्ड जो प्रोग्राम है और नवचेतना है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नवचेतना में एक चैप्टर है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इसके अलावा दो बड़ा एक पॉपुलेशन है इस देश में, एक है फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है। इनको ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि कोई अब इसके गिरफ्त में आ गया। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको, या पंचायती राज की जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें लेकर आए। क्योंकि जब तक ये तीनों बड़े जो मिनिस्ट्रीज है ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो हम लोग उस पॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, शहर में भी कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों को आना पड़ेगा।
1: जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो नशा मुक्ति मित्रास का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिसमें वॉलंटियर्स जाके समझाते हैं, वो भी आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे जैसा आप कह रहे हैं कि जो छोटे शहर है या रूरल एरियाज हैं वहां के लिए एक बहुत ही सुगम और प्रभावी एक तरीका है?
0: देखिए, अधिकतर ये जो मित्र बने हैं वो मित्र कहां से, NSS से है, NYK जो माई गॉव आजकल उसका नया नाम हो गया है, NCC है, इन संस्थाओं के बच्चे बने हैं। क्योंकि ये बच्चे दूसरों बच्चों से थोड़े, मैं बेहतर नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। क्योंकि वो अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं। तो इस तरह के जो मित्र बने हैं उनका भी रोल बड़ा अच्छा है, बट उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की, उनको एज ए पीयर एजुकेटर उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, हम और यंग पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं कहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना होगा और उसके लिए भी भारत सरकार के पास प्रोग्राम है।
1: So, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास प्रोग्राम्स हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे, उसमें बाकी लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर कुमार, आपने शुरुआत में बात कही थी जो बाहर से बॉर्डर के पार से ड्रग्स आती हैं, अब चाहे वो टेररिज्म हो या चाहे वो ड्रग्स हो, ये बॉर्डरलेस कहें कि मेनेसेस हैं, ये सभी को प्रभावित करती है और सभी के लिए उतने ही हानि पहुंचती है, उनकी इकोनॉमी को, उनकी पूरे जो पीढ़ी है उसको। तो क्या कहेंगे आप, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी जरूरी है इस समस्या से पार पाने के लिए?
0: देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर तो आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सैंडविच है बिटवीन ये जो तीन कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, वहां पे जो कल्टीवेशन होता है उसका काफी बड़ा पोर्शन इंडिया आता है या इंडिया के थ्रू वो बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरा जो म्यांमार है, म्यांमार में अभी आपको पता है कि वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो ड्रग अभी ओपियम पैदा हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो हमारे ईस्टर्न जो तीन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उससे आ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता है कि कहां से ड्रग निकलकर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो हमारे संबंध है उन एजेंसीज के साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
1: तो जैसा आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो एंटी

0: नारकोटिक्स टास्क फोर्सेज हैं, उनको जो सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम करना है, सभी देशों को साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता हो तो कोई भी समस्या पार की जा सकती है। सो इस उम्मीद और आशा के साथ कि नशा मुक्त भारत एक का जो सपना है वो साकार होगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कुमार।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समय हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और आज दो अजीम शख्सियात इस दुनिया में तशरीफ लाईं। सदाकत और अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाने वाले बाबा कौम महात्मा गांधी, उनमें से एक शख्सियत, और दूसरी शख्सियत जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, साबिक वजीर आजम जनाब लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। आज कौम इन दोनों अजीम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश कर रही है।

अब उस शख्सियत की बात करते हैं जिसको हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो हैं हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की मारूफ जुबली गर्ल कहलाने वाली और हिट गर्ल के नाम से भी जाने वाली सदाबहार अदाकारा आशा पारेख जी। आशा पारेख 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में पैदा हुई और उनकी वालदा ने उन्हें बहुत कम उम्र में क्लासिकी मौसीकी और डांस सिखाया जिसमें वो माहिर हो गई, और बिमल रॉय ने उन्हें एक स्टेज शो में देखा और फिल्म माँ जो 1952 में मंजर आम पर आई थी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उस फिल्म के लिए उनको कास्ट कर लिया। 16 साल की उम्र में बतौर हीरोइन वापसी की उनकी कोशिश हुई। नासिर हुसैन ने उन्हें फिल्म दिल देखे देखो में उनका हीरोइन के तौर पर इंतखाब किया। शुरुआत में यह हुआ कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी एंट्री तो हुई फिल्मी हिंदी फिल्मों में, लेकिन फिर अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिल्मों से थोड़ी सी दूरी बना ली थी। 16 साल के बाद फिर वापस आई, उसके बाद बहुत उम्दा और हिट फिल्में दी, तीसरी मंजिल, कटी पतंग, दो बदन, साजन जैसी सुपरहिट फिल्में और दिल देके देखो में वो दोबारा दिखाई दी थी। तो उन्हीं की फिल्मों के चंद नगमे अब आपको सुनवाते हैं।

नासिर हुसैन की फिल्म दिल देख के देखो में उनके हीरो थे शम्मी कपूर, और इस कामयाबी ने नासिर हुसैन और आशा पारेख की एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई दोनों में। और उसके बाद जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम वगैरह में उन्होंने काम किया, और ये सभी फिल्में हिट रही।

0: की उर्दू सर्विस है और इस जब सुनिए बावकाम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर ये फीचर गांधी नामा।
1: जब महात्मा गांधी इस जहान में वारिद हुए, समंदरों ने अपनी लहरों से साहिल के कदम चूमे, आसमां का एक एक तारा रोशनी से चमक उठा, बादे सबा ऐसी चली कि पत्ता पत्ता थिरक उठा, ऊंचे ऊंचे दरख्त झूमे, आबशारों ने गीत गाए, जंगल में फिर मंगल हुआ, बेमौसम यूं अचानक सावन बरसा कि सूखा गुजरात बस गोकुल हुआ, धरती से यूं हुन बरसा कि मुफलिस खुशहाल हुए, खेतों ने सोना यूं उगला कि किसान मजदूर सब माला माल हुए।

0: हम सब की आरज़ूएं होकर रहेंगी पूरी, हम सब की आरज़ूएं गांधी हुआ है पैदा भारत के भाग जागे।
1: दास्ताने आलीशान महात्मा गांधी की कुछ यूं बयान की जाती है कि पोरबंदर की रियासत में जहां मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, उनके वालिद माजिद करमचंद उत्तमचंद गांधी रियासत के दीवान थे। लेकिन मोहनदास की पैदाइश के बाद हालात कुछ ऐसे बदल गए कि उनके वालिद किसी बात पर नाराज होकर राजकोट में बस गए। एक दिन वो बीमार पड़े। मोहनदास ने बाप की बहुत सेवा की, लेकिन होनी कौन टाल सकता था, उनके वालिद हो गए जन्नती।
2: मोहनदास की वालिदा श्रीमती पुतलीबाई थी बहुत दयावान और धर्म कर्म वाली। उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी धर्म की गहरी आस्था। वो वैष्णव थी लेकिन जैन धर्म में भी उन्हें विश्वास था। वो हर समय गीता और रामायण के मुताले में डूबी रहती और अपने बेटे से धर्मात्माओं की कहानियां कहती रहती। मोहनदास की माताजी ने बचपन से ही उन्हें भगत प्रहलाद का किस्सा सुनाया था और राम और कृष्ण जैसे अवतारों के जीवन से भी मुतारिफ कराया था। बचपन से ही मोहनदास को अपने ऊपर बहुत विश्वास था। उनके अंदर जिद बहुत थी और अजब सा एक एतमाद था। वो जो काम सोच लेते उसे करके दिखाते थे और एक बार अगर इरादा कर लेते तो किसी को खातिर में ना लाते थे।
3: तो एक दिन मोहनदास ने शोशा छोड़ा कि वो इंग्लिस्तान जाएंगे और वहां से बड़े बैरिस्टर बनकर वापस आएंगे। घर में ये बात सुनकर एक सन्नाटा सा छा गया और उनकी माताजी को तो बस गशी आ गया। लेकिन बेटा जिद्दी था, ये बात थी सबको पता। वहीं पास में एक जैन साधु भी रहता था। उनकी माता ने कहा साधु से कि वो मोहन को समझाएं, कुछ नसीहत भी करें और करें कोई उपाय। साधु ने कहा, ये बालक उड़ता पंछी है, इसकी परवाज न रोको, जो भी ये करना चाहता है इसको करने दो। माता ने कहा, मजबूर होकर इससे लीजिए ये कसम, ये गोश्त कभी नहीं।

0: खाएगा और ना ही कभी किसी अंग्रेज मेम को मुंह लगाएगा।
1: इस तरह मोहनदास सन 1888 में इंग्लिस्तान वारिद हुए। वहां 3 साल तक वो रहे और खूब फूले फले। पहले पहल वो जेंटलमैन थे और नाच गाना भी उन्होंने सीखा था, लेकिन फिर दिल कुछ ऐसा बदला कि पढ़ने लगे रामायण और गीता। फिर उन्होंने सच को ढूंढा इंजील से और कुरान से, इल्म की दौलत समेटी हर भले इंसान से। इंग्लिस्तान में वो चर्च में भी गए और वहीं दादा भाई नौरोजी से भी मिले।
0: कानून की तालीम पूरी करके ये नौजवान बैरिस्टर वतन वापस आया और बैरिस्ट्री के काम में साल भर के अंदर काफी नाम कमाया। तभी मोहनदास को दादा अब्दुल्ला जैसे बड़े बिजनेसमैन का साउथ अफ्रीका से एक लंबा चौड़ा खत आया। लिखा था, मोहनदास तुम अफ्रीका आ जाओ, मुझे जरूरत तुम्हारी है, फौरन चले आओ।
2: मोहनदास ने सोचा ना था कि वो साउथ अफ्रीका ऐसे जाएंगे कि अगले 20 साल तक जैसे बस वहीं के हो जाएंगे। मोहनदास को अफ्रीका में खासी कामयाबी भी मिली, लेकिन वहां अंग्रेज के बातिल निजाम की परवरदा हर खराबी भी दिखी। मोहनदास ने देखा कि अंग्रेज मकामी लोगों को इंसानी नहीं समझते थे और हिंदुस्तानियों की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखते थे।
0: जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी का हर तरफ दौर दौरा था। वैश्विक गोरों ने इंसानियत को कहीं का ना छोड़ा था। यहाँ तक के हिंदुओं मुसलमानों की शादी भी वहां मानी ना जाती थी। न शौहर था कोई और ना कोई किसी की पत्नी जानी जाती थी।
1: मोहनदास को वहां जुल्मो सितम का सामना करना पड़ा, पर मुकाबले के लिए सत्याग्रह का रास्ता मोहन ने चुना। दुनिया ने मौजजा ऐसा कभी देखा न था। सो नतीजा ये हुआ कि अपना गांधी धीरे धीरे महात्मा वहीं बनने लगा। उन्होंने आश्रम भी खोले अपने पैरुओं के वास्ते। धीरे धीरे हजारों लोग उनके पीछे आ गए
0: और फिर अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की जिंदगी संवार के महात्मा गांधी 1914 में वापस वतन को आ गए। हिंद वापस आके बापू ने पूरे मुल्क का दौरा किया। अमन का ये पैगंबर संदेशा अपना लेकर घर घर गया। यही वो दौर था जब पहली आलमी जंग के शोले दुनिया में लगे थे फैलने और अफरा तफरी के इस जमाने में हिंदुस्तानी आवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना और फैलाना चाहते थे।
2: किस्सा कुछ यूं है जनाब कि भारत आकर महात्मा गांधी ने साबरमती में अपना एक आश्रम खोला और चंपारण से लेकर अहमदाबाद तक हर जुल्म के खिलाफ हल्ला बोला। मुल्क ने उनकी दावत को लब्बैक कहा और हर शख्स उनके पीछे आ गया। महात्मा गांधी की शौहरत मुल्क के बाहर भी लगी थी फैलने और सारी दुनिया पुरुम्मीद होकर उनको लगी थी देखने। जलियांवाले बाग का किस्सा भला कौन है भूल सकता। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन यौमे स्याह है जिसने अमृतसर को बनाया एक ज़ियारतगाह है, उसी जगह जहां हिंदू मुसलमानों सिखों ने मिलकर एक साथ जामे शहादत नोश किया था और वो बेगुनाह मासूमों के खून से देश ने स्वराज की बुनियाद का एक नमूना पेश किया था।
0: तो जनाब, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का असर था जिसने इतने बड़े हादसे के बाद तशद्दुद की लहर को दबाया था और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज को लड़ने मरने से बचाया था। गांधी जी के इस नए तरीके ने दुनिया को चौंका दिया, खासतौर पर वो लोग जो अंग्रेजों की नौकरी में थे उनको दहला दिया। अकबर अलाहाबादी उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत में मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने घबरा कर फिर ये लिखा, कूचे सर्विसे इंग्लिश में रहे हम साकिन, कूचे सर्विसे इंग्लिश में रहे हम साकिन, जाहो जर ही की तमन्ना में कटे जीस्त के दिन, वाजे गांधी से बदल सकते हैं क्यों कर बातिन,
3: آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟

0: उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन।
1: ये सारी बातें तो होती रहेंगी, अब चले कुछ बातें ऐसी भी हो जाएं जिससे बापू की जिंदगी के अनदिखे पहलू हम सबको दिख जाएं। एक बार की बात है कि अपने बापू एक जेल में कैद के दिन बिता रहे थे, और अजीब बात ये थी कि इस जेल में अंग्रेजों के हिमायती बन के हिंदुस्तानी मच्छर भी उनको सता रहे थे। अजीब जालिम मच्छर थे जो उनको दिन रात काटते थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलने वाले बापू उनको नहीं मारते थे। और फिर जो नहीं होना था वो ही माजरा हो गया, यानी अपने महात्मा गांधी को मलेरिया हो गया। और फिर जैसे जैसे उनका बुखार बढ़ता गया, अंग्रेजी इलाज के लिए बापू का इनकार भी बढ़ता गया। आखिरकार जाने माने डॉक्टर बीसी रॉय बापू को देखने जेल में आए, लेकिन इलाज के लिए बापू को देर तक समझा ना पाए। बापू ने जब बीसी रॉय की बात नहीं मानी तो रॉय साहब ने बापू को लाजवाब करने की ठानी। कहने लगे, डॉक्टर रॉय, हम आपका इलाज करने नहीं आए, आपको बचाकर हमें 400 मिलियन हिंदुस्तानियों को बचाना है। आपका इलाज उनके इलाज का दरअसल एक बहाना है। अगर आप इस बीमारी से किसी तरह बच जाएंगे तो 400 मिलियन अपने देशवासी बच जाएंगे। बापू मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, तुम जीते मैं हारा, दलील में तुम्हारी दम है। तुम्हें वकील बनना था, तुम डॉक्टर कैसे बन गए? डॉक्टर रॉय भी कम नहीं थे, दवा की खुराक पिलाते हुए बोले, महात्मा जी, अगर मैं वकील बन जाता तो बड़ा जुल्म हो जाता, क्योंकि फिर बापू की सेवा कैसे कर पाता। बापू कहने लगे कि ए बीसी रॉय, तुम्हारा ये कमाल का जुमला बताता है कि डॉक्टरी से कहीं ज्यादा तुमको कानूनी दांव बेचाता है।
2: और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट की बारी आई, जिसमें महात्मा जी ने देश को एक नई राह दिखलाई। बापू ने जोर देके कहा कि हर एक हिंदू का यह फर्ज है कि वो तहरीके अदम तावुन में इंतहा तक मुसलमानों का साथ दे। बापू ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान ऐसे लोगों से तावुन करे जो अपने अमाले हुकूमत के जालिमाना जराइम से पर्दापोशी करे। कहा उन्होंने, मैं तस्लीम करता हूं कि अदम तावुन का रास्ता बड़े खतरात वाला है, लेकिन हमें एक जिंदा कौम बनना है तो यही एक तरीका बस करामात वाला है।
0: फिर इस तहरीक में वो दिन भी आया जब महात्मा गांधी का हाथ हाथ में लेकर मौलाना आजाद ने फरमाया, भाइयों, तहरीके खिलाफत अब एक मंजिल पर पहुंच गई है, खिताबात वापस करके जिसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। हम अंग्रेजों का साथ अब कभी ना देंगे, आइंदा इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा। और आइए आज हम ये तय करें कि सरकारी नौकरी वाले नौकरियां छोड़ देंगे, ओहदे वाले अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देंगे और तालिबे इल्म सारे यूनिवर्सिटियां छोड़ देंगे।
1: अंग्रेज सोच नहीं सकते थे कि उनके आगे कोई ऐसा सीना सपर होगा। अकबर इलाहाबादी ने देश को पहले ही बता दिया था कि गांधी की आंधी अंग्रेजों के होश उड़ा रही है। देखिए क्या खूब कहते हैं अकबर,
3: नहीं।

मगर बापू ने ये सारी शायराना बातें अनसुनी करते हुए चरखा चलाया और कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी जरूरत का सामान भाइयों खुद ही बनाओ। और फिर वो यादगार लम्हा भी आ ही गया जब देश के लोगों ने विलायती के मोह को छोड़ा, अपने देश का खद्दर ही पहनो बोलियां लगने लगी, बाहर के कीमती कपड़ों का देश ने तिरस्कार ऐसा किया कि जगह जगह ऐसे कपड़ों की होलियां जलने लगी। अपने शायर मीर साहब को गांधी जी के फैसले का पता चला तो बोले।

0: एक दिन हम फतेहमंद होंगे, जरूर एक दिन हम फतेहमंद होंगे।
1: बापू ने कहा था, ब्राह्मण लोग गैर ब्राह्मण के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ करते हैं। हमने दलित कौमों को पामाल किया और बिलाखिर खुद पामाल हो गए हैं। ये हमारी नफरतों का समर है कि हमारे ही भाई हमारी वजह से आज बदहाल हो गए हैं।
2: हम लोग बापू की जिंदगी के सफे यूं ही पलटते जाएंगे, हम लोग बापू की जिंदगी के सफे यूं ही पलटते जाएंगे और हमारी बातों से सागर मय उल्फत के छलकते जाएंगे। लेकिन आइए अब कुछ बातें ये भी हो जाएं कि अपने बापू कैसी प्यारी प्यारी बातें करते थे और सारी दुनिया के लोग कैसे उन बातों पर सर धुनते थे। भाई हुआ यूं, बहुत बड़े एक सेठ जो करोड़ों कमाते थे बापू से मिलने अक्सर खींचे चले आते थे। उन्हें बापू से एक अनोखा मोह था लेकिन दिल में रुपए पैसे का भी बेहद लोभ था। एक दिन जज्बात की शिद्दत से आंसू सेठ के बहने लगे, रोक ना पाए दिल की बात, बापू से यूं कहने लगे, ये बताइए आपको देश की सेवा के लिए मेरी जरूरत है या मेरी दौलत की जरूरत है। बापू ने कहा, देश को बस तुम्हारी जरूरत है। सेठ बोले, जब आप मुझको देश की सेवा में लेकर आएंगे तो कौन कौन से अहम काम आप मुझसे करवाएंगे। बापू ने करोड़पति उस सेठ से कहा, भैया जी हम तो तुमसे बस चरखा कतवाएंगे।
3: जो लोग हको सदाकत की जद्दोजहद में मसरूफ रहा करते हैं वो लोग अपना वक्त दौलत जमा करने में खराब नहीं किया करते हैं। तो अपने बापू से किसी ने एक दिन पूछा, ये बताइए कि ये जो अपनी है दुनिया, ये समय के साथ क्या बेहतर होती जा रही है या ये जगह पहले से और बदतर होती जा रही है। बापू ने कहा, बेटा हम तुम्हें दिल की बात बताते हैं, मेरा विश्वास है कि इस दुनिया को परम परमेश्वर चलाते हैं, इसलिए ये दुनिया जरूर बेहतरी की तरफ जा रही होगी और इस दुनिया में खराबी कम होती जा रही होगी। फिर कुछ सोच कर कहने लगे, लेकिन देखने से ऐसा लगता तो नहीं है।
1: एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी इंग्लैंड के सफर पर थे तो उनको वहां के बादशाह से भी मिलने जाना था। तो राजा और रंग की इस होने वाली मुलाकात पर वहां की पब्लिक में बड़ा हंगामा था। इंग्लैंड के बादशाह का लिबास बड़ा आलीशान हुआ करता था लेकिन उस कड़ाके की सर्दी में बस एक धोती और कंबल बापू का मुकम्मल परिधान हुआ करता था। लोग बादशाह के पास जब जाते थे तो सज संवर कर दरबार में अपनी छब दिखलाते थे। तो एक अखबार के रिपोर्टर बापू के पास घबराए हुए आए और सवाल के तौर पर एक दूर की कौड़ी लाए, पूछने लगे, शाही मुलाकात के दिन मिस्टर गांधी आपने कौन से कपड़े पहने होंगे। बापू ने कहा, हम यही अपनी पुरानी धोती पहने होंगे। रिपोर्टर साहब ये जवाब सुनकर बौरा गए और सोचते सोचते काफी चकरा गए, कहने लगे, ये कपड़े जरूरत से कम नहीं लगते आपको। नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि भैया आपके बादशाह ने हम दोनों की जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने होंगे।
4: इंग्लैंड के उसी सफर की एक और बात आप सबको रहेगी बरसों याद। वहाँ के वजीर आजम थे उस दौर में रामसे मैकडोनाल्ड। बापू जहाँ ठहरे थे वहाँ रामसे उनसे मिलने आए और उस इलाके के पोस्टमैन जो लेटर लेकर आते थे महात्मा

0: महात्मा गांधी का नाम सुनकर वो भी उनसे मिलने चले आए। गांधी जी के अंग्रेज मेजबान ने उनसे पूछा, बापू आप पहले किससे मिलेंगे, पोस्टमैन से या पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे? बापू ने कहा, इसमें सोचना कैसा, हम पहले मैन ऑफ लेटर्स से मिलेंगे।
1: आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कितने अजीम इंसान थे, इतने अजीम कि उनका ख्याल आते ही हमारा ज़हनो दिल एहतरामन उनकी याद के आगे झुकता चला जाता है और हमको उनकी जिंदगी का एक एक वो वाक्य याद आता है। और खासतौर से एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे अजीम तरीन साइंसदान का वो कॉल हमारी नजरों के सामने आ जाता है जब उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें कभी इस बात पर हैरत का इजहार करेंगी कि क्या कभी इस कुर्रे अर्ज पर यानी इस प्लैनेट अर्थ पर कोई गोश्त पोस्त का गांधी जैसा इंसान सचमुच गुजरा था।
2: फिर एक दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा का ऐलान कर दिया, लेकिन इस यात्रा को लेकर दिलों में शक के बादल छाए हुए थे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े लीडर भी घबराए हुए थे। नमक बनाने का गांधी जी का मंसूबा बहुत सादा था, लेकिन यह कदम हैरत अंगेज भी ज्यादा था। नमक मुल्क के लिए बड़ी अलामत था, क्योंकि नमक इंसान के खाने का बुनियादी हिस्सा था। लिहाजा नमक टैक्स के मसले को उठाकर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत की बेरहमी को उजागर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि हुकूमत बेरहम है, हुकूमत जुल्म की अलामत है।
0: इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता था? हर शख्स नमक आसानी से बना सकता था, लेकिन अंग्रेज कानून कहता था कि नमक कोई हिंदुस्तानी नहीं बना सकता था। इस मसले ने जात, रियासत, नस्ल और जबान की तमाम हदों को तोड़कर आवाम को यकजा कर दिया था। अहिंसा और सिविल नाफरमानी तहरीक की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत दांडी यात्रा थी, जो गांधी जी की बड़ी कामरानियों में आती है।
2: 12 मार्च को अहमदाबाद से गांधी जी के पीछे पीछे लोग 240 मील का लंबा सफर तय करके साहिले समंदर पर वाके दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी ने समंदर किनारे पहुंचकर नमक भरी रेत उठाकर नमक कानून को तोड़ा, तो पूरे मुल्क में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया।
3: महात्मा गांधी की दिन रात की मेहनत से पूरे मुल्क में जब आजादी के नारे हर तरफ लगने लगे, तो अंग्रेज लोग अपने दिलों की डूबती धड़कनें गिनते हुए हुकूमत के बचे कुछे दिन उंगलियों पर गिनने लगे। हिंदुस्तानियों के जोश से जाहिर हो चुका था कि आजादी को अब रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की पकड़ मुल्क पर कमजोर होती गई, हमारे अपने झगड़े बढ़ने लगे और तफरीक भी बढ़ती गई।
2: भारत एक है और एक रहेगा, ये हम सब का सपना था, लेकिन अफसोस कि मुस्लिम लीग का कुछ और ही कहना था। बापू ने कहा था, अगर कांग्रेस तकसीम को तस्लीम कर लेगी तो वो सिर्फ मेरी लाश को रौंद कर करेगी, लेकिन बापू के सपने रौंद कर मुल्क की तकसीम कर दी गई। और फिर जब आजादी की सुबह आई तो वो आंसुओं में थी डूबी हुई, और फिर कत्ल खून की ऐसी होली खेली गई जिसको दुनिया कभी भी न भूल सकेगी। फैज ने लिखा, ये

देश दंगों की आग में झुलस रहा था। बापू का एकता और भाईचारे का सपना मजरूह हो चुका था, लेकिन

0: लाख के भारी बोझ के बावजूद देश को तो आगे बढ़ना था और आगे बढ़ते रहना था। बहुत मुश्किल वो घड़ी थी, ऐसी विपदा पहले कभी ना पड़ी थी। बापू ने टूटे दिलों को जोड़ने का काम शुरू किया, कभी गमजदों की दिलजोई की, कभी जख्मों पर फाया रखा। हिंसा रोकने के लिए बापू ने आमरण व्रत रखा। हिंसा रुक गई, जनता ने राष्ट्रपिता का मान रखा।
1: जब धीरे धीरे हालात मामूल पर आने लगे तो अंदर ही अंदर वो सब कुछ होने लगा जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। और फिर एक दिन तारीख का वो स्याह बदकिस्मत दौर भी आ ही गया, जब अहिंसा के उस दूत पर ही होने लगी मंसूबा बंद हिंसा। एक दिन बापू की सभा पर मदनलाल नाम के एक आतंकी ने एक बम फेंका। उस बम ने वहां की दीवार को उड़ा दिया, लेकिन बापू को फिर भी ये बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ ही दिन बाद कोई आतंकी उनकी जान भी ले लेगा।
2: और फिर वही हुआ जो इस बदकिस्मत मुल्क की किस्मत में था लिखा। बम धमाके के ठीक 10 दिन के बाद ही नाथूराम गोडसे नाम का एक कठोर आतंकी बापू की सभा में पिस्तौल लेकर आ गया और उस निर्दयी पागल जुनूनी ने अमन के इस दूत पर एक एक करके 3 फायर कर दिए। बापू ने शांत भाव से आंख बंद करके राम नाम जपा और बेजान नीचे गिर गए।
3: जिस इंसान को बरतानवी हुकूमत की सारी ताकत कभी न झुका सकी थी, जिसको बड़ी से बड़ी सियासी कुव्वत कभी न हरा सकी थी, उसके अपने लोगों ने उसे अपनी कायरता से हरा दिया था और सीनों में छुपी नफरत की धधकती आग ने अमन की उस शम्मा को बुझा दिया था।
0: 30 जनवरी की वो रात बहुत तारीख, बहुत गमसदा रात थी। इब्ने सफी जो अपने नॉवलों के लिए जाने जाते थे, महात्मा गांधी की शहादत पर अपने अंदर के शायर को नहीं रोक सके। उन्होंने लिखा, लम्हे उदास चिरागों पे सोग तारी है, ये रात आज की इंसानियत पे भारी है।
1: नजीर बनारसी ने अपने कलम को आंसुओं में डुबोकर वो लिखा जो हमारे दिल में था।

0: सऊदी अरब के तबूक शहर में इमरजेंसी हालात में उतारा गया था। इस दौरान वजारत खारजा ने कहा कि वो फ्लाई दुबई परवाज के बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की सेहत पर करीबी नजर रखे हुए है। वजारत ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब में तबूक के एक अस्पताल में इब्तदाई इलाज मालिजे के बाद कैप्टन स्मिथ को तिब्बी देखभाल और उनकी सेहतयाबी की खातिर अबूजाबी ले जाया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय सफीर ने अस्पताल में कैप्टन स्मिथ से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इससे कबल सफीर मौसूफ ने उनके अराकीन खानदान से भी मुलाकात की थी और उनकी सेहतयाबी और खैर आफियत के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। अबूजाबी में भारतीय सफारत खाना और दुबई में कौंसल खाना इस मामले में मुकामी हुक्काम के साथ करीबी राब्ता किए हुए है। वजारत खारजा ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की दिलेरी और बहादुरी की तारीफ की है और इस बात को तस्लीम किया है कि कैप्टन स्मिथ ने जिस अंदाज से शुजात का मुजाहरा किया दुनिया भर में इसकी सताइश की जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बैन अल-अक़वामी तिजारत के कनाडा के वजीर मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा तवानाई अहम मादनियात और एयरोस्पेस के शोबों में वसीतर इश्तराक के जरिए भारत की माशी नमों में तावुन करना चाहता है। मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के तनाजुर में इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिद्धू ने कहा कि भारत की तवानाई की बढ़ती जरूरतें और सप्लाई चेन को मुतनव्वे करने की कोशिशें दोनों मुल्कों के लिए खातिरख्वाह मौकों की पेशकश करती हैं। जनाब सिद्धू ने कहा कि भारत और कनाडा का मकसद अगले 5 साल के दौरान दो तरफा तिजारत को $30 अरब से बढ़ाकर $70 अरब तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि जामे इकतसादी शराकतदारी माहदे के 5वें दौर के मुजाकरात पीर से ओटावा में शुरू होंगे, जहां दोनों फरीक आइंदा महीनों में बातचीत मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जनाब सिद्धू ने LNG और अहम मादनियात खुसूसन इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरीज के बड़े सप्लायर के तौर पर कनाडा की अहलियत को नुमाया किया। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने खुराक की यकीनी फराहमी के तहत भारत के इकदाम को उजागर किया और जवाबित पर मबनी कसीर जहती तजारती निज़ाम के बारे में भारत के अज़्म की तौसीख की। अमरीका के विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के दौरान जनाब गोयल ने कहा कि सभी के लिए खुराक की यकीनी फराहमी और किसानों के लिए ज्यादा इम्कान पैदा करने को भारत की पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल है। अमरीका ने ईरान की वजारत दिफा और मुसल्ला अफवाज के लॉजिस्टिक्स के लिए हथियार और फौजी साजो सामान हासिल करने में मुबैना मदद करने की बिना पर 10 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। एक रिपोर्ट में मीडिया लाइन ने कहा कि इनमें एक पाकिस्तानी ताजिर और उससे वाबस्ता 3 कंपनियां शामिल हैं। बताया गया है कि यह ताजिर दिफाई सामान से मुतालिक पाकिस्तान की एक कंपनी कैवेलियर ग्रुप का चेयरमैन है। इसके अलावा सऊदी अरब के हुकाम के साथ तालमेल कायम करके सऊदी अरब में कायम कैवेलियर डायनामिक्स फॉर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ भी अमरीका ने कार्रवाई की है। अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीका उन अफराद और इदारों को निशाना बनाता रहेगा जो ईरान को मदद फराहम करते हैं। ईरान सरकार के इकतसादी नेटवर्क को नाकाम बनाने की खातिर अमरीका ने अगस्त के महीने में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नाम की मुहिम शुरू की थी। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट को फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल से बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए छोड़ा गया है। इसमें अमले के 13 अहलकार सवार हैं। खलाबाजों में नासा के 2, रूस का 1 और कनाडा का 1 खलाबाज शामिल है। जापान के आइची नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत ने खवातीन के मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। भारत की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में चीन की बाउजी को 5-0 के मुत्तफिका फैसले से शिकस्त दी। एशियाई खेलों में खवातीन मुक्केबाजी में यह भारत का सोने का दूसरा तमगा है। इससे पहले साल 2014 में मैरीकॉम ने सोने का तमगा जीता था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई का बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल निकालने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे नजरियात हैं। सऊदी अरब ने ओमान के उस मुआविन पायलट को मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले कर दिया है जिसने फ्लाई दुबई के तेलबीब जाने वाले हवाई जहाज को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। दिलेर भारतीय पायलट स्मिथ माचर को इलाज के लिए अबूजाबी ले जाया गया है। भारत उनकी सेहत पर करीबी निगाह रखे हुए है। कनाडा ने तवानाई अहम मादनियात और एयरोस्पेस के शोबों में भारत के साथ और ज्यादा इकतसादी इश्तराक की ख्वाहिश जाहिर की है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने बॉक्सिंग में खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DDF रेडियो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस।

पहले सुर मेरा तुम्हारा इस प्रोग्राम में सुनिए चंद फिल्मी दुकानें। आगाज उपकार फिल्म के नगमे से, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में।

जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, और लीजिए अब सुनिए इन्हीं दो आवाजों में कारवां फिल्म का ये नगमा।

0: मेरे सनम फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार थे मजरूह सुल्तानपुरी, मौसीकी ओपी नैयर की थी। मैं सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से। सामिन ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। मौजू है लाल बहादुर शास्त्री।
1: 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहलत के बाद मुल्क न सिर्फ एक मुदब्बिर सियासतदान और बेमिसल रहबर से महरूम हो गया था, बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत और सियासत में जो खला पैदा हुआ था उसे पूर्ण करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिसमें हिंद जैसे तरक्की पजीर मुल्क की बागडोर संभालने की सलाहियत बदरजयातम मौजूद हो। इस बात को मुल्क कौम की खुशकिस्मती ही करार दिया जा सकता है कि नेहरू के बाद जिस शख्सियत ने हिंदुस्तानी वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियों का बार अपने शानों पर लिया उसमें महात्मा गांधी की नर्म गुफ्तारी और अज़्म मोहकम के साथ साथ नेहरू जैसा सियासी तदब्बुर और इंतजामी सलाहियतें भी मौजूद थीं। इस शख्सियत का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जिस दौर में लाल बहादुर शास्त्री ने वजारत उज़्मा के ओहदे को संभाला उस वक्त मुल्क और मुल्की सियासत एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे थे। अभी सब्ज इनकलाब के नतायज बरामद होना शुरू नहीं हुए थे और अपनी गजाई जरूरियात के लिए हिंद को दरामदात पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। इन हालात में मुल्क को एक मजबूत मुनज्जम मनसूबाबंदी और इंतजामी ढांचे की जरूरत थी। आसपास के हालात के सबब दिफाई तौर पर मजबूत होना भी मुल्क के लिए लाजमी था। इन हालात में ये लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्होंने मुल्क को जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया, जो कि महज एक जज्बाती नारा नहीं था बल्कि आगे चलकर मुल्क की तरक्की की राह में निशान मंजिल साबित हुआ और हिंद गजा की खुद किफालत हासिल करने के साथ गैर मुल्की हमलों का मुनासिब जवाब देने में भी कामयाब रहा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के शहर बनारस से कुछ फासले पे हुआ था। अभी 2 साल के ही थे कि वालिद का शफीक साया सर से उठ गया और परवेश नानिहाल में होने लगी। तालीम का आगाज उन्होंने मौलवी बोधन से किया। उर्दू जबान से उन्हें गहरी दिलचस्पी थी और 8वें दर्जे तक उन्होंने उर्दू को ही जरिए तालीम बनाए रखा। उनके नानिहाल माली तौर पर बहुत ज्यादा आसुदहाल नहीं थी जिसके सबब उनका बचपन कदरी परेशानियों में गुजरा, लेकिन हर मरहले पर वो एक जहीन तालिब इल्म साबित हुए। उनकी किरदार साजी में उनके उस्ताद पंडित निष्कामेश्वर मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है, जो लाल बहादुर की जहानत से मुतासिर होने के सबब हर तरह से उनकी कद्र किया करते थे और उनकी पोशीदा सलाहियतों को जिला बख्शने की गरज से उन्हें राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, तिलक और महात्मा गांधी के नजरियात के बारे में बताया करते थे। लाल बहादुर अभी 10वीं जमात में थी कि मुल्क में अदम ताबून की तहरीक शुरू हो गई और वो भी तालीम अधूरी छोड़ जंग आजादी में कूद पड़े। जल्द ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 2.5 बरस की कैद के बाद जब वो वापस आए तो एक बार फिर सरगर्मी सियासत में हिस्सा लेने चाहते थे, लेकिन दोस्तों के समझाने पर पहले तालीम मुकम्मल कर लेने पर रजामंद हो गए। 1925 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की सनद हासिल की जो बाद में उनके नाम का हिस्सा बनकर रह गई। उसी साल उनकी मुलाकात साइलेंस ऑफ पीपल सोसाइटी के बानी लाला लाजपत राय से हुई। इस सोसाइटी के अगराज व मकासिद ने लाल बहादुर को बेहद मुतासिर किया और वो इस तंजीम के सरगर्म रुकन बन गए और इस तरह अमली सियासी जिंदगी का आगाज किया। यहां से आजाद हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम के ओहदे तक उनकी रसाई की दास्तान बेहद तवील है जिसमें उनकी हर तरह की कुर्बानी

0: जही जही सुनहरी अल्फाज में दर्ज हैं। मुल्क की आजादी के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की सियासी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई और खिदमत कौमी के जज्बाओं में उसी तरह बरकरार रहा। जब वो रेलवे वजीर थे तो नवंबर 1956 में हुए एक रेल हादसे की अखलाकी जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए वजारत से इस्तीफा दे दिया। उनका यह जरूरतमंदाना इकदाम और आला अखलाकी फैसला एक मिसाल के तौर अवाम और सियासतदानों के जहन में अभी तक रोशन है। आजाद हिंदुस्तान के दूसरे आम इंतखाबात में लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा की नशिस्त जीती और वजीर आजम बनाए जाने से कबल मुख्तलिफ वजारतों से वाबस्ता रहे। पंडित नेहरू के गुजर जाने के बाद कांग्रेस पार्लियामानी कमेटी ने उन्हें मुकम्मल इतफाक राय से अपना लीडर मुंतखब किया। शास्त्री जी की गुनागुन सलाहियतों की आजमाइश का मौका सितंबर 1965 में बेरूनी हमले की सूरत में सामने आया, जिससे बड़ी कामयाबी से गुजरे। जंग के बाद सुलह के मामले में भी उन्होंने सच्चे गांधीवादी होने का सबूत दिया और 3 जनवरी 1966 को ताशकंद मुआहदे पर दस्तखत के लिए रूस पहुंचे। 4 जनवरी को ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, अमन हिंद और पाकिस्तान के लिए तो जरूरी है, लेकिन साथ ही ये पूरी दुनिया के लिए भी उतनी ही अहमियत रखता है। ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस है, सारी दुनिया की निगाहें हम पर लगी हैं। आइए हम अपने कौल अमल से साबित कर दें कि हम अपने मसाइल को आलमी सियाक व सबाक में देखने की सलाहियत रखते हैं। ताशकंद मुआहदा लाल बहादुर शास्त्री का आखिरी तारीख साज कारनामा साबित हुआ और 11 जनवरी को ताशकंद में ही मौत के बेरहम हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। ताहम ये बात एतमाद के साथ कही जा सकती है कि लाल बहादुर शास्त्री अपने आखिरी दम तक एक सच्चे गांधीवादी, मुहिब्बे वतन और अमन के अलमबरदार साबित हुए।
1: लाल बहादुर शास्त्री, इस मौजू के हवाले से भी आपने तारीख साज प्रोग्राम सुना। तहरीर जनाब सलीम परवेज की थी, रावी थे मुजीब सिद्दीकी। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशियात और प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगली पेशकश मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का दो गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश का गाया हुआ, मौसीकी एसडी बर्मन की।

तीसरी मंजिल फिल्म का ये तो गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार थे मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकी थी आर डी बर्मन की। इससे पहले आपने इन्हीं दो आवाजों में फिर वही दिल लाया हूं फिल्म का नगमा सुना था और ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। फिल्म है जख्मी, नगमा निगार गौहर कानपुरी, मौसीकी बप्पी लहरी की।

तो इधर हमने गाना चलाया और उधर हमारे इतने जानकार दोस्तों की मेल्स की बाढ़ आ गई। मतलब इस बाढ़ की तो खैर हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है, अब लोग इतने प्यार से, इतने अपनेपन से और इतनी बाखुशी हमें अपने साथ अपनी बातें साझा करते हैं ना कि सच में कार्यक्रम करने का आनंद आप लोग दो गुना कर देते हैं। तो बस आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं फिल्म कालिया की। जी हाँ, जिसमें है अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में, और वैसे एंग्री यंग मैन बोलने से तो आप समझ ही गए थे ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। साथ में कौन थी? जी हाँ, परवीन बाबी, आशा पारेख, कादर खान, प्राण, अमजद खान, की एन सिंह और जगदीप, है ना। और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने, और गीत किसने लिखे थे? जी हाँ, मजनू सुल्तानपुरी ने। तो ये ना जो फिल्म है, ये फिल्म एक गुस्से वाले नौजवान युग की क्लासिक फिल्म थी, है ना। ये फिल्म अपने क्लासिक जोशीले गीत, हमारा जो पहला गीत था, उसके लिए बहुत ज्यादा याद की जाती है। मतलब ये गाना, ये म्यूजिक चला और हमको पता है कि हम कालिया की बात कर रहे हैं। और अच्छा, कालिया के साथ में आपको याद है बैकग्राउंड में कालिया कालिया कालिया ऐसे लगातार चलता था जैसे ही अमिताभ बच्चन बाहर आते थे तो। और ये ना आज भी हर जगह, हर जैसे कोई भी पार्टी हो जहाँ पे डांसिंग नंबर कोई चाहिए हो तो ये जहाँ तेरी ये नजर है जरूर बजता है। और ना इसे उस दशक के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से ना एक माना जाता था। खैर, ये तो हुई हमारी बातें इस बारे में, कालिया फिल्म के बारे में। अब मैं आपकी जरा मेल्स आपके बारे में बता दूं कि कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। देखिए, ये हमारे साथ है हीरामणि वर्मा जी, दत्तरेंगी भाटापारा से लिख रहे हैं एक ही फिल्म में। आज हम कालिया से जुड़ी बातें करेंगे, बिल्कुल उसी की बातें करेंगे। फिर है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, उन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी, पहला गीत वो सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये है हरजिंदर छिंदा जी हैं, गांव मथाना पंजाब से, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता के साथ। ये कह रहे खुश रहो, खुशियां बांटो, बिल्कुल। फिर

कपिल सिपा, ईशान सिपा और पूजा परिहार। फिर ये है वडिंग खेड़ा, वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी के साथ जुड़े हैं शांतिनगर से और बता रहे हैं कालिया फिल्म में क्या बात है। देखिए अब लोग इतने प्यार से तो हमारी पहेलियां बुझ गए, तो अब मैं आपको इस फिल्म का दूसरा गाना सुनाती हूँ जो मोहम्मद रफी की आवाज में है, और बस आप इस गाने को सुनिए और हम फिर इस फिल्म के बारे में आगे बातें करेंगे।

जी हाँ, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कालिया का आप ये गाना सुन रहे थे। अब अगर हम फिल्म की कहानी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो फिल्म की शुरुआत कल्लू से होती है। कल्लू एक सीधा साधा अल्हड़ और थोड़ा बेफिक्र नौजवान है जो अपने बड़े भाई शामू और भाभी शांति के साथ रहता है। शांति की भूमिका आशा पारेख ने निभाई थी और शामू का किरदार कादर खान ने। कहानी ना तब करवट लेती है जब शामू जिस मिल में काम करता है वहां एक हादसे में उसके दोनों हाथ चले जाते हैं, नौकरी छूट जाती है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। कल्लू अपने भाई के मालिक शाहनी सेठ से मदद मांगता है लेकिन शाहनी सेठ पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। मजबूरी में कल्लू उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और जेल पहुंच जाता है। यहीं से एक मासूम कल्लू के भीतर का कालिया जन्म लेता है। जेल में उसका सामना अपराध की दुनिया से होता है। वहां वह धीरे धीरे बदलता है और जेल से निकलने के बाद शानी सेठ से बदला लेने की ठान लेता है। लेकिन कहानी सिर्फ बदले की नहीं है दोस्तों, आगे चलकर ना शानी सेठ के पुराने अपराध और शालिनी के अतीत की परतें खुलती हैं। शालिनी कौन? जी हाँ, हमारी हीरोइन जो है परवीन बाबी। और यही प्राणी यहाँ पर जो प्राण है वो जेलर की भूमिका में नजर आते हैं, उनका नाम है रघुवीर सिंह। तो यानी जो कालिया फिल्म है एक साधारण आदमी की परिस्थितियों से टूटकर बदल जाने की कहानी है जिसमें परिवार, अन्याय, अपराध, बदला और इंसाफ सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज अब मुझे आप ये बताइएगा कि इस फिल्म में ना एक ऐसी महिला किरदार है जिनका जन्मदिन भी है और उनके ऊपर ना अगला कार्यक्रम हम उन्हीं पर करने वाले हैं, एक ही कलाकार। तो जरा मुझे बताइए मैं किन की बात कर रही हूँ। तब तक आप इस गाने को सुनिए।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म कालिया का आप एक बहुत प्यारा सा गाना सुन रहे थे। और देखिए, हमने पूछा और वहां पर आपके जवाब न आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल आ गए ना आपके जवाब। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा ये तो इन्होंने सिर्फ हमें यहाँ पर जुड़े हैं, बताया है कालिया के बारे में, ये लिख रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सोपान तावड़े, और फिर ये है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटो, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, और शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है, ये हमें भी जानकर अच्छा लगता है। देखिए, सही जवाब किसने दिया कि आज किसका जन्मदिन है, मैंने आपसे पूछा था, जो इस फिल्म में भी है। बिल्कुल, ये देखिए, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी ने हमें बता दिया है कि आज आशा पारेख का जन्मदिन है। और आपको पता है, बहुत अलग बात है, बहुत रोचक सी बात है कि इस फिल्म में अमिताभ के साथ हमें आशा पारेख नजर आती है, और ये इन दोनों की एकमात्र फिल्म है जिसमें ये दोनों साथ नजर आते हैं, लेकिन ये इसमें उनकी ना नायिका है नहीं है, जबकि वो उनके बड़े भाई जो कादर खान है उनकी पत्नी की भूमिका में इस फिल्म में नजर आती है। और इस फिल्म में एक और बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों दोस्तों की। अब वो देखिए, निजी लाइफ में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस फिल्म में वो एक ऐसे किरदार में उनके वो दोस्त नजर आते हैं जिनसे कालिया बाद में बहुत बदला लेता है। जी हाँ, मैं शानी सेठ की बात कर रही हूँ। शानी सेठ का किरदार निभाया था कादर खान ने, सॉरी माफ कीजिएगा, अमजद खान ने, और अमजद खान बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं अमिताभ बच्चन के। तो अब देखिए हमारे साथ कौन है, ये है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, और फिर हमारे साथ है भूषण खेरा जी, फजिलका पंजाब खेड़ा से, इनके साथ इनका पूरा परिवार है जिसमें है विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा और तिवानशी खेड़ा, भागवानी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक समेत खेड़ा परिवार, और माफ कीजिएगा, ये आपने जो फरमाइश की है फरमाइशी फिल्मों का कार्यक्रम नहीं है, माफी चाहूंगी आपसे। तो संदीप मक्कर जी हमारे साथ हैं, भरत मक्कर, कमल शाहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से हैं, बसंत कुमार सिंह हमारे साथ हैं, सिन्हा जी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ इनके साथ है रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और भी इनके परिवार के।

सदस्य हैं। फिर हमारे साथ यहाँ पर हैं, धर्मेंद्र शिपा जी का नाम ले चुकी हूँ मैं, और ये हैं फारूक अली खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी जी का मेल ले चुकी हूँ, और शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है जानकर, बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। फिर यही बात हमारे संग नीतू मल्होत्रा जी का परिवार भी कह रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस फिल्म का एक और गाना मैं आपके साथ साझा करूंगी, उसके पहले आपको बस इतना बता दूं कि ये जो फिल्म है, टीनू आनंद का निर्देशन था, आर डी बर्मन का म्यूजिक था, और जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा खास बनाता है वो है कि कालिया से कल्लू से कालिया बनने की कहानी है, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से इस कहानी को गुथा गया है, और एक बहुत अच्छा संदेश भी देती है ये समाज को। तो हम आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनाते हैं। इस फिल्म में गाने ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे बहुत ज्यादा कहानी के संग न्याय करने वाले गाने थे। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का ये एक और गाना।

दोस्तों आप सुन रहे थे आज एक ही फिल्म्स में फिल्म कालिया के बारे में, और ये सफर आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोपहर, जी हाँ 2:30 बजे, लेकर के कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज बहादुर भारती पायलट कैप्टन समित मछार नाल गलबात कीती। समित ने दुबई तो तेल अवीव जाने वाली उड़ान उत्ते कीते गए हमले नूं नाकाम करके 180 लोगों की जान बचाई थी। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नूं उन्हां दी जन्म वरेगंढ उत्ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका विच फ्रांस, कैनेडा, सऊदी अरब अते दक्षिणी कोरिया के व्यापार मंत्रियों नाल व्यापारक संबंधां नूं मजबूत करने लई दुवल्लियां मीटिंगां कीतियां। कैनेडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि कैनेडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजां अते एरोस्पेस खेतरां विच भारत नाल मिलकर काम करना चाहुंदा है। एशियाई खेडां च मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम वर्ग विच इतिहास रचदियां सोने का तमगा अपने नाम किया। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਛਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ 180 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਮਛਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सुलबुल ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान रखा है और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता।
1: कैप्टन समित मछार से हमला करने वाले मुल्जम सह पायलट नूं अबू धाबी भेज दिता गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एफपीए ने सऊदी गृह मंत्रालय के अधिकारित सूत्रों का हवाला दिंदिया दस्सिया है कि दोवें पायलट डाक्टरी जांच तों बाद अबू धाबी लई रवाना हो गए। अबू धाबी विच भारतीय दूतघर ने कल जानकारी दिती कि कैप्टन मछार नूं संयुक्त अरब अमीरात यूएई लियांदा गया है ते उन्हां दी सेहत विच सुधार हो रहा है। एफपीए मुताबक यूएई दी सुरक्षा टीम दे सहयोग नाल सऊदी अधिकारियों वालों की गई मुढ़ली जांच तों पता लगा है कि एक झगड़ा होया सी जिस दौरान सह पायलट ने कैप्टन उत्ते हमला कर दिता जिसके नतीजे वजो दोवें जख्मी हो गए। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं उन्हां दी 157वीं जयंती उत्ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। इस मौके ते देश भर विच अते विदेशां विच भारतीय मिशनां वल्लों भी कई प्रोग्राम करवाए जा रहे ने। गांधी जयंती दे मौके ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी दे जीवन अते आदर्शां दा दुनिया भर विच सत्कार कीता जांदा है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया दे कई हिस्सों विच जंग अते टकराव दे संदर्भ विच गांधी जी दा शांति ते अहिंसा दा संदेश पहलां नालों किते ज्यादा प्रसंगक हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती मौके नवी दिल्ली विच महात्मा गांधी दी समाधि राजघाट उत्ते फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट कीती। राजघाट उत्ते सर्वधर्म प्रार्थना करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला अते केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जतेंद्र सिंह अते एल मुरुगन ने अज नवी दिल्ली दे संविधान सदन विच महात्मा गांधी अते लाल बहादुर शास्त्री नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। बीजेपी दे प्रधान नितिन नवीन, कांग्रेस प्रधान अते राज्यसभा च विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा च विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी, संसद मैंबर, संसद दे सीनियर अधिकारी अते स्कूली विद्यार्थी वी श्रद्धांजलि भेंट करन लई पहुंचे। देश अज साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नूं उन्हां दी 122वीं जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1904 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨਗਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1921 ਵਿਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहे हैं, मोदी कुर्ता पहन रहे हैं। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरू के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरू के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप 4 के कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर

0: लिए पहुंच जाते हैं, हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
3: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
4: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकादमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दे।
3: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाऊ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूं मैं आपकी रेडियो हमसफर कार्यक्रम। जी हां, एक ही कलाकार। और आज आपके साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो 60 और 70 के दशक की पलाह की खूबसूरत हसीना, जिसने अपने करियर में हर तरह के रोल निभाए। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बनने के साथ सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन की। जरा इस गाने को सुने और फिर मुझे बताएं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। वैसे ये हिंट मैं आपको दे भी चुकी हूँ पिछले कार्यक्रम में, तो बता दूं कि इनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई के सांताक्रूज में हुआ था। तो बस इस गाने को सुनिए और मुझे बताइए मैं किन की बात कर रही हूँ।

फिल्म बहारों के सपने, आवाज लता मंगेशकर की, और हमारी आज की कलाकार जी हां आशा पारेख, बहुत चुलबुली शोख और बेहद खूबसूरत हसीना आशा पारेख जो नृत्य की पारंगत कलाकार है ना। देखिए इस खूबसूरत हसीना जिसने अपना करियर ऐसी जगह से शुरू किया जिसमें उनके पहले हीरो थे कौन, शमी कपूर, और देखिए उस वक्त बहुत छोटी थी लेकिन क्या खूबसूरत लगी हैं वो उस फिल्म में भी। मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ आप मुझे जानते भी हैं और मुझे बताएंगे भी, ये मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आप लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हमारे लिसनर्स हैं, और जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि मैं किन की बात कर रही हूँ तो बस आप लोगों के मेल के जरिए मुझे पता चल गया कि आप लोग जान चुके हैं हम आशा पारेख की आज बात कर रहे हैं, और आप सभी के मेल मैं शुमार करूंगी। लेकिन उसके पहले जरा सा इन महोदया के बारे में आपको बता दो। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री बनने के साथ इन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली, और फिर इसके बाद ना आपको पता है आशा पारेख का नाम उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। उनकी अदाकारी, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस के लोग ना दीवाने थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था दोस्तों जब ना उन्हें एक फिल्म की हीरोइन के तौर पर सिर्फ 11 रुपए साइनिंग अमाउंट मिला था, और कुछ दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें फिल्म से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह स्टार मटेरियल नहीं है। अजीब नहीं लगता सुनकर? देखिए अब हमारी स्टार है आशा पारेख और आज भी एक चमकता सितारा है, तो हम बात कर रहे हैं उनकी सबसे पहली फिल्म की, तो आइए सुनते हैं दिल देखो फिल्म का

फिल्म दिल देखे देखो और आशा भोसले के साथ कौन थे, मोहम्मद रफी। और ये शोख चंचल हसीना आशा पारीख जिनका आज जन्मदिन है उनके ऊपर आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है, एक ही कलाकार। और देखिए हमारे साथ कितने सारे दोस्त जुड़ गए हैं, तो आइए देखते ना कौन है। ये है तुलसी मस्कीन जी, लिख रहे हैं गोवर्धन कॉलोनी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और इन्हें अच्छा लगा ये गाना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं आशा जी हैप्पी बर्थडे टू यू, शुक्रिया। फिर देखिए ये है मेरठ कैंट दिग्दर्शन गौड़, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें। फिर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारिख जी पर केंद्रित कार्यक्रम में आशा जी की फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिला। ये लिख रहे हैं हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से, शुक्रिया। फिर ये है छत्तीसगढ़ पल्हारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और इन्हें भी प्रस्तुति अच्छी लग रही है, धन्यवाद। फिर है ये वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नमस्कार लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार। हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव नधाना। और ये है धर्मेंद्र चीपा जी, शुक्रिया, फिर आपने इतना अच्छा अच्छा लिख दिया है हमारे श्रोताओं के लिए भी, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आप भोपालगढ़ राजस्थान से हैं, आपके साथ है कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार, और धन्यवाद। फिर है तुलसी मस्कीन जी, आपका मेल शुमार हो गया था, धन्यवाद दोबारा करने के लिए। सुदर्शन मुखी जी हैं और आशा पारेख को पहचान गए हैं, इनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी। फिर है ये ताज मोहम्मद जी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहां। और देखिए मैं आपको इतना बताऊं, राजकुमार डूडी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, जिला हिसार से। आशा पारेख जी के ना गाने इतने सारे हैं कि किसको शुमार करूं, किसको छोड़ूं, सच में आज ये बहुत जद्दोजहद का मेरे लिए काम था, लेकिन फिर भी कोशिश करके उनके कुछ ऐसे ऐसे गाने आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें आपको उनका एक अलग ही किरदार नजर आएगा। एक फिल्म आई थी उनकी, उसमें ये बहुत अलग सा उन्होंने किरदार निभाया था, और इसमें ना वो एक जिद्दी लड़की की भूमिका में थी। देखिए इस गाने को आप सुनिए और फिर याद कीजिए स्टेज का वो परफॉर्मेंस जिसमें आशा पारेख डांस कर रही है, और इसमें वो अपना इस फिल्म का जो वो उन्होंने किरदार निभाया था उसमें उनका एक अलग सा ना एक हाथ का एक एक्शन था, तो वो भी उन्होंने किया जिसमें नाक के नीचे से हाथ को ऐसे निकाल के ले जाती है, आपको वो ना नजर आएगा, आपको शायद अगर आपने ये गाना देखा तो याद भी आएगा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

तैयार भैया, एस के बर्मन का म्यूजिक है इस फिल्म में और फिल्म है जिद्दी। और इसमें एक जिद्दी लड़की की बहुत खूबसूरत भूमिका उन्होंने निभाई थी और हमेशा एक डायलॉग बोलती थी, बहुत देखे, याद आया? हाँ। और इसमें जॉय मुखर्जी इनके साथ थे। तो देखिए, अब बहुत सारे गाने हैं इसलिए हर गाने की ना मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी झलक सुनाऊंगी ताकि हम आशा पारेख जी के बहुत सारे गाने यहाँ पर शुमार कर सकें। तो आपको ये भी बता दूं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। ये है संदीप मक्कर और ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, और हमारे साथ ये लोग जुड़े हैं कमाल शाहनी पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। हमारे साथ हैं इसाक मोहम्मद, इनके साथ हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इजहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलुफर फातिमा। और फिर उसके बाद में हमारे साथ हैं सुदर्शन मुखी जी की मैं मेल आपको बता चुकी, अनिता मुखी।

सिमरन मुखिया हमारे साथ जुड़ी हैं, फिर संजय ढींगिया जी हमारे साथ हैं, नमन ढींगिया, अपा ढींगिया, और फिर हमारे साथ हैं आशा पारिक के गाने, इन्हें अच्छा लग रहा है। ये कौन है? मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिर ये है हमारे साथ मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, और इन्हें ये हमारे संग है पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। फिर देखिए अभी हम बात कर रहे हैं आशा पारिक जी की, तो एक ऐसी फिल्म तीसरी मंजिल, फिर शमी कपूर, और शमी कपूर के साथ उन्होंने जो जो फिल्म की है, आपको पता है एक इंटरव्यू में वो बता रही थी कि वो शमी कपूर जी को पापा जी कहकर बुलाती थी, लेकिन उनकी हीरोइन का उन्होंने रोल किया है, और वो उनसे उम्र में दोनों का फासला काफी था उम्र का, लेकिन उन्होंने उनके साथ जो भी फिल्में की बहुत बेहतरीन की। हम यहाँ पर आपको तीसरी मंजिल का एक गाना लेकर आए हैं आपके लिए, जिसको आप सुने और फिर हम दूसरे गाने तक आपको लेके जाएंगे।

जी हाँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना है, फिल्म है तीसरी मंजिल। और आपको बता दूं, आज हमारी जो आज की कलाकार है आशा पारीख, उन्होंने बहुत कम उम्र में मंच पर नृत्य करना शुरू कर दिया था और शायद यही वह मंच था जिसने एक दिन उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि प्रसिद्ध फिल्मकार बीमल रॉय ने उन्हें एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा और उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। इसके बाद न उन्होंने उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म बाप बेटी में रोल दिया। लेकिन आशा पारेख का फिल्मी सफर इससे भी पहले शुरू हो चुका था। 1952 की फिल्म आसमान में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। कुछ और फिल्मों में उन्होंने बाल भूमिकाएं निभाई, लेकिन शुरुआती अनुभव बहुत आसान नहीं थे उनके लिए। एक फिल्म के असफल होने के बाद आशा ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बनाई और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। शायद उस समय उन्हें नहीं मालूम था कि यह विराम बहुत लंबा नहीं होगा। किशोरावस्था में ही उन्होंने दोबारा फिल्मों की ओर रुख किया और फिर आया 1959 का साल और फिल्म दिल देके देखो, उसका गाना हमने आपको सुनाया ही है। और फिर इसके बाद में ना इन्होंने नासिर हुसैन के साथ बहुत काम किया। और देखिए, हम आपको यहाँ पर एक ऐसा गाना आपका उनका सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने काम किया था और फिल्म है कारवां, याद है ना, जितेंद्र जी के साथ। अब इस फिल्म के गाने तो सारे बहुत मशहूर हुए, लेकिन आज मैं आपको एक ना ये वाला गाना जरूर सुनाना चाहूंगी जो आशा भोसले की आवाज में है और इसमें आशा पारेख जी ने बहुत अच्छा ना निभाया है इस गाने को। आप इस गाने को सुनिए, फिर हम बात करते हैं।

बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं और उनकी आत्मकथा द हिट गर्ल जो 2017 में प्रकाशित हुई है इसमें खालिद मोहम्मद के साथ उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आशा पारेख जी ने अपने जीवन में बहुत बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में अकेले संघर्ष भी किया। 1992 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, 2002 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला, 2005 में उन्हें 2006 में और 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईफा से भी मिला और फिर उन्हें 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। और देखिए 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया। तो बस चलते चलते मैं आशा पारेख जी का कि एक गाना आपकी नजर।

हमारे साथ जो दूसरे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप मक्कर जी, संजय ढींगिया जी, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, मुकेश कश्यप जी जिला मुरादाबाद से भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।

जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की एक ही कलाकार में हमारी आज की बर्थडे गर्ल आशा बारिक जी के बारे में। और ये गीत और ये कार्यक्रम आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो इस कार्यक्रम से अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: परसों नहीं नर्सों
1: कहाँ
0: यही यहाँ कोई आता जाता।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे

मैं जमी विगत 71 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन सुमित मछार से बातचीत की। उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के तिजारत से मुतालिक वजीरों की मीटिंग से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हम मनसबों से दो तरफा मीटिंगें की, जिसका मकसद दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना था। मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। भारत के महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि शुमाल मगरबी भारत में जनूब मगरबी मानसून खत्म होने के कभी इम्कानात हैं। और एशियन गेम्स में लवलीना बोरगोहाइन ने खवातीन के मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। अब भारत के पास सोने के 12 तमगों समेत कुल तमगों की तादाद 71 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन सुमित मछार से

बातचीत की, जिन्होंने न सिर्फ ये कि अपने मुआविन पायलट के हमले से खुद को बचाया बल्कि 180 लोगों की जान भी बचा ली। यह वाकया दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में पेश आया। कैप्टन मछार ने इस वाकये की तफसील वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताई और इस बारे में बताया कि किस तरह उन्हें हिम्मत मिली। वजीर आजम ने उनकी दलेरी को सताइश करते हुए उनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में पेश आने वाले वाकये में कैप्टन सुमित मछार पर हमला करने वाले मुआविन पायलट को अबू जबी मुंतकिल किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सऊदी अरब की दाखिली उमूर की वजारत के एक अहदेदार के हवाले से जानकारी दी है कि तिब्बी मंजूरी हासिल करने के बाद दोनों पायलट अबू जबी के लिए रवाना हो गए। अबू जबी में भारतीय सिफारतखाने ने कल जानकारी दी कि कैप्टन मछार को मुत्तहिदा अरब इमारात लाया गया और उनकी हालत बेहतर हो रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज बुध के रोज सुबह 9:45 पर तबूक में वाकई शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतरी। इस परवाज में 174 मुसाफिर और हमले के 8 अरकान सवार थे। इन तमाम अफराद को जरूरी लॉजिस्टिकल और तिब्बी मदद फराहम की गई। शाम 5:40 पर मुसाफिरों ने फ्लाई दुबई के एक दूसरे तैयारे में सफर किया जबकि जहाज का अमला एक दूसरी परवाज से दुबई लौट गया। जुमेरात के रोज दोनों पायलट यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के हमरा सऊदी अरब से अबू जबी के लिए रवाना हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के तालमेल से सऊदी हुक्काम की तरफ से की गई इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जहाज के मुआविन पायलट और कैप्टन के दरमियान झगड़ा हुआ जिसके सबब दोनों अफराद जख्मी हो गए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के मौके पर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वज़रा के साथ दो तरफा मीटिंग्स की। इन मीटिंगों में शामिल मुल्कों ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की। फ्रांस के गैर मुल्की तिजारत और इक्तिसादी उमूर के वजीर के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने, भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, यूपीआई के इंजमाम और मुश्तरका इख्तराई इकदामात समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन को मजीद बढ़ाने के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने कनाडा के बैन अल-अक़वामी तिजारत से मुतालिक वजीर महिंदर सिद्धू के साथ एक मीटिंग की जिसमें भारत कनाडा जामे इक्तिसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे सीईपीए पर जारी मुजाकरात का जायजा लिया। इस मुआहदे का आगाज मार्च के महीने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने किया था जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा तिजारत को साल 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। सऊदी अरब के अपने हमबनसब माजिद बिन अब्दुल्ला के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने भारत और खलीज तआवुन काउंसिल जीसीसी के दरमियान आजादाना तिजारती मुआहदे पर मुजाकरात और दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात का जायजा लिया। जनाब गोयल ने जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत पार्क जंग संग के साथ भी मीटिंग की जिसमें भारत कोरिया जामे इक्तिसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे आईकेसीपीए की मुजवजा पेशरफ्त, मुतवाजन तिजारती तरक्की और भारत की जरई फार्मास्यूटिकल और मैरीन प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केट रसाई पर बातचीत हुई। आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बेरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। आज ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर नितिन नवीन, कांग्रेस सदर और राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी, अरकान पार्लियामेंट के सीनियर

0: कौन थे पहले?
1: शिवाजी मिश्र।
0: शिवाजी मिश्र,
1: हाँ, कथक लोगों में मिश्र कहे जाते हैं।
0: जी हाँ
1: जी हाँ।
0: तो आपकी तालीम ख्याल से शुरू हुई या ठोड़ी से ही शुरू हुई?
1: पहले तो सरगम का भराव दिया गया गले में, सरगम का भराव।
0: अच्छा।
1: उसके बाद टप्पा, उसके बाद टप्पा उप्पा खाल ठुमरी
0: दादरा कजरी वगैरह
1: यही सब। जी।
0: तो आपको रकबत ख्याल से थी या शुरू से ही ठुमरी से ही थी?
1: ख्याल से भी रही और ठुमरी से भी, इन सबों से जो जरा सा अच्छा मालूम है वही शुरू कर दें।
0: तो आपकी जब तालीम शुरू हुई तो शुरू में तो कुछ पलटे वल्टे बताए होंगे उस्ताद साहब ने?
1: जी हाँ, जैसे सिया जी ने
0: जरा बताइएगा पलटा।

0: ऐसा
1: ये
0: yes, हाँ
1: इस तरह से
0: जी हाँ,
1: इसको आकार में कहती हूँ, आकार में कहती हूँ।
0: इस तरह का
1: वाह, यानी कि आवाज को ठहराने के लिए, उसमें ठहराव पैदा करने के लिए वो ज़ाहिर है पहले तो पलटे से ही शुरू होता
0: जी
1: है। तो उसके बाद फिर उन्होंने
0: उसके बाद
1: ख्याल वगैरह की
0: ख्याल ठुमरी टप्पा,
1: तो ख्याल कोई एक आपको याद होगा,

0: होते, मगर उस वक्त में डेढ़ ही दो घंटा गाने का मौका मिलता था।
1: तो आपकी तालीम सिर्फ शिवाजी मिस्र से हुई और किसी से नहीं?
0: नहीं, और भी
1: और कौन
0: वो अपने शामिल उस वक्त मौजदीन खास साहब कलकत्ते से,
1: जी हाँ, के बहुत मशहूर बड़े अच्छे गाने वाले,
0: बहुत ऐसे गाने वालों में थे
1: जी
0: कि वो जिस वक्त शुरू करें गाने लोगों से हाय मौजदीन हाय मौजदीन, रटते ही उनके पास लोग दौड़ते चले आवे।
1: यही हमने सुन रखा
0: जी हाँ,
1: बहुत अच्छे गाने,
0: बहुत अच्छे। तो उसमें तो जो लोग भी सुने बस वो पागल से दौड़े आते थे। उस वक्त में हमारे उस्ताद सिया जी उनको ले आए हमारे घर पर
1: जी,
0: अब तब से उनसे भी गाना शुरू हो गया। इत्तेफाक के पहले इंतकाल किया है सिया जी ने,
1: सिया जी का इंतकाल
0: जी हाँ पहले हुआ है
1: जी।
0: उसके बाद मौजदीन खास साहब से गाते, कुछ दिनों के बाद खास साहब भी इंतकाल कर गए।
1: मौजूदीन खास साहब भी
0: जी हाँ,
1: उनका भी इंतकाल हो गया,
0: वो भी इंतकाल कर गए।
1: उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
0: 18 या 19 की थी, 18 या 19 की।
1: आपकी मुसलसल तालीम मौजूदीन खान साहब से कितने बरस हुई?
0: 5-6 बरस हुए।
1: 5-6 बरस
0: जी। और बाद के जब वो इंतकाल कर गए तो एक मिठाई लाल जी भी इनकारिये थे
1: जी हाँ।
0: वो महाराज बनारस में नौकर थे
1: जी,
0: तो उनसे मैंने शुरू किया।
1: उन्होंने क्या बताया आपको?
0: ख्याल और ख्याल टप्पा,
1: टप्पा और ख्याल
0: जी।
1: तो पहले आप हमें कुछ मौजूदगी खास साहब की कोई चीज याद हो तो वो सुना दीजिए।
0: ये जो
1: ठुमरी वगैरह
0: वो पहले जो मैंने शुरू किया है वो खास साहब की है
1: जी।
0: दोनों चीजें टोड़ी की मौजूदगी खास साहब की है
1: वो। अच्छा, टोड़ी का ख्याल
0: जी हाँ, दोनों
1: जी
0: वो छोटी और बड़ी दो।
1: जरा एक बोल कहिए वो छोटा।

0: वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कह रहे हैं, बड़ी इसकी खूबसूरत बंदिश है। ये आपको मौजूद रूप हसाब ने याद करा
1: जी।
0: अच्छा तो ठुमरी ठुमरी का एक आध बोल हमें जरा सुनाइएगा।

वाह वाह वाकई है, तो पुराना नक्शा आपने ऐसा दिखाया है कि तबीयत पे बहुत ही असर हुआ इसका, कितनी कितनी मुश्किलात आप इसमें फिरी हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। आपको वाकई इस वक्त मालूम होता है कि कैसी तालीम हुई होगी उस वक्त और कितनी मुसलसल हुई होगी और किस कायदे से हुई होगी कि जिसका आज इस उम्र में भी आप इतना अच्छा नक्शा पेश कर सकती हैं उसका। अच्छा, तो आपको तकलीफ तो होगी लेकिन हमारी तबीयत बहुत चाहती है कि आप एक आध दादरा भी सुनाएं।

0: वाह, बहुत ही पुरानी चीज आज तो सुनाई आपने। वाह, खूबसूरत बंदिश है इसकी। वाह, ये आप, आपने किस किन से हासिल की? कौन साहब थे वो? मौजुद्दीन खान साहब की चीज है या सियाजी की?
1: सियाजी की
0: है ये भी। वाह, आपके जमाने में उधर में कौन अच्छा गाने वाली थी? ये ठुमरी दादरा वगैरह आपने तो बहुत सुनी
1: चीजें हैं, वो सब चीजें गा सकती थी, ख्याल भी, ठुमरी भी, दादरा भी, बड़ी हुसना बाई,
0: बड़ी हुसना बाई
1: और विद्याधरी बाई।
0: हाँ, विद्याधरी बाई का भी बहुत नाम सुना है। वो क्या गाती थी? ख्याल गाती थी या
1: ख्याल, टप्पा, गजल, ठुमरी, सारी चीजें वो भी गाती थी। हुसना भाई भी ज्यादा गाती थी
0: जी।
1: और ये नाचना, भाव बताना, हद से ज्यादा इनका मशहूर था सब कुछ
0: जी।
1: जी, उन दिनों में ये लुक थी
0: जी। आपको भी नाच याद है?
1: जी, नाच का नहीं,
0: नाच सिर्फ गाने का ही आपने रियाज किया
1: जी।
0: तो टप्पा भी आपने, आपको गाने से तो जाहिर होता है कि टप्पे की आपको बहुत तालीम हुई है, क्योंकि खटका
1: टप्पा भी
0: मुझे याद है
1: जी। टप्पा भी मुझे याद है।
0: एक आज जरा बंदिश टप्पे की भी सुनाइए। अच्छा। तो

0: वाह क्या कहना, मैम आपको बहुत तकलीफ दी मैंने, इस बुढ़ापे में भी आप इतना कह लेती हैं बड़ी बात है ये, वरना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन आपका पहला रियाज इतना है कि उसने एक आप कजरी पूर्वी कजरी और पूर्वी गीत वगैरह तो आप गाती ही होंगी
1: जी,
0: तो एक आध आप पूर्वी गीत सुना दीजिए हमें।

0: वाह वाह, आज आपसे बातचीत करके और आपका गाना सुन के बहुत ही तबीयत खुश हुई, और हम चाहते हैं कि फिर भी कभी आपको जरूर देंगे। बहुत खुश किस्मत है हम लोग के आपका गाना आज सुनने में आया। अच्छा, आदाब पेश करती हूँ।
1: सामीन, अभी आप बड़ी मोतीबाई मारूफ क्लासिकल गुलकारा से की गई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आपसे महवी गुफ्तगू थी माधुरी मट्टो। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों को सुनिए फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, नगमा निगार असद जयपुरी, मौसीकार रविन्द्र जैन।

और अब सुनिए मुकेश की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

ये कविता कृष्णमूर्ति, कृष्ण सारगाथिया और साथी फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। साथ में विनोद राठौर भी हैं, नगमा निगार महबूब, मौसीकार इस्माइल दरबार।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म थी महबूब की मेहंदी। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सावन की घड़ा फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज में नगमा निगार एस एच बिहारी मौसीकार ओपी नैया।

इमारात लाया गया और उनकी हालत बेहतर हो रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज बुध के रोज सुबह 9:45 पर तबूक में वाकई शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतरी। इस परवाज में 174 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इन तमाम अफराद को जरूरी लॉजिस्टिकल और तिब्बी मदद फराहम की गई। शाम 5:40 पर मुसाफिरों ने फ्लाई दुबई के एक दूसरे तैयारे में सफर किया, जबकि जहाज का अमला एक दूसरी परवाज से दुबई लौट गया। जुमेरात के रोज दोनों पायलट यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के हमरा सऊदी अरब से अबूजबी के लिए रवाना हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के तालमेल से सऊदी हुक्काम की तरफ से की गई इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जहाज के मुआविन पायलट और कैप्टन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके सबब दोनों अफराद जख्मी हो गए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आलमी अमन के लिए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अनथक कोशिशों का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जरिए तारीफ करना हर भारतीय के लिए फख्र का लम्हा है। जनाब शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान इस बात को जाहिर करता है कि भारत वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में आलमी अमन के लिए एक भरोसेमंद आवाज के तौर पर उभरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने कहा कि इंतशार, तनाजे और जंग के हालात में वजीर आजम मोदी ने यह पैगाम पहुंचाया है कि तनाजे का हल मैदान जंग से नहीं बल्कि मुजाकरात और सिफारतकारी से निकलता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के मौके पर फ्रांस, कैनेडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वजरा के साथ दो तरफा मीटिंगें की। इन मीटिंगों में शामिल मुल्कों ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की। फ्रांस के गैर मुल्की तिजारत और इक्तिसादी उमूर के वजीर के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने, भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद और एयरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, यूपीआई के इंजमाम और मुश्तरका इख्तराई इकदाम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को मजीद बढ़ाने के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने कैनेडा के बैन अल-अक़वामी तिजारत से मुतालिक वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ एक मीटिंग की, जिसमें भारत कैनेडा जामे इक्तिसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे CEPA पर जारी मुजाकरात का जायजा लिया। इस मुआहदे का आगाज मार्च के महीने में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और कैनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने किया था, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत को साल 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। सऊदी अरब के अपने मनसब माजिद बिन अब्दुल्ला के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने भारत और खलीज तआवुन काउंसिल GCC के दरमियान आजादाना तिजारती मुआहदे पर मुजाकरात और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फूल नजर किए। आज ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल विजय घाट जाकर गुलहाय अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर नितिन नवीन, कांग्रेस सदर और राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी, अरकान पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सीनियर ओहदेदार और स्कूली तलबा ने भी खराज अकीदत पेश किया।
भारत के महकमे मौसमियात ने आज अरुणाचल प्रदेश में

सोच को अपने संकल्प शक्ति नाल सत्याग्रह का सिद्धांत बनाया, अपने आप को लूहे वांगू हालातां दी भाव च तपाया, अपने आप को हूं सिद्धांत ते परखिया, बल सिद्ध थे ताड तिड जिया को सत्याग्रह दी सिख। हे तप दा फल ए थया कि हे सिद्धांत ते लोका को भरोसा आ गया, उन्हां दे हिक सड्डे ते लोक सत्याग्रह दे रस्ते ते चलन को ही व्रत को धारण करण को सच अते अहिंसा नाल आजादी दी जंग विच अपना सभय को झिछावर करण को तैयार थी गए। उन्हां दे सिद्धांत प्रेरित थी के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा ने लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप विच रहवासियां दे अधिकारा वास्ते सामाजिक अते राजनैतिक आंदोलन सत्याग्रह दे सहारे कीते। सत्याग्रह को गांधी जी ने प्राण वांगू धारण किया। सत्याग्रह दा मकसद भी नेक सुच्चा दीन दुखिया दी भलाई दा होना चाहिए। गांधी जी अखेंदे सत्याग्रह सिर्फ चर्चा का मुद्दा कह नहीं अभ्यास का मुद्दा है। गांधी जी दी सत्याग्रह दी नींव विच संस्कार भी हन ते सतत अभ्यास भी। 21 साल दक्षिण अफ्रीका रहवन तो बाद गांधी जी सन 1915 विच भारत वापस आए। भारत दे रहवासियां दी हालत हालाता को देख ईस्ट इंडिया कंपनी दे अफसरां दा भैड़ा सलूक, अन्याय, शोषण, गलत कानूनां ने गांधी जी दी आत्मा को झंझोर दिता। उन्होंने संकल्प किया, मैं अपने आखिरी श्वास तक सच अते अहिंसा दी ताकत नाल भारत दी आजादी वास्ते संघर्ष करे सा। हिन्दुस्तान दी आजादी खातर रणनीति तैयार करने वास्ते गांधी जी हिन्दुस्तान दे पिंड पिंड विच घूम घूम के हालातां को मजबूरियां को अपनी अखी गिठा महसूस किया। उन्होंने आजादी दी जंग दी जो रणनीति बनाई, जो पद्धति बनाई, उनको सत्याग्रह दा नां दिता। हिन्दुस्तान दे हर मजहब, भाषा, प्रांत दे रहवासी दे आत्म बल को जागृत किया। उन्हां दे हथ सच अते अहिंसा दा हथियार दिता। असा सारे जानदे हैं अंग्रेज व्यापार करन हिन्दुस्तान विच आए हन, अपने व्यापार को लाभ को वधान वास्ते ओ हर जायज नाजायज तरीके दा इस्तेमाल करेंदे हन। चंपारण विच नील दी खेती को वधावन खातर गरीब किसाना को लालच दे के कर्ज दे मक्कर जाल विच फसा के उन्हां दी जमीन ते कब्जे कर ता उम्र किसान परिवार को बंधक बना देता। जदन गांधी जी को ही बारे पता चलिया तीन कठिया प्रथा शुरू थी गई। तीन कठिया क्या है? खेती दी हर बीघे जमीन दे त्रीजे हिस्से विच मजबूरन नील दी खेती करना। गांधी जी को जदन ही बारे जानकारी थी तो हुना ने चंपारण विच किसाना दी भलाई वास्ते पहला हिंदुस्तान विच सत्याग्रह दा आंदोलन कीता। अंग्रेजी सरकार दी सख्त नजर हई गांधी जी दे कामकाज ते। 15 अप्रैल को अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी को चंपारण तो लगे वंजन दा अल्टीमेटम दिता। गांधी जी ने वो अल्टीमेटम को मन्या भी कहना, ना मनन दी सजा भी जेल विच भुगती। अनूठा, अनुपम, अद्भुत प्रयोग है सविनय अवज्ञा आंदोलन दा। परिणाम क्या था? सारे किसान भीड़ भरा इकट्ठे थी के शांति पूर्वक प्रदर्शन करने लग पे। कोई नुकसान ना था। ही अवल्ले तरीके को देख अंग्रेजी सरकार हैरान परेशान थी गई अते मजबूरन हुना ने अपना कानून तिनकठिया वापस गिद्दा ते किसाना को अपनी जमीन ते अपनी मर्जी दी खेती करने दा हक हासिल थी गया। ही आंदोलन विच गांधी जी ने प्राण खिदा कि वो अपने तन ते सिर्फ एक धोती धारण करे सन। ही संकल्प दा गांधी जी ने प्राण रहंदे पालना कीती। महान कवि अते नोबल पुरस्कार विजेता ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा दी उपाधि दित्ती। भारत विच एक पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आजादी दे आंदोलन दी नींव बन गया, आधार बन गया। हालात ए बनदे पे हन कि पहले विश्व युद्ध विच अंग्रेजां दा पूरा साथ निभावन तो बावजूद अंग्रेजी हुकूमत ने ना अपने वचन दा पालन कीता, ना हिंदुस्तान दी जनता दे प्रति हुना दा सख्त रवैया बदलिया। 1919 विच जलियांवाला बाग कांड थिया, निहत्ते निर्दोष लोकां दा संहार को देख गांधी जी दी रूह कंब गई। सन 1919 अते 1922 विच सत्याग्रह दी सुची अते सुदृढ़ सोच नाल गांधी जी ने दू जन आंदोलन, पहला खिलाफत आंदोलन अते दूजा असहयोग आंदोलन शुरू कीता। दूहे आंदोलना दे मुद्दे भावे भिन्न भिन्न हन पर नीति अते आधार एक है सत्याग्रह। गांधी जी ने गांव गांव, शहर शहर जाके अहिंसा ते एकता दा प्रचार कीता, अपील कीती ऐसे

0: योग दे सिद्धांत को अपनाओ अंग्रेजा दी फौजा विच भर्ती ना थी वो बहिष्कार करो अंग्रेजा दी बनाई चीजा दा अंग्रेज सरकार बौखला गई। गांधी दी अंधेरी में झुल्ली की हर गांव गली घर परिवार वर्ग उम्र आदमी औरत सब सत्याग्रह दी ताकत नाल आजादी दी जंग दे सिपाही बन गए। काल कोठरियां विच जा कहना है पर सत्याग्रह दे सिपाहियां दा देश प्रेम दा जज्बा उफान ते है। विदेशी समान कपड़िया दी चौक शराहे ते होली जलाई गई। घर घर चरखा घर घर खादी का प्रचार प्रसार इतना कामयाब था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था विच मंदी आ गई। किसान व्यापारी विद्यार्थी आदमी औरत हर आमो खास ही आंदोलन दी तंद विच खादी दे सूत्र विच बध गया। भारत को अंग्रेजा दे खिलाफ एकजुट कर गया ए आंदोलन। स्वराज अते स्वदेशी संस्थान खड़े थी गए। मार्च 1922 विच गांधी जी को गिरफ्तार कर दिता 6 साल दे कारावास की सजा सुनाई गई। आंदोलन भावे बंद थी गया पर हिंदा प्रभाव ए थिया कि भारत एकजुट थी गया। गांधी जी दे आजादी दी जंग दा मकसद है पूर्ण स्वराज दा सिद्धांत। हर वर्ग हर जात हर मजहब को सामाजिक अधिकार आजादी हर आमो खास दा मकसद बन गई है। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान विच वधदे असंतोष आक्रोश को महसूस किया अते पूरी आजादी पावन दे मकसद नाल 8 अगस्त 1942 को मुंबई दे इतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान विच नारा दिता अंग्रेजो भारत छोड़ो। गांधी जी ने आख्या मैं तुहाको एक निक्का जिहा मंत्र देंदा तुसा इको अपने दिल ते लिख गिनो अते हर स्वास नाल दोहरावो ए मंत्र है करो या मरो। गांव शहर गली कूचा घर घर आजादी दी लख जग गई। रोशनी वांगो आंदोलन पूरे भारत विच फैल गया। हर दिल विच एक जज्बा ठाठा मरेंदा पिया आई। हर जात मजहब वर्ग प्रांत भाषा दा बंदा आजादी दे हवन विच अपनी आहुति देवन को तैयार थी गया। करो या मरो दी भावना चौक चुराहे गली मोहल्ले हर पासे आंदोलन जलूस रैलियां विच तारी है। ब्रिटिश हकूमत दी नी वेहल गई। गांधी जी अते वड्डे वड्डे कई नेतावां को जेल विच पा दिता गया पर आंदोलन चलदा रहा। आखिर भारत छोड़ो आंदोलन आजादी दे संघर्ष दी राह दा मील दा पत्थर साबित थिया। 14 अगस्त 1947 दी अध रात को भारत को बेशकीमती आजादी मिल गई। सवेरे हर अखबार विच खबर है भारत दी आजादी दा जन्म शताब्दियां दी गुलामी बाद भारत दी आजादी दी मंगल प्रभात बापू दी चिर तपस्या सफल। जड़न पूरा देश आजादी दा जश्न मनेंदा पिया है इस सच दा साधक महात्मा गांधी दिल्ली तो बहु दूर कलकत्ता विच अनशन ते बैठा है। पंडित नेहरू अते सरदार पटेल दा खत आया तुसा राष्ट्रपिता हो आशीर्वाद देवन खातर दिल्ली आवो। गांधी जी ने जवाब दिता बंगाल सरदा पे मैं दिल्ली नहीं आ सकता। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन दा अखाण है आवन वाले वक्त विच नवी पीढ़ियां को ए विश्वास बहु मुश्किल थी सी कि एंझा कोई हडमास दा बनिया बंदा ही धरती ते आया है जे अपनी सोच नाल सारी दुनिया को जोड़ खेदा हुंदे विच पूरी दुनिया को बदलन दी ताकत समाहित है।
1: सत्य से सत्याग्रह और गांधी जी हुए तो सा नीलम मैदान दी ए वार्ता सुनदे पए हवे ते हुं सुनेंदे हां कुछ भजन। गनो सुनो ए रवायती भजन झीनी झीनी भीगी चदरिया सैगान रोपवेच।

0: बास्केटबॉल फुटबॉल वॉलीबॉल ओए चोरा ना ये कोई पता लगा कि नहीं
1: ओ जनाब सारा शहर जंगल फोल मारिया
0: पर चोरा को पता ही नहीं लग रहा ब्लडी बास्केटबॉल ओए चोर तानू अपना

ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰੀ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ

Yeah.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ।

I'm not going to be able to do that.

ਕਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕ ਕਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।

ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ।

उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाये। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 104

20 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने एनसीसी कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के टीआईटी संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन एनसीसी ने किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे किसान बहनों और भाइयों को राम राम। तो प्रियंका बहन, आज है 2 अक्टूबर और पिछले कार्यक्रम में हमने बात की गांधी जयंती की, साथ ही बात की लाल बहादुर शास्त्री जयंती की। और आज देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री और सादगी व स्वाभिमान के प्रतीक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में यमुना तट स्थित उनके समाधि स्थल विजय घाट पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने विजय घाट पर पहुंचकर शास्त्री जी की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित किया और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं को नमन किया। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और दृढ़ नेतृत्व को नमन किया। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर शास्त्री जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही शास्त्री जी का सादगी से भरा जीवन, उच्च विचार और जय जवान जय किसान का अमर संदेश आज भी हर भारतीय के दिल में राष्ट्र सेवा की अलख जगाता है। आकाशवाणी परिवार की ओर से देश के इस महान सपूत को शत शत नमन।
1: बिल्कुल, किसानों के लिए उनका जो स्नेह था किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसी बात की एक विस्तृत जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें बातचीत है, जिसका विषय है कृषि के विकास में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान। और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व मुख्य संपादक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री का नाम एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश का नेतृत्व किया। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल जून 1964 से जनवरी 1966 तक लगभग 1.5 वर्ष तक का रहा, लेकिन इस छोटी अवधि में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को एक दूसरे से जोड़कर देखने की महत्वपूर्ण दृष्टि प्रस्तुत की। उनके नेतृत्व के समय भारत एक ओर 1965 के युद्ध का सामना कर रहा था तो दूसरी ओर खाद्यान्न की गंभीर कमी, कमजोर कृषि उत्पादकता, सूखा और विदेशी खाद्यान्न पर निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। 1964-65 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 88.4 मिलियन टन था और उस समय देश को लगभग 7 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। 1965-66 में प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि उत्पादन पर और दबाव पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्री जी ने कृषि को केवल ग्रामीण

अर्थव्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय अस्तित्व और आत्मनिर्भरता का प्रश्न बनाया। इसी व्यापक सोच से उनका प्रसिद्ध आह्वान सामने आया, जय जवान जय किसान। इस नारे में उन्होंने सैनिक और किसान को राष्ट्र की सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण आधारों के रूप में देखा। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जबकि किसान देश के नागरिकों के लिए अन्न पैदा करता है। तत्कालीन परिस्थितियों में यह संदेश केवल राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का संक्षिप्त सूत्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में खाद्य सुरक्षा प्रमुख थी। जनसंख्या बढ़ रही थी, कृषि मुख्य तौर पर मानसून पर निर्भर थी, सिंचाई सीमित थी और उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में कहीं कम थी। कृषि में आधुनिक बीजों, उर्वरकों, सिंचाई, कृषि अनुसंधान, भंडारण और संस्थागत मार्केटिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1960 के दशक के मध्य तक यह समस्या और गंभीर हो गई। 1964-65 में खाद्यान्न उत्पादन 88.4 मिलियन टन तक पहुंचा था, लेकिन 1965-66 में प्रतिकूल मौसम ने उत्पादन को प्रभावित किया। तत्कालीन आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से कृषि उत्पादन पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और खाद्यान्न उपलब्धता में कमी की ओर संकेत किया था। इस संकट के बीच भारत को विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। अमेरिकी PL-480 कार्यक्रम के माध्यम से गेहूं का आयात भी भारत की खाद्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाद में सरकार ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया। खाद्य निगम की स्थापना और कृषि मूल्य नीति की संस्थागत व्यवस्था इसी व्यापक खाद्य सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनी। ऐसे समय में शास्त्री जी की कृषि दृष्टि का केंद्रीय विचार था कि देश को अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक बाहरी निर्भरता से बाहर निकलना होगा। शास्त्री जी की कृषि दृष्टि को चंद शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है, आत्मनिर्भरता, किसान का सम्मान, उत्पादन वृद्धि, सहकारिता, अनुशासन, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय जिम्मेदारी। उनका मानना था कि कृषि केवल किसान का निजी व्यवसाय नहीं है, यह पूरे समाज की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई गतिविधि है। यदि किसान उत्पादन करता है तो शहर, उद्योग, सेना और पूरा राष्ट्र उसके श्रम से लाभान्वित होता है। उनकी सोच में किसान को केवल सहायता पाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता माना गया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक संदेशों में किसानों और सैनिकों को एक साथ सम्मान देना इसी दृष्टिकोण का परिचायक था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शास्त्री स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि जय जवान जय किसान के माध्यम से शास्त्री जी ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को राष्ट्रीय रक्षा से जोड़ा था। जय जवान जय किसान शास्त्री जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुकार बनी। 1965 के युद्ध के दौरान इसका विशेष महत्व था। देश को सैनिकों की आवश्यकता थी और उसी समय खाद्यान्न संकट के कारण किसानों से अधिक उत्पादन की अपेक्षा थी। इस नारे का मूल संदेश था कि राष्ट्र की शक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बनती, खेतों में श्रम करने वाला किसान भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। इस दृष्टि से जय जवान और जय किसान परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक थे। यदि देश खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती। इसीलिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आर्थिक नीति के साथ साथ रणनीतिक आवश्यकता भी थी। बाद के दशकों में जय विज्ञान और फिर जय अनुसंधान जैसे विस्तार हुए, लेकिन मूल जय जवान जय किसान में ही सुरक्षा, उत्पादन और राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित हो चुका था। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। 1965 के युद्ध और खाद्य संकट ने सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी थी। ऐसे समय में शास्त्री जी ने खाद्य आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। उन्होंने नागरिकों से संयम और खाद्य बचत की अपील की। उस समय सप्ताह में एक दिन उपवास अथवा भोजन की खपत कम करने का आह्वान भी इसी संदर्भ में किया गया था। यह केवल जनता को आदेश देने की शैली नहीं थी। शास्त्री जी स्वयं सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सरकारी स्रोतों में उनके द्वारा अपने परिवार में भी खाद्य संयम के सिद्धांत को अपनाने का उल्लेख मिलता है। इसका व्यापक संदेश था, संकट के समय सरकार और नागरिक दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह बताने की जरूरत नहीं कि आज खाद्य अव्यय, जल संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के संदर्भ में यह विचार फिर प्रासंगिक दिखाई देता है।
यह समझना आवश्यक है कि भारत की हरित क्रांति किसी एक व्यक्ति या एक सरकार का अकेला परिणाम नहीं थी। इसके पीछे कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिकों, संस्थानों, सिंचाई, उर्वरक, बीज, किसानों की मेहनत तथा बाद की सरकारों की नीतियों का सम्मिलित योगदान शामिल था। शास्त्री जी के कालखंड को उस परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है जब खाद्य आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय नीति के रूप में लाया गया। उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत कदम उठाए गए, उनमें प्रमुख है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, वितरण और मूल्य समर्थन की व्यवस्था को मजबूत करना था। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार एफसीआई की स्थापना ऐसे समय में हुई जब देश में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं की भारी कमी थी। यह व्यवस्था आगे चलकर भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। उनकी पहल से ही 1965 में कृषि मूल्य नीति की संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन की स्थापना हुई, जिसे बाद में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP के रूप में जाना गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को सलाह देना तथा किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने वाली मूल्य व्यवस्था विकसित करना था। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि केवल उत्पादन बढ़ाने से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, किसान को अपने उत्पाद का उचित आर्थिक प्रतिफल भी मिलना चाहिए। 1960 के दशक के कृषि कार्यक्रमों में उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि ऋण और वैज्ञानिक तकनीक को अधिक महत्व मिलने लगा। तत्कालीन आर्थिक सर्वेक्षणों में बेहतर बीज, कीटनाशक, भंडारण और उत्पादक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की योजनाओं का उल्लेख मिलता है। यही वह नीति वातावरण था जिसमें बाद की हरित क्रांति का विस्तार का आधार मिला। उनके प्रधानमंत्री काल में खाद्य आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति को निर्णायक प्राथमिकता मिली, जबकि उच्च उपज वाली किस्मों पर आधारित हरित क्रांति का व्यापक प्रसार उनके निधन के बाद हुआ। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च उपज वाली किस्में, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, संस्थागत ऋण और सरकारी खरीद समर्थन जैसे बड़े कारक एक साथ काम कर रहे थे। इसी भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने हरित क्रांति और उसके बाद के कृषि विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीति आयोग भी 1960 के दशक के खाद्य संकट और उसके बाद हरित क्रांति की तकनीक को भारतीय कृषि की उत्पादकता वृद्धि में महत्वपूर्ण मोड़ मानता है। इसीलिए शास्त्री जी को हरित क्रांति के अकेले निर्माता की बजाय उस राष्ट्रीय कृषि आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थक और आधार निर्माताओं में से एक के रूप में देखना अधिक ऐतिहासिक रूप से उचित होगा। शास्त्री जी का किसान से संबंध केवल भाषणों तक सीमित नहीं था। उनके सार्वजनिक जीवन शैली में सादगी, सामान्य नागरिकों से निकटता और ग्रामीण भारत के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती थी। इसी संदर्भ में गुजरात के आनंद की उनकी यात्रा विशेष महत्व रखती है। अक्टूबर 1964 में शास्त्री जी आनंद गए और वहां अमूल के सहकारी मॉडल को देखा। वे इस मॉडल से प्रभावित हुए। उन्होंने किसानों के सहकारी संस्था के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में समय बिताया। एफएओ के विवरण के अनुसार इसी अनुभव ने राष्ट्रीय स्तर पर आनंद मॉडल को दोहराने की उनकी इच्छा को मजबूत किया और 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB की स्थापना हुई। यह प्रसंग शास्त्री जी की कृषि दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने लाता है कि किसान की आर्थिक शक्ति केवल खेत में अधिक उत्पादन में से नहीं बल्कि संगठन, सहकारिता और बाजार तक बेहतर पहुंच से भी बढ़ सकती है। 1965 में NDDB की स्थापना कृषि से जुड़ी शास्त्री जी के सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत विरासतों में से एक मानी जा सकती है। NDDB का उद्देश्य आनंद के सहकारी मॉडल को अन्य क्षेत्रों में फैलाना था। बाद में इसी संस्थागत ढांचे और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड ने भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया। सरकारी विवरण के अनुसार ऑपरेशन फ्लड 1970 के चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ा। यह उनके कृषि दर्शन के उस पहलू को दर्शाता है जिसमें छोटे उत्पादकों को सहकारी संगठन के माध्यम से बाजार शक्ति देने की कल्पना थी।
शास्त्री जी की कृषि नीति की प्राथमिकताओं में कई आयाम शामिल थे। इनमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्य आत्मनिर्भरता, किसान को उत्पादन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, उन्नत बीज और वैज्ञानिक तकनीक, सिंचाई का विस्तार, कृषि भंडारण एवं वितरण, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं का विस्तार, दूध उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि तथा कृषि को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना आदि का

0: खासतौर पर उल्लेख किया जा सकता है। शास्त्री जी का निधन 1966 में हुआ। उनके वास्तविक कार्यों और नीतिगत प्राथमिकताओं से उनके कृषि विजन के कुछ मूल सिद्धांत समझे जा सकते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता, यानी कि देश को अपनी मूल खाद्य आवश्यकताओं के लिए बाहरी निर्भरता कम करनी चाहिए। दूसरा है किसान केंद्रित विकास। उनके अनुसार कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य केवल उत्पादन के आंकड़े बढ़ाना नहीं बल्कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधारना होना चाहिए। तीसरा है विज्ञान और तकनीक का प्रसार। मतलब यह है कि बेहतर बीज, सिंचाई, कृषि अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति उत्पादन पद्धति के महत्वपूर्ण साधन है। चौथा है सहकारिता। इसके अनुसार छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति बाजार में उनकी स्थिति मजबूत कर सकती है। आनंद का सहकारी मॉडल इसका उदाहरण है। पांचवा है अनुशासन और संसाधन संरक्षण, यानी कि खाद्य संकट पे संयम का उनका संदेश आज पानी, मिट्टी और खाद्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में अहम दिशा निर्देश के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान भारतीय कृषि के संदर्भ में शास्त्री जी की सोच की उपयोगिता क्या है, इस पर भी गौर कर लेते हैं। आज भारत की कृषि 1960 के दशक की कृषि से बिल्कुल अलग है। देश में खाद्यान्न उत्पादन, सिंचाई, कृषि अनुसंधान, दूध उत्पादन और कृषि बाजारों में लंबी यात्रा तय की है। आईसीएआर के अनुसार 1950-51 से 2021-22 के बीच भारत के खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विकास ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी नई चुनौतियां सामने हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि, सूखा और बाढ़ कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्री जी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा को आज जलवायु अनुकूल कृषि से जोड़ा जा सकता है। शास्त्री जी की किसान केंद्रित सोच आज इस प्रश्न से जुड़ती है कि किसान को केवल उत्पादक ही नहीं बल्कि मूल्य श्रृंखला के सहभागी के रूप में कैसे मजबूत किया जाए। ऐसे ही जब खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का जिक्र किया जाता है तो स्पष्ट दिखता है कि आज कृषि का लक्ष्य केवल गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं रह सकता। दालें, तिलहन, फल, सब्जियां, दूध, मछली और अन्य पोषक खाद्य भी महत्वपूर्ण हैं। आज जब भारत कृषि क्षेत्र में उत्पादन, किसान आय, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, मिट्टी की गुणवत्ता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब शास्त्री जी की सोच के मूल तत्व फिर उपयोगी दिखाई देते हैं। उनकी विरासत हमें ये समझाती है कि कृषि केवल अन्न पैदा करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा का आधार है। जय किसान का वास्तविक अर्थ किसान का सम्मान करने के साथ साथ ऐसी कृषि व्यवस्था बनाना है जिसमें किसान उत्पादक भी हो, उद्यमी भी, तकनीक का उपयोगकर्ता भी हो, बाजार में निर्णय लेने वाला सहभागी भी हो और देश की खाद्य सुरक्षा का आधार होने के साथ स्वयं आर्थिक रूप से सुरक्षित भी हो। यही दृष्टि लाल बहादुर शास्त्री की कृषि विरासत को वर्तमान भारत में सार्थक बनाती है। अंत में शास्त्री जी की कृषि दृष्टि का सबसे बड़ा संदेश यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता खेत से शुरू होती है और किसान की समृद्धि के बिना कृषि की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है।
1: तो प्रियंका बहन अभी हमारे साथ ही सुन रहे थे कृषि में विकास, कृषि के विकास में लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान और बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व मुख्य संपादक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। और अब प्रियंका बहन सुन लेते हैं एक देशभक्ति रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, और कलाकार थे कौशिंदर खदाना और रविंद्र खिलौर।
1: अभी प्रियंका बहन हम बात कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी का कृषि में, कृषि के विकास में कितना बड़ा योगदान था, और वैसे ही उन्हीं की चीजों को ध्यान में रखते हुए एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के लिए एक सुरक्षा जो है कवच है जो खेती में होने वाली नुकसान की भरपाई करता है। जब कभी सूखा, बाढ़, भारी बारिश, ओले या कीड़ों की वजह से फसल में बर्बादी हो जाती है तो ये योजना किसानों को आर्थिक मदद देकर उन्हें नुकसान से बचाती है। इससे किसान बिना किसी डर के दोबारा खेती कर सकते हैं। ये फसल योजना फसल की बुवाई से लेकर कटाई के बाद के 14 दिनों तक काम करती है। इस योजना में किसानों को बहुत ही कम पैसा यानी प्रीमियम देना पड़ता है। धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2%, गेहूं और सरसों जैसी रबी की फसलों के लिए सिर्फ 1.5%, और सब्जियों या कपास जैसी नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी का सारा भारी जो खर्च होता है सरकार खुद उठाती है। इससे जुड़ने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और फसल बुवाई का

0: सर्टिफिकेट होना चाहिए। योजना में शामिल होने के लिए आप खुद PMFBY पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बैंक के कागजात जमा कर सकते हैं। यदि मौसम या आपदा के कारण आपकी फसल खराब हो जाती है तो नुकसान के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना जरूरी है। आप मोबाइल में क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए नुकसान की फोटो अपलोड कर सकते हो। सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करके अपने नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर में लिखित शिकायत देकर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारी आपके खेत का सर्वे करेंगे और प्रियंका बहन, नुकसान का पैसा सीधा किसान भाइयों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
1: बिल्कुल जरूर। तो अगर आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इस योजना का लाभ जरूर लें। अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं रोली बरवा की आवाज में देशभक्ति रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे रोली भरवा से ये देशभक्ति रागनी। और भाई आपको याद दिला दें कि कल है शनिवार और शनिवार को आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलोग्राम संसार फोन इन कार्यक्रम है जो कि प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे श्रोता फोन के माध्यम से हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाते हैं। और ये 6:30 पर आप सुन सकते हैं हेलोग्राम संसार और 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम किसान वाणी। तो कार्यक्रम सुनना कल बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, संयोजक थे शिव नंदन लाल।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम। हम सुनवाएंगे आज आपको जगजीत सिंह साहब की गाई गजलें।

श्रोता जगजीत सिंह साहब को अभी आपने सुना गजल के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त दीप्ति। और अब अगली गजल फिल्म जॉगर्स पार्क से जगजीत सिंह साहब की आवाज में एक बार फिर ये खूबसूरत गजल आप तक।

0: इसी के साथ गजलों के इस कार्यक्रम से दीप्ति को इजाजत दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन पूरे पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह इस सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 197वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन, उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की जीवन यात्रा राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की विराट साधना थी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण पीढ़ियों को भारत की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत आजादपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वस्थ और सभ्य समाज की आधारशिला माना। उन्होंने कहा कि आज से 12 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा वीर जवानों और अन्नदाताओं के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सेवा के उनके आदर्श सभी को सदैव सूर्योदय और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की।

0: उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने यह दिखाया कि नैतिक साहस किसी राष्ट्र को दिशा दे सकता है, जबकि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा नेतृत्व के सर्वोच्च मानदंड निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सभी को निरंतर यह स्मरण कराता है कि सार्वजनिक जीवन की वास्तविक शक्ति चरित्र, संकल्प और राष्ट्र सेवा में निहित होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए दोनों महापुरुषों की जयंती का एक ही दिन होना केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि उन मूल्यों पर चिंतन करने का अवसर भी है जो भारत को लोकतांत्रिक और संस्थागत जीवन को निरंतर दिशा प्रदान करते रहने चाहिए। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट सहित अन्य सदस्यों ने भी दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की। नितिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए दिलनशी आरज़ू।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रोमो
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री सूद ने सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े डंप द जंक अभियान में सहभागिता की। यह अभियान आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कचरा बेतरतीब ढंग से न फेंका जाए।
3: देखिए, आज से लेकर 17 तारीख तक डंक द जंक युवाओं को, दिल्ली की जनता को अपने साथ लेकर कूड़ा जगह जगह ना फेंकने के लिए ये अभियान हम लोगों ने चलाया है। दिल्ली के 313 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चुनकर हमारा प्रयास होगा कि इसको इस प्रकार से डेवलप कर दें कि अगले दिनों में यहाँ कूड़ा न गिरे।
1: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता गतिविधियों में शामिल हुए। स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन में स्वच्छता, अनुशासन और सार्वजनिक दायित्व को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना गया था। श्री राय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक और दृश्यमान परिवर्तन लाया है। सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान कई सालों से चल रहा है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं, ये पूरे साल चलता रहेगा और इसके अच्छे नतीजे सभी देख रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन समेत पूरे देश में विशेष छूट अभियान की शुरुआत की गई है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के आह्वान को जन जन और जेंजी तक पहुंचाने के लिए KVIC लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खादी ने एक नया आयाम प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज खादी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि करोड़ों कारीगरों और बुनकरों की आजीविका, भारत की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास का प्रतीक है। उन्होंने ये बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार 1,87,00,000 रूपये से अधिक रहा और इससे लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
4: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहे हैं, मोदी कुर्ता पहन रहे हैं। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी की

0: प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिस्क के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी है। इसके तहत नॉर्दर्न रिस्क की 112 हेक्टेयर से अधिक यानी 277.56 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जा रहा है। ये क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और दिल्ली के महत्वपूर्ण हरित और पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संदर्भ में कहा कि नॉर्दर्न रिज दिल्ली की अमूल्य प्राकृतिक विरासत है और इसका संरक्षण शहर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 112 हेक्टेयर से अधिक भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए फेज वन अधिसूचना को मंजूरी देना दिल्ली के हरित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और राजधानी को अधिक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नॉर्दर्न रिज की 112 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि अधिसूचित होने के बाद कुल क्षेत्र 5363 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न रिज जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना दिल्ली को वायु प्रदूषण तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में दीर्घकालिक मजबूती देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद सहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: इन स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। इस संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोहिणी के एक छात्र से लेकर दिल्ली मेट्रो, विधानसभा और नई संसद तक ये यादगार वस्तुएं पूरी दिल्ली की कहानियां बयां करती हैं। ये नीलामी इन यादों को एक बड़ा सार्वजनिक उद्देश्य भी देती है क्योंकि इससे मिलने वाली राशि नमामि गंगे में जाएगी। नीलामी की तिथियों, इसमें शामिल होने की जानकारी और पूरी कैटलॉग के लिए प्रधानमंत्री यादगार वस्तु ई नीलामी पोर्टल pmmementos.gov.in पर देख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देशभर में खाद्य उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20

तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिलाओं की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कैसे बनाने में एक औरत उनकी माँ का हाल था जिनके माशी हालात अच्छे नहीं थे। आज हम कैसे साहब पैसा नहीं तालीम हासिल कहाँ से करें, अरे तीन तीन दिन के फाके लेकिन तालीम हासिल की और अपने बेटे को उस दर्जे में पहुंचाया कि बड़े बड़े जो मालदार उलमा थे वो उस दर्जे को नहीं पहुंच सके।
1: डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफी ने ख्वाजा हसन सानी निजामी पर अपना मकाला पेश किया।
2: फखर दिल्ली हजरत ख्वाजा हसन सानी निजामी मशहूर सूफी बुजुर्ग और उर्दू के साहिब तर्ज अदीब और अरबी फारसी के आलिम नेक मुफस्सिर कुरान व हदीस शम्सुल उलमा मुसव्विर फितर हजरत ख्वाजा हसन निजामी दहली सजादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पांचवे फर्जंद थे। आज की इब्तदाई दीनी और मजहबी तालीम खुद हजरत ख्वाजा हसन निजामी और इनके आलिम और अदीबा शरीक हयात मोहतरमा ख्वाजा हूर बानो की मरहून मिन्नत है। अंग्रेजी तालीम भी स्कूल जाने की उम्र से ही पहले इंग्लो इंडियन गवर्नेंस के जरिए शुरू करवा दी गई थी जो रस्मी तालीम के साथ साथ रहन सहन के आदाब भी सिखाती थी। स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ आपको बाद हिंदुस्तान की शोहरत के मालिक उलमाए दीन दीनियात और हदीस व तफसीर के असातिज़ा से शर्फ तिलवस हासिल करने का मौका मिला। हजरत मौलाना मोहम्मद असलम पूरी मौलाना ख्वाजा अब्दुल हई साहब रस्मी तालीम के दौरान हजरत ख्वाजा हसन निजामी की सरपरस्ती की वजह से इनको मजमून निगारी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का तजुर्बा चौथी जमात से ही होने लगा। जबकि रेडियो प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड करके नहीं बल्कि डायरेक्ट नशर किए जाते थे। स्कूल से पहले की तालीम की वजह से आपने अपने मशहूर उस्ताद अब्दुल गफ्फार मधुली की किताब एक मुअल्लिम की जिंदगी जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के निसाब में शामिल है इसकी तसी और प्रूफ रीडिंग का काम दूसरी जमात की तालीम के दौरान अपने उस्ताद के साथ मिलकर अंजाम दी। पहली जमात से ग्रेजुएशन तक की तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया से मुकम्मल की। आजादी यानी 1947 के बाद दो तीन बरस सारे खानदान के साथ हैदराबाद मुंतकिल हुए थे और वहीं तालीम भी जारी रखी। आला तालीम के लिए ग्रेजुएशन के बाद मशहूर फ्रांसीसी मुश्तरक प्रोफेसर लुई मीसिनॉन इन्हें तसव्वुफ पर काम करने के लिए अपने साथ फ्रांस ले जाना चाहते थे लेकिन आपने अपने वालिद की अदालत की वजह से हिंदुस्तान में रहकर अपने वालिद की खिदमत को जरूरी समझा और हजरत हसन निजामी की मशहूर रिसाले मुनादी को जो 1926 से जारी था मगर वालिद की अदालत की वजह से 1954 में बंद हो गया था। वालिद की जिंदगी में ही जनवरी 1955 से जारी कर दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है।
1: डॉक्टर मोहम्मद अकील ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर अपना मकाला पेश करते हुए कहा,
3: हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके खुलफा की जो बात सबसे अहम है वो आपकी सखावत है। हजरत के पास जो कुछ आता है शाम तक खर्च कर दिया जाता। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के वक्त का एक वाकया जहूर रतन शाहिद ने लिखा है कि एक मरतबा गयासपुर में आग लग गई, बहुत से मकान जल गए। हजरत महबूब इलाही को लोगों की उस बर्बादी से सदमा हुआ। आपने ख्वाजा इकबाल को हुक्म दिया कि जिन लोगों के मकान जल गए हैं उनको दो खाना और दो पानी के मटके और दो अशरफियां पहुंचा दी जाएं। ख्वाजा इकबाल ने ऐसा ही किया। आपके यहाँ बहुत से लोगों की परवरिश होती थी और बहुत से तलबा और बहुत से हाफिजों को इमदाद दी जाती थी। आपकी सखावत और दर्जा दिली पर शाहान वक्त को ताजुब होता था। यहाँ गौरतलब बात यह है कि इमदाद की फराहमी किसी मखसूस मजहब तबके के लिए नहीं बल्कि हर खास आवाम के लिए आपके यहाँ से मदद दी जाती थी। दूसरी बात यह कि हजरत की खानकाह से तलबा का खास ख्याल रखा जाता था जो एक बहुत बड़ा काम था और आपके यहाँ लंगर का जो नज्म शुरू हुआ था वह आज भी जारी है। तज़किरतुल अत्तकिया के हवाले से जहूर हसन शारिफ ने लिखा है कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने

0: और आपको दुआ दी थी कि खुदा करे 70 मन नमक रोजाना तुम्हारे बावर्ची खाने में खर्च हो। अब तस्वीर कीजिए कि कितने लोग खाएंगे 70 मन, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके साथ ये भी लिखा कि अगर आपके पीर मुर्शिद की ये दुआ कबूल हुई, आपके बावर्ची खाने में रोजाना 70 मन नमक खर्च होता था। इसने बिला तफरीक मजहब मिल्लत के लोग शरीफ होते थे।
1: आपके जनाब फारूक करगली अपना मकाला पेश करते हुए।
2: हमारे रूहानी और दीनी लिटरेचर में मुतअद्दिद जलील कदर बुजुर्गान दीन के इरशादात मलफूजात के मजमूए दीन और दुनिया में बंदगान खुदा की रहनुमाई का बहुत बड़ा वसीला है। इस जगह अगर सिर्फ बुजुर्गान चिश्त की बात करें तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मलफूजात का मजमूआ दलीलुल आरफीन हमारे सामने है, जिसे खुतबुल अफताब हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब किया था। हजरत खुतबुल अफताब के मलफूजात उनके मुरीद बासफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फवायदुस सालिकीन के नाम से जमा किए और हजरत सुल्तानुल मशाइख ने अपने पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीद के अखबार और इशादात राहतुल खुलूब के अनवान से मुरतब किए। बाबा साहब के मलफूजात का एक और मजमूआ आपके दूसरे मुरीद हजरत बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने असरार औलिया के नाम से मुरतब किया। इस अदीबुशान सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हजरत ख्वाजा अला सज्जी देहलवी ने अपने पीर दस्तगीर महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के रूह परवर मलफूजात का मजमूआ फवायदुल फवाद के नाम से उस मोहब्बत और अकीदत के साथ मुरतब किया कि यह किताब तसव्वुफ रूहानियत का लाफानी शाहकार बन गई। हालांकि दरबार निजामी में हजरत अमीर खुसरो रहमा जैसे माया नाज अदीब शायर सूफी और मुकर्रब बारगाह महबूब इलाही भी मौजूद हैं, उन्होंने भी मुर्शिद बरहक के नूरानी मलफूजात अफजलुल फवाइद के नाम से सुपुर्द कलम किए, लेकिन खुद हजरत अमीर खुसरो ने अपने पीर भाई और प्यारे दोस्त हजरत अला सिज्दी की किताब को मुकम्मल व अफजल करार दिया। इस किताब के अजमत का अंदाजा हजरत अमीर खुसरो की इस बात से लगाया जा सकता है कि काश अमीर हसन मेरी सब किताबें अपने नाम कर लेते और सिर्फ ये किताब मेरे नाम कर देते। हजरत महबूब इलाही इल्म इरफान का आफताब है, आपके इशारात और फरमुदात में सुलू को मार्फत का दरिया ठाठे मार रहा है। सिलसिले चिश्तिया निजामिया के लाखों वाबस्तगान व अकीदत मंदान व तशनगान तसव्वुफ और रूहानियत पर फख्र दहली हजरत ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ा एहसान है कि फारसी जबान से सलीस उर्दू में तर्जुमा करके इस किताब की तफहीम और तफसीर पूरी उर्दू दुनिया के लिए आम फरमा दी।
1: प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी ने अपने मकाले में कहा,
3: हजरत महबूब इलाही एक जामे उस सिफात शख्सियत के मालिक थे, आबिक आलिम फाजिल मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस फकीह माकूली अदीब शायर सालिक तरीकत और मुहक्किक शरीयत थे, नुक्तरस तबीयत और दकीक शनास जहन के मालिक थे। आपके अहद के मुमताज उलमा दरवेश दानिशमंद उमरा और फिर सबसे ज्यादा अवाम आपके गिर्द शौको शौक से जमा हो गए थे और आप उन पर और वो आप पर जान छिड़कते थे। हजरत महबूब इलाही के खलीफा और अपने वक्त के मारूफ साहिब इल्म दानिश्वर मौलाना वजीहुद्दीन पायली कहते थे, ये जो ख्वाजा साहब के खुलाफा थे और उनके जो रिश्तेदार थे ख्वाजा साहब के हुक्म पर इन्होंने उन सबको तालीम दी। ख्वाजा साहब किसी मामूली आदमी के हवाले आम आलिम के हवाले अपने बच्चों को नहीं कर सकते थे कि आप इनको पढ़ा दीजिए। ये मकाम था मौलाना वजीहुद्दीन पायली का। वो कहा करते थे हजरत महबूब इलाही के लिए कि शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और आज वही कोर्ट में वक्त है। अरब शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के पोते शेख रुकनुद्दीन ने, ये वही शेख रुकनुद्दीन है कि जो इत्तेफाक से हजरत महबूब इलाही की वफात पर दिल्ली में थे और आप ही ने ख्वाजा साहब की नमाज पढ़ाई और तकसीम में हिस्सा लिया था। तो हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के पोते शेख रुकनुद्दीन ने एक बार अपने खिदमतगार मौलाना यूसुफ से फरमाया था, मुझे शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन का मरतबा

0: दिखाया गया।
1: सवाल नहीं रहा क्या अजमत है और क्या बुजुर्गी है और क्या मकामात है जो उनको दिए गए हैं। शेख निजामुद्दीन बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, ये खुद एक बहुत बड़ा सूफी ये कहना।
2: जनाब अफजल मंगलौरी ने महबूब इलाही को मंजूम खिराज अकीदत पेश किया।
3: पेश करने बसद है

जन्नत का दीदार होने लगा, बाग जन्नत का दीदार होने लगा। ख्वाब में जब दयारे निजाम आ गया, ख्वाब में

रश्क करने लगा अपनी किस्मत पे मैं, उनके मंगतों में जब मेरा नाम आ गया, उनके मंगतों में जब, और उसको महबूब ने दी मैं खुसरवी, उसको महबूब ने दी

अभी आप महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की 723वें उर्स मुबारक की सैर रोजा तकरीबात पर मबनी ये रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। तो पेश करते हैं इंतजार अली सैफी की और आपकी खिदमत में ये रेडियो

Hello, salam, namaste, and a very warm welcome to the program Geet Malika. फिल्म संगीत की खूबसूरत सी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड को लेकर आज हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। दोस्तों, कभी मौसम की खुमारी और कभी नजरों की शरारत, कभी यूं ही अचानक ही अपने भीतर की नई रोशनी से मुलाकात। संगीत के रंग भी ना कितने निराले होते हैं, है ना? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें फूलों की खुशबू है, हवाओं की सरसराहट है और आवारा से भंवरों की अपनी ही मदमस्त सी धुन है। आज हमारी रोलर कोस्टर राइड का पहला स्टेशन है फिल्म सपने का ये गीत हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

हाँ जी, और हौले हौले गीत गाते दिल की नजरें जब उनसे यूं ही बी इरादा मिल जाए तो चलिए बात करते हैं उस पल की जब किसी से नजरें मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत बन जाता है। कभी कभी ना एक छोटी सी मुलाकात भी निगाहों में कितने खूबसूरत से रंग भर देती है ना? आपको सुनवा रही हूँ विपिन सचदेवा साहब की खूबसूरत आवाज में फिल्म सनम बेवफा का ये गीत।

पे मेरा तो मानना है कि नजरें इरादे से मिलें या बे इरादा, कभी कभी बात ना सिर्फ एक मुलाकात तक नहीं रुकती। अब जरा सोचिए तो, कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान और बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाना, है ना खूबसूरत सा सिलसिला। चलिए बढ़ाते हैं इसी खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा और आगे।

और बस इसी गीत के साथ आज की रोलर कोस्टर राइड को मैं दीप्ति पाठक निधीश यहीं देती हूँ विराम। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ा है, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का

0: गार्डन जैसे परिवार का गार्डन को समझाना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
1: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन लोगों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना अनिवार्य

0: कार्य सार्वजनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
1: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉ इंगम पामे और नम्पिबू मरिनमाई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। पूरे देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
2: महिला रिकर्व तिरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9.

0: अगर आप रीढ़ की हड्डियों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स आपकी बैक की मसल स्ट्रांग रहेंगी, गर्दन की मसल स्ट्रांग रहेंगी, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड। इसके अलावा आपको नियमित एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है जिसमें विटामिन डी भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन्स भी हो, और अपने वजन का ख्याल रखें, वजन ना बढ़ना दें। शरीर का वजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रीढ़ की हड्डियों पे जोर पड़ेगा। बच्चों को मैं खासकर एडवाइस देना चाहूंगा कि खूब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, धूप में खेलें, ताकि उनको विटामिन डी मिलता रहे, उनकी मसल स्ट्रांग रहे। और बस यही बोलना चाहूंगा, पोस्चर का बहुत जरूरी है कि पोस्चर वर्क प्लेस पे बहुत आम प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो उसके लिए भी पोस्चर अपना सही मेंटेन रखें, बीच बीच में ब्रेक्स लें।
1: सामीन, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी। अपने मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए हम डॉक्टर राहुल खरे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सामीन, आज के हमारे हेल्थ टिप्स का मौजू था स्पाइन हेल्थ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Commerce and Industry Minister has called upon the WTO compliant approach so that the global trade distortions can be corrected.
1: Well, this is really important, Rajesh, because India, in all matters, be it trade, economy, or diplomacy, and even conflicts as well, has maintained one consistent stand, and that is that the international rules, the international orders, must be abided, must be followed. When it comes to trade, WTO, of course, is the guiding authority. You know, everybody, all countries do respect the guidelines which are there from the WTO, and going against them will, of course, create a imbalance within the economic system as well, and that is where the entire crisis of dumping and trade distortions comes into effect. And this is really important right now as well, because given the constraint which is there right now on the global supply chains because of the ongoing conflicts, both in the European theater and the Middle Eastern theater, this becomes really important, because there will be economies, there will be countries which will not be able to withstand these kind of economic onslaughts if they continue for long.
0: Concerns about dumping and also about the predatory pricing as well.
1: Yes, indeed. That's what I'm saying. So in the present situation, wherein the smaller economies are already trying to stay afloat in the face of rising energy prices, in the face of pressure, undue pressure on global supply chains, and a lot of uncertainty as well in the trade and economy aspect globally, given the fact that the world powers, so-called economic world powers, are changing the rules of the games almost on a daily basis, if not a weekly basis. Statements coming in, they change a lot of stuff. So in that situation, it is imperative for everybody, all the countries specifically, to adhere to these principles which are already in place, so that the troubles for the lesser economically fortunate countries, or the developing economies, so to specifically, are not under undue duress or pressure.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. फ्रांस के विदेश मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे, G20 के साथ ही काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा फ्रांस और कनाडा के साथ खासतौर पर. इससे भारत का जो अभी व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उससे भारत को किस तरह का लाभ पहुंचने की उम्मीद है?
1: देखिए, भारत ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक बेहतरीन आर्थिक रणनीति यहां अपनाई है, और आर्थिक मामलों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रेड के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से, आप जितने ज्यादा देशों के साथ अलग अलग तरीके से अपने समझौते बना पाए, अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करके उनका फायदा और अपना फायदा दोनों एक देख पाए, वो ज्यादा बेहतर है. जो मल्टीलेटरलिज्म जिसे कहा जाता है, उससे इतर जाके अब थोड़ा सा बायलेटरल कोऑपरेशन जो है, उस पर जोर ज्यादा है. इसलिए FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जैसे कनाडा के साथ CEPA जो बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे चर्चा और इस तरह के एग्रीमेंट को मूर्त रूप

0: जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 3 से 4 साल में हमने देखी है कि उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, उस पर ज्यादा मोमेंटम हुआ है। कनाडा से बातचीत अभी जारी है, उसमें अलग अलग और किस तरह की उसमें जमाया घटा किया जा सकता है उस एग्रीमेंट में। उसके अलावा चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर और यूरोपीय जो बाकी देश है उनके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हमने एक समझौता किया, और भी ऐसे कई देश हैं, और अमेरिका के साथ एक अलग समझौते पे लगातार बातचीत चल रही है। उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि हर इस वक्त आज की स्थिति में हर इकोनॉमी की तरह, हर देश की तरह भारत भी ये चाहता है कि उसके ऑप्शंस खुले हों, उसके विकल्प खुले हों, और उसके जो जो व्यापारिक संगठन हैं या देसी कंपनियां हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कहें या हमारी जो बड़ी कंपनियां वो कहें, उन्हें और बेहतरीन मौके मिले, और हमारे देश में जो कंज्यूमर बैठा है उसको केवल बाजार के तौर पर न देखा जाए बल्कि उसे भी बेहतरीन क्वालिटी वाले विकल्प को मिले।
1: जी, और अगर खास तौर से हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, जो भारत के साथ समझौता जो एफटीए हुआ है, उसके क्या क्या आपको भारत के पक्ष में क्या परिणाम दिखाई देते हैं?
0: देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है, और सीधे तौर पर अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करते हैं तो यानी कि ईयू के अंदर आने वाले जितने भी देश हैं वो बाध्य होते हैं उस समझौते को मानने के लिए। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग जिसे कहा जाए एक्सपर्टीज है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है, कहीं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, किसी के पास साइंटिफिक जो आरएनडी जिसे कहा जाए उसमें वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश है जिनके साथ हमारा रक्षा समझौता अलग से है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है। तो इन सब चीजों को अलग अलग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में बल मिलता है, और न केवल भारत का जो कंज्यूमर है उसे, या चाहे कंज्यूमर में आप चाहे सरकार मान लें या हम अपनी आर्म फोर्सेज को माने क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता है, बल्कि हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए बाजार एक नया बाजार खुलता है। उनको अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट है यानी कि अपनी गुणवत्ता को सुधारने के बाद बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अपनी एक पहचान बनानी है उसके लिए एक अलग बाजार मिलेगा, अलग मौका मिलेगा। केवल ये नहीं माना जा सकता कि आप अब सामान, अगर आपकी कंपनी का सामान अगर अमेरिका में बिकता है तो ही आप बड़ी कंपनी है, तो अगर उसके लिए विकल्प ज्यादा खुलते हैं तो यानी कि मौके ज्यादा मिलेंगे कंपनियों को और उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को।
1: यूके पीएम हैज आल्सो इंडिकेटेड रादर सिग्नल दैट ही वुड लाइक टू जॉइन द ईयू, द कंट्री माइट, एंड वी ऑलरेडी हैव एन एग्रीमेंट विद यूके, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फेदर इन अ कैप।
0: वेल, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एज वेल, बिकॉज यू नो दैट्स अ सेपरेट यू नो बैटल ऑफ विच्स व्हिच इज गोइंग ऑन देयर, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस वाज वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑन विच the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turn around because of the internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
1: So, and the minister is also focused quite a bit on the India-EU Free Trade Agreement and also SEPA. He wants these to be expedited. That's rightfully so, because
0: yes indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about SEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick. So and there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides. So of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one, and two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle. And two, of course, they would also want to be there on the table and say that, okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is the other market to fall back upon.
1: और चलते हैं, शेयर बाजार का हाल भी जान लेते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर शेयर इक्विटी

0: डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार नहीं हुआ। बाजार सोमवार को फिर खुलेंगे। अवकाश से पहले बेंचमार्क सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा और इनमें लगातार आठवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। इस अवसर पर आज भारतीय मुद्रा बाजार भी बंद रहे। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 96.31 रूपये के स्तर पर बंद हुआ था। विशाल जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि शेयर बाजार बंद है, लेकिन लगातार आठ हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट को आप सिग्निफिकेंट तो है, बट देन इसका इम्पैक्ट किस तरह का आप देखते हैं?
1: देखिए, आंकड़ों को दो तरीके से देखा जाता है। हर बार जब हम इस कार्यक्रम पे आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, और मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पर ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि लेकिन आंकड़ों को देखने का भी अपना नजरिया है। अब अगर गिलास को आप देखें तो आधा गिलास खाली भी हो सकता है और आधा गिलास भरा भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने अभी बताए और जो आंकड़े जिन पर चर्चा भी की जा रही है, जिन पर लिखा भी जा रहा है, वो दुरुस्त हैं। यानी कि लगातार आठ हफ्ते तक बाजार में गिरावट दर्ज की गई और ऐसा लगभग दो दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन वो गिरावट कितनी है? नंबर एक, गिरावट लगभग 9% के आसपास है अगर मोटे तौर पे देखें तो। हाँ, इसमें यह भी सच है कि 52 वीक हाई यानी कि पूरे 52 हफ्ते का जो सबसे ऊंचा आंकड़ा था उससे आप बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन अब इनके कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो समझ में आएगा कि क्या कोई नया फैक्टर ऐड हुआ है। जी नहीं, ये सब वही फैक्टर हैं जो लगभग पिछले एक साल से इन सभी फैक्टर से बाजार जूझ रहा था, चाहे वो एफआईआई का आउटफ्लो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे कहा जाए हम सिग्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल सिग्नल्स जिसे कहा जा सकता है, मार्केट को क्यों जो मिलते हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमतों की हम बात करें उसमें जिस तरह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ दिनों के लिए ऊपर जाती हैं और अगर वहां माहौल थोड़ा सा शांत रहता है तो कुछ दिनों के लिए नीचे आती हैं। यानी कि कोई एक सस्टेन्ड क्यू मार्केट को नहीं मिल रहा था, नंबर दो। और नंबर तीन अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे जैसे अब मोटे तौर पर कल से जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें सब में ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अगर आंकड़े देखें तो उनमें उनके आंकड़े, उनकी जो बिकवाली है यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की जो बिकवाली है, सेल जिसे सेल का आंकड़ा से कहें, वो तो बहुत ऊपर गया। लेकिन जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं थे जिस एक्सपेक्टेशंस पे शायद इन्वेस्टर्स चाहते थे। दूसरा, अगर वापस हम एफआईआई की तरफ जाएं तो वहां भी एक थोड़ी सी डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी इसलिए है कि सितंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बाजार से एफआईआई ने निकाला, यानी कि इक्विटी बेचकर निकाला, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्हीं एफआईआई ने इन्वेस्ट भी किया। अब वो इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है वहां उनको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर कहा जाएगा कि इक्विटी मार्केट से क्यों हटाया गया, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो लार्ज कैप जो है हमारे भारत के बाजार में उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते होंगे। तो ये पैसा लगाना और पैसा निकालना ये बाजार में निरंतर लगा रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। इसलिए मेरा कहना है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है और ये आपके रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक होराइजन के किस हद तक आप देख पाते
0: हैं। देयरफॉर विशाल, व्हिच डोमेस्टिक ट्रिगर्स शुड इन्वेस्टर्स वॉच आउट फॉर this next week? The RBI policy and its commentary, the FPI flow data, early Q2 earnings signals, or the macro data, as you elucidated quite a bit on them. So what should I look out for while I'm thinking of investments next week?
1: When you talk about macro data, all of these are the factors. You can't overlook either of these factors. That's one. But two, if you're an investor, what are you looking out for? You're looking out for investing in a particular company, in a script, in a small cap company, in a mid cap company, in a large cap company. Somewhere you're looking to invest. So the larger part which you should look out for is to look for that particular company's financial health, that's one. Its capacity building, that's two. Its future horizon, that's three. And what does the sector say? The sector, the particular sector to which the company belongs. What do the policies say? All the other larger data is creating a larger picture. But we are not investing into the larger picture as investors. We small investors, we

0: गई है कि वे जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। Countries' foreign exchange reserves declined $18.3 billion to $747.5 billion during the week ended 25th of September. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, dropped by $15.5 billion to $615.4 billion during the week. Gold reserves dropped by $2.5 billion to $108.7 billion. Special drawing rights fell by $97 million to $18.64 billion. Country's reserve position with the International Monetary Fund dipped by $86 million to $4.8 million. Vishal, how do you see this? Very, very briefly.
1: Well, again, this is cyclical because, you know, you're looking at this data. When you say fell by, then of course we're looking at what the last figure was. But then the last figure was much higher than what the previous last figure was.
0: Okay.
1: So let's look at it in context also.
0: और कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का पांचवा संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुड़ेंगे। इसमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
2: The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from 15th of this month. It will remain effective till November this year. Consumer Affairs Ministry said that the government has revised the sugar stock holding norms to prevent hoarding and ensure smooth supply to consumers during the festive season.
0: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: Thank you, Vishal, for being with us. And before we close the headlines once again, Union Minister calls for WTO compliant approach to address global trade distortions at G20 trade ministers meeting. Asian stock market indices closed mixed and global crude oil prices declined. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। शब के 10:30 हो चुके हैं। वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामीर शाद का। मेजबान मोहम्मद इमरान का प्यार भरा आदाब कबूल कीजिये।

कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजिता हिवराले और प्रतीक हिवराले, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और सीता गीता, और इसे नगमे के लिए हम तक मिलाया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा की जानिब से। मिलानपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, और सुनना चाहते थे इस नगमे को बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, सुमोद दामोदर और साधना पवन पाटिल। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया, और विराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबुनशा बेगम और सद्दाम सोनी। मुंडी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, और नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज, तला जहानाज और फरज जहानाज। तो आपने जो नगमे भेजा पसंद किया है आपको जरूर सुनवाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। सेरा लियोन जनूबी अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान, मानपुर बगबुरवा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम का ईमेल हमें मिला। बदलापुर मुंबई से पनीता सिद्धार्थ गोहंकर, लाडला टुक टुक गोहंकर। आइए दोस्तों अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। हसर जयपुरी के बोल को मौसीकी से सजाया एसडी बर्मन ने, और मुंतजिर आप सभी दोस्त। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, और जमे नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और शुभम प्रसाद जायसवाल। बैरगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन, और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु खोरवाल, और अकाली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी और काजल। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल। वाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस और पिंकी अरोड़ा, और बड़ापारा छत्तीसगढ़ से किशोर साहू, करण राम साहू, चंपा साहू। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शरिया रामटेके। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं सहरा फिल्म का ये नगमा। लता मंगेशकर की आवाज में नगमा निगार हसर जयपुरी तर्ज बनाई है रामलाल ने। पसंद आप दोस्तों की इस नगमे को पसंद किया था सीतामढ़ी से मुसरा जहानाज, तला जहानाज और फरा जहानाज ने, और आपसे वादा था कि सुनवाएंगे, तो लीजिए सुनिए। और इसमें आप दोस्त भी शामिल, परमिला गंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा और रतन कुमार वर्मा, लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मुनी चौहान और कल्पित चौहान, पुरानी भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी और रामलतन टाकिस कुंडलवाड़ी से गंगाधर स्वांकर, विजय लक्ष्मी स्वांकर और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज और नवाज शेख, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमराज और दिव्य भारती, और खेल बाजार पानीपत से नलेश मल्होत्रा नीटू, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानकचंद मल्होत्रा, कस्बा बड़ारा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी, अकोर से विनायक बेंडे, श्रीमती बंगला बेंडे और शुभम बेंडे, और अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदा गौहर और जयपाल यादव, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मलाकार, सुनीता मलाकार, योगेश मलाकार, साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। और इस नगमे के लिए गाटकेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे ने भी ईमेल किया। मोहम्मद यूनिस खत्री, सादिक खत्री और अयुब खत्री चिपा कॉलोनी खांडवा से, और बदलापुर मुंबई से विनोद कुमार वडलकर, वीना वडलकर और नीतू सिंह। ओल्ड लिसनर ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह होरा और भारत भूषण श्रीवास्तव। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने भी सुनना चाहिए इस नगमे को, और अकोला महाराज से गजानन कुमार, पद्मावती कुमार और मधुरा। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, बेबी प्रियांशी, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान। सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा।

को सुनना चाहा है। बाबा साहब वरुद आदि चप्पे चंद प्रभाव वरुदे आप हैं जरूर वरुद से। कृष्णा कॉलोनी हांसे से सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर और ज्योति ठाकुर। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और बहु रुबीना वसीम। सुनिए दोस्तों ये नगमा अपनी पसंद का।

आइए दोस्तों आप सुनते हैं मुगल आजम फिल्म का ये नगमा। लता मंगेशकर की आवाज में नगमा निगार हैं, शकील बदायूं ने तर्ज बना ये नौशाद ने और पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। मयूर देवर, शारदा और पंकज आप हैं गोकुलधाम राजकोट से और दादा

बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, साहा नवाज और हसन नवाज चमनपुर उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और ईसा खातून, मलकापुर जिला बुल्डाना महाराज से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और अजय, आतिश रेडियो लिस्टनर क्लब बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन और ऊपरकोट मोहल्ला चुकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, यसन जावेद, शगुफ तंजुम गुमला झारखंड से। और इसी नगमे के लिए ईमेल हम तक आया सुल्तान पोखर फारबिसगंज बिहार से कृष्ण मोहन यादव, माया रानी और कंचन की जानिब से। वंजारा नागपुर महाराष्ट्र से अनिल कोहले, छाया कोहले और प्रियांशी कोहले। इमाम मंजिल बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से हिना सावरी, अजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मिराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। साईनगर अरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शन मिर्गे और डॉ प्रियंका काल पांडे। पदरकारवा से ये अनुषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे।

ये दोस्तों आप सुनते हैं गंगा की लहरें फिल्म से ये दो गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, जिसे सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने। प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे और सुनीता शिंदे आप हैं पंधाकुर सिटी से, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित, यशु और निरंजन सिंह साथ में सुमैया सिंह, सुल्तान पोखर फारबिसगंज बिहार से कृष्ण मोहन यादव, माया रानी और कंचन, पुराना तालाब डुमरा से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम अलमारा और बड़े गैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, शहीद त्रिभुवन नाथ मालवीय और खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू, सुशांत प्रियझा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमार, टिमर मार्केट, कीर्ति नगर नई दिल्ली से पुरानी बागपत से इलियास, मुस्कान कुरैशी और रानी कुरैशी, सैलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन और साथ में नजमुद्दीन भी होते हैं, बंदला कंडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी, शंभुदयाल खटक, विमला देवी और दीपक कुमार खटक, बलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी युक्ति देवदास, मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा और अशोक जाटव, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा, भोला कॉलोनी घोंडा जिला बागपत जिला करनाल से है ये, हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी और गुंजन। कल्पना मदन झा, मानव और मयंक, तृतीय भवन शशि क्लब अपार्टमेंट सिलवासा दादरा नगर हवेली, पूरी दावत है पूरा पता और तंगरम चेन्नई से शाहिद अली, इफत फारूकी और बिटिया हिफ्जा अली। और इस नगमे को सुनना चाहा है जनाब स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नगली डेरी नजव घर से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक ने।

आइए दोस्तों हम सुनते हैं मुकेश की आवाज में आवारा बादल फिल्म से एक और नगमा। जुल्फ पर ही जानिसार अख्तर ने इस नगमे को कलमबंद किया और मौसीकी से सजाया उषा खन्ना ने। पसंद किया है आप दोस्तों ने। मलयाना सरदाना मेरठ से अनिल जैन, श्याम जैन और मास्टर जीवम जैन और राजनगर कांति निकेतन से रुद्र गुप्ता, दादा ठाकुर और कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका नायक। मंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश रामभरे, जानवी रामभरे और वैष्णवी हर्ष रामभरे। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी और आश्रित गोस्वामी। शब्द बाड़ा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और पूजा पिंकी चौरसिया। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकमुद्दीन मंठाल, शबीर बनहाटी और आसिफ इकबाल। मनोज भाई सेन, पूनम सेन और दीपक सेन, आपका ईमेल हमें मिला सिटी सेंटर से और इसी नगमे के लिए ईमेल हम तक आया। आप है बघेल दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव। सुनने के ख्वाहिशमंद रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले, आप अकोला महाराष्ट्र से। बाबू भाई और भारती देवी जवाहरनगर उदयपुर से। और ये हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और डॉक्टर्स। अच्छा ये गलत काम कर रहे हैं दोस्त आप।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोला, प्रियंका पंचोला और संपीरित पंचोलिया का ईमेल हमें मिला, और एडवोकेट नासिर शेख, नाजा नासिर और साजिद शाहिद आफे फातमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। महरारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये दोगाना फिल्म बैजू बावरा से। नगमनगार शकील बदायूनी तर्ज बनाई है नौशाद ने और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। रिवर्स में ना भेजा करें भाई, काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप हैं जिला मंदसौर से तूफान डांगी पाटिल और मिस्टीना डांगी, साथ में छोटा लक्ष्य बाबू। प्लीज रिवर्स में न भेजें। जमशेदपुर से अनुपम

हमारी अपूर्व सिंह और राकेश कुमार और तख्त पुर छत्तीसगढ़ से मिशनलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा, और इस नगमे के लिए ईमेल आया नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक फुलवाले की जानिब से। अजमेर अमीर खुसरू रोड गंज डुंडवारा से डॉक्टर दबीर हसन, बेगम शबनम अनवार और इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम। अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुन्नाज सलमा हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा जिला सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल लवंगी वाले, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल भी साथ में होते हैं। विजय मोहबिया, कविता मोहबिया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़ और यश गौड़ का ईमेल हमें मिला लैक सिटी उदयपुर से। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशला भटकर और अंकिता। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, विनोद पुरी और इसी नगमे के लिए ईमेल हम तक आया। आवास विकास कॉलोनी काजगंज से पवन गौड़, तन्मयपुर गौड़, सुयश आशीष गौड़ की जानिब से, और इस नगमे को सुनना चाहे कैलाश राजपूत, शानी राजपूत, प्रशांत सिंह राजपूत, आप कहां से? विदिशा मध्य प्रदेश से जी। बांद्रा अरमाकोट मुंबई से बेगम सोनम शेख, मारियायत शेख और मोहम्मद अरीफ शेख। और राजावत कम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और असुरक्षित। आप हैं सालपुरा से, नाम है सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव और रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से एक एजाजी राकेश, पप्पन सेन जी और एम महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और भारती नाचानी। और इसी नगमे के लिए ईमेल हम तक आया जयराज पलोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जस्मिन भट्ट की जानिब से। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये नगमा फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम। इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है हेमंत कुमार ने। पसंद आप दोस्तों की। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरेन अंसारी, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तमरकार, अमर तमरकार और दिलीप वर्मा, हिरमन खिराडे, सरिका खिराडे और सोनाली आप हैं वाशिम महाराष्ट्र से, और गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल और उर्मिला टुटेजा, शास्त्रनगर ब्यूटिशियन से कृष्ण सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल और मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी, नारचुम रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जैरुल हक डावर। और इसी नकमी के लिए ईमेल हम तक आया ये हैं मनोज कुमार जेठवा, प्रकाश टक्कर और प्रिंजय ओझा। ये छड़िया कपड़ा पट्टी, इस तरह आपने लिखा है जगह दोस्त। और एक और नाम रघुवीर नगर नई दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक तबसुम शेख और बेबी अलसवा शेख। दोस्तों सुनिए अपनी पसंद का ये आखिरी नगमा और नगमे के साथ ही आज का तामिल इरशाद प्रोग्राम खत्म करने की अपने मेजबान मोहम्मद इमरान को दीजिए इजाजत।

0: कैप्टन मच्छर के उस फौरी फैसले को सराहा जिसने सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचाने में मदद मिली। गुज़श्ता बुध के रोज कैप्टन मच्छर इस वक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए जब दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज का कॉकपिट में उनके साथी पायलट ने उन्हें छुरी मार दी। इस परवाज में 174 मुसाफिर सवार थे जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमेरिका के शहर मिलवाउकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के अख्तितामी दिन आलमी तिजारत में पाई जाने वाली बेकायदगियों और अदम तवाजुन को दूर करने के लिए आलमी तिजारती तंजीम WTO के जाब्तों के मुताबिक तरीका कार इख्तियार करने पर जोर दिया है। ढांचा जाति इजाफी सलाहियत और पैदावार के मौजू पर खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है और इसकी मईशत 140 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करने वाली घरेलू मांग पर मबनी मईशत है। उन्होंने उजागर किया कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार मसनूआत तक मैन्युफैक्चरिंग का मुकम्मल वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खदशात से निमटने के लिए WTO के जाब्तों से हमाहंग इकदाम किए जाते हैं जिनमें डंपिंग मुखालिफ महसूल और इजाफी दरामदी महसूल शामिल हैं। ये इकदाम शवाहिद की बुनियाद पर किए जाते हैं और अदालती नजरसानी के ताबे होते हैं। मुल्क ने कल साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए जिसे पहले मुगलसराय स्टेशन कहा जाता था। नौ उम्री में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और 1921 की अदम ताउन तहरीक में भी हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और इसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। G7 के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें आलमी सतह पर डीजल की सप्लाई, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और अमेरिका और यूरोप के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर से ईंधन जारी नहीं किया तो अमरीका डीजल की बरामदात रोक सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस की रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने के बाद रूस ने डीजल की बरामदात पर आयत पाबंदी में तौसी कर दी है जबकि चीनी रिफाइनरियों ने मुल्की जरूरियात के लिए डीजल की बरामदात मुअत्तल कर दी है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैख्वा ने बुलाई थी ताकि G7 ममालिक के रहनुमाओं को इस बात पर आमादा किया जा सके कि वो बरामदाती पाबंदियों आयत करने किए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के इकदाम कर सकें। यूरोपीय कमीशन के अहदेदारान ने डीजल की बरामदात पर अमेरिका की मुजवजा पाबंदी को मुस्तरद करते हुए मुतनबा किया कि इससे एक काबिल एतबार शराकतदार के तौर पर अमेरिका पर एतमाद को नुकसान पहुंचेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज पंजाब के तरनतारन सेक्टर में सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने 2 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया। BSF जराये के हवाले से आकाशवाणी नामा निगार ने बताया कि महलुकीन गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके भारतीय सरजमीन में दाखिल हुए। सरहद पर तैनात सिक्योरिटी अमले ने उन्हें रुकने से मुतालिक इंतबाह दिया लेकिन इसके बावजूद दरअंदाज आगे बढ़ते रहे जिसकी वजह से BSF को फायर करने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। लक्षद्वीप, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने बताया कि आइंदा 3 दिन के दौरान कोंकण और गोवा में गर्म और हबस के हालात रहने का कवी इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोढ़ाना शिवनंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से ख्वातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबा ने समरकंद उज्बेकिस्तान में मुनक्किद 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीत कर तारीख रकम की थी, जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थी। जापान के आइची नगोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए और अपनी महारत, अज्म और खेल के आला मेयार का मुजाहरा किया। ख्वातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0-1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। लाल रे सियामी हमार जोटे ने भारत की जानिब से फैसला कुन वाहिद गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनाल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बरतरी बरकरार रखी और सोने का तमगा दिलाया। 23 साल भारतीय पहलवान ने फाइनल में ताजिकिस्तान की अब्दुल माजिद से 4-9 से पीछे रहने के बाद सख्त मुकाबला किया और 10-9 से कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ ही सुजीत एशियाई खेलों में 65 किलोग्राम जुमरे में योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया के बाद सोने का तमगा जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तीरंदाजी में एशियाई खेलों में अपना पहला सोने का तमगा जीतकर भारतीय रिकर्व टीम ने तारीख रकम की है। अंकिता भारती, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ ने भारतीय जोड़ी ने फाइनल में आलमी चैंपियन जनूबी कोरिया को 5-3 से शिकस्त दी। इसके साथ ही तमगे की फेहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मिथ मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार शुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में ख्वातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। भारत तमगों की फेहरिस्त में 5वें मुकाम पर पहुंच गया है। उसके तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिनमें सोने के 16 तमगे शामिल हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लास की मौसीकी के तहत लीजिए सामेईन, अब सुनिए सितार और सरोद पर बजाया हुआ राग अहिर भैरव और राग रागेश्वरी। फनकार हैं विदुषी अलका नागपाल और सपना गोयल।

0: श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। शिपिंग कॉरपोरेशन के कामकाज के 65 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को बनाए रखने में शिपिंग कॉरपोरेशन की भूमिका पर जोर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने तरन तारण सेक्टर में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार की थी। तैनात सुरक्षाकर्मियों के चेतावनी दिए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, इसलिए बीएसएफ को गोली मारनी पड़ी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, "Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others." He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मैं तो अपने आपसे सुनना चाहूंगा,
3: मेरे लिए इस तरह से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़ा एड्रेस और मेरे को इसे कॉल करके मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for a WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link.

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। श्रोताओं अब समय है गोल्डन एरा गीत सुनहरे फिल्म संगीत कार्यक्रम का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के गीतों को। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं चेतन, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म महल से, और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को ही फिल्म मल्हार में। ये जो फिल्म है ये 1951 प्रदर्शित फिल्म रही है और इसकी जो गीत रचना है वो है कैफ इरफानी की और संगीत दिया है रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद को, फिल्म संगदिल में। इसकी गीत रचना थी राजेंद्र किशन की और संगीत दिया है सज्जाद ने। और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं तलत महमूद को ही एक और फिल्म में।

ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर में तलत महमूद साहब ने गाया था और इसे संगीत दिया था सरदार मलिक ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और साथी, गीत रचना है शायर लुधियानवी की और संगीत दिया है SD वर्मन ने।

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
0: टिक टिक टिक टिक।
1: ट्रेडनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

कार्यक्रम में आगे ये सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है मयूर पंख, गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

श्रोताओं कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम को फिल्म का नाम है सीआईडी। 1956 प्रदर्शित ये फिल्म है। बहुत ही खूबसूरत गीत है लेके पहला पहला प्यार। गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी में लता मंगेशकर और बन्ना डे को 1956 प्रदर्शित यह फिल्म है। गीत रचना है शैलेंद्र की और संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

जी दोस्तों, यह या लाइव न्यूज 24x7 पर आप बने हुए हैं चेतन के साथ और सुन रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म कोहिनूर से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। गीत रचना है शकील बदायूनी की और संगीत दिया है नौशाद ने।

तन रंग लो जी आज मन रंग लो तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो रंग लो रंग लो जी आज मन रंग लो तन रंग लो आज नगरी में रंग है बहार है गली गली देखो रस की फुहार है।

और एक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है तीन देवियां। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, और 1965 प्रदर्शित ये फिल्म रही है। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है SD बर्मन जी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ ये आज का पुराने हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के गीतों का कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत सुनहरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। मध्यरात्रि के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान गढ़ा है, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भी भक्ति गीत गाये। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 3 ऑपरेशन में बारीकी से नक्काशी की गई हाथी दांत की 4 चीजें, 1 तेंदुए के खाल, 2 जिंदा पेंगुलिन, 3 किलो बाघ की हड्डियां और बाघ के 2 केनाइन दांत जब्त किए हैं। इन 3 ऑपरेशन में 11 लोगों को पकड़ा गया है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना गोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल आंध्र प्रदेश केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
3: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सुईबुल ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मैं आपसे सुनना चाहूंगा,
4: इसलिए मैं सबसे भी बोल रहा था आपने सबसे बड़ा।
5: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTA compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, yesterday called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing the ceremony to mark SCI's 65 years of operations, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy.

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 2:10:13। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं गीत बहार फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है सूरज। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी। तो अब से लेकर सुबह 3 बजे तक आप लगातार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: और इसी गीत के साथ आज का नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात की। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए चल रहे तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एयरपोर्ट का एक कर्मचारी, 6 ट्रांजिट यात्री और विदेश जाने वाला एक भारतीय यात्री शामिल है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद 1 स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है।

0: वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाज के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। आज लक्षद्वीप, ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He nodded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सुलबुल ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने, इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मैं अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा,
3: मेरे लिए सबसे
1: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, yesterday called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operations, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. He said a stronger national fleet is central to India's ambition of becoming a leading shipbuilding and ship-owning nation by 2047 under Maritime Amritkal Vision 2047. In Punjab, Border Security Force, BSF, has neutralized two Pakistani intruders yesterday in Tarantaran sector. Quoting BSF sources, Akashvani correspondent reports that they illegally crossed over to the Indian side of the border. Despite giving warnings by the deployed security personnel to stop, they continued advancing, forcing BSF to open fire. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi.

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। यह प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने उषा विजय कुमार द्वारा बजाए गोटू वाद्यम पर राग चारुकेशी सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन किस तरह से हो सकता है उसके बारे में। 5:20 पर आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विपुल छाबरा द्वारा गाया राग भैरव। 6:00 का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। इसके अलावा 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस।

محلے دوجے کے ایک اونکار ست گر پرساد

ਖੇਲਾ ਸਮਤ ਥਾ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾ ਸਾਪਤ ਦੀਪ।

बिमल जास बिठा साधक सिद्ध सो जान जिया को आधार।

सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जहे कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो।

पुले सतदारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू।

लाख अपराध कमावा। कर उपदेश चिड़के बापाते, बहुड़ पिता गल लावा। पिछले अवगुण ग

जी की फतेह। सोरठा महला पंजवा, गई बहोड़ा बंदी छोड़ा, निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया धारी, नाम पढ़ियो भगत गोविंद का, ये राखो।

Vamos a ver si lo vamos a ver.

होठ गई मैं तेरी।